छुपाई असा तेरे आंदा जांदा तकदा रही। दिल बहार दी आवाज च हुणे तुसी ए सूफियाना कलाम सुन रहे सी। मैं ते रखिया गुनाहां नूं लुका के कि लोकां भाणे कुंड कड्या। आ हुण ज्योति नूरां ते सुल्ताना नूरां नूं सुनिए।

मैं ता रखिया गुनाहां नूं लुका के ते लोकां भाणे कुंड कढ़िया। आपां सुन रहे सी ज्योति नूरां ते सुल्ताना नूरां नूं। मंग के पाईए कज नहीं हुंदा, लुट के खाईए रज नहीं हुंदा, बाज इश्क दे काबे जाईए पैंडा हुंदा हज नहीं हुंदा। त्याहां सुनदिया शफकत अली खान दी ए सूफी रचना। महंदा इश्क भी तू दीन भी।

भी तू ईमान भी तू। हुणे तुसीं शफ़ाकत अली खान की आवाज च ए सूफियाना कलाम सुनिया। ते आ हुण प्रोग्राम दे आखिर विच सुनदे आ आबिदा प्रवीण नूं। मैं भी झोक रांझण दी जाणा नाल मेरे कोई चले।

सुन रहे सी सुफियाना कलाम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दा है अमृतसर केंद्र है। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस तिन दी पंजाबी सेवा। साडे स्टूडियो दे कड़ी मुताबिक इस वे सवेर दे 6:29 ते 3 सेकंड होए ने। साडे अगले ऐलान दा इंतजार करो।

हीअ आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स। तंहिं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते बि ॿुधी सघंदा आहियो। असांजो प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीत आहिनि। सभ खां अवल तव्हां भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा। तंहिं खां पोइ तबसरो पेश कयो वेंदो। 6:40 मिंटनि ते तव्हां भजन ॿुधंदा। प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ास ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। अचो त ॿुधूं भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में ही कलाम।

तमाम भगत कंवर राम जी जे मिठड़े आवाज में कलाम बुधी रहा हुआ। तमाम आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा आयो। हियर पेश आहे तबसिरो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सूमर डी तारीखी सोमनाथ मंदिर जो दौरो कयो ए सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत कई, जेको 1951 में बीहर तामीर थियल मंदिर जी इफ्तिताह का 75 साल मुकम्मल थियण जी याद में मनायो वियो। हुन मौके के भारत जे तहजीब वारे सफर में एक माइलस्टोन करार दिनो। वजीर आजम चयो त सोमनाथ मंदिर आठ अरिंदर ईमान हौसले ए भारत जे लाजवाब रूहानी शौर जो निशान आहे। सोमनाथ बारहन ज्योतिर्लिंगन मां एक आहे, शिव जो मंदिर ए भारत जे पायदार ईमान ए तहजीब वारे वर्से जी अलामत आहे। सोमनाथ अमृत महोत्सव 1951 में बीहर तामीर थियल मंदिर जी इफ्तिताह का 75 साल मुकम्मल थियण जी याद में मनायो वियो। जश्न जे हिस्से तौर वजीर आजम खुशगवार मजहबी ए सकाफती तकरीबन जे सिलसिले में हिस्सो वरतो। हुन विशेष महापूजा में हिस्सो वरतो, जंहिंजे पोयां कुंभ अभिषेक यानी पाणीअ जे मुक़दस बासण मां पाणी फहिलाइण ए ध्वजारोहण झंडो फहिराइण जूं रस्मूं शामिल हुयूं, जेकी मंदर जी पाक रस्मुन ए झंडे लगाइण जी तकरीबन जी निशानदेही कंदियूं हुयूं। भारतीय फिज़ाई फौज जे सुरया किरण एरोबेटिक टीम जी हिक शानदार फिज़ाई ॾेख में हॉक MK-132 जहाजन मां ठहियल टीम हवा में दिलचस्प हरकतू ॾेखारी, जॾहिं त हिक IAF हेलीकॉप्टर सोमनाथ मंदर जी चोटी ते गुलनि जा पना फहिराया। वज़ीर आज़म हुन मौके ते सोमनाथ मंदर ॾेखारींदड़ 5 रुपयनि जी यादगार स्टैम्प ए 75 रुपयनि जो सिको पिण जारी कयो, जेके सोमनाथ जी दौलतमंद वर्से ए रुहानी अहमियत जी याद ॾियारे थो। यादगार सिके जे हिक पासे सोमनाथ मंदर ॾेखारियल आहे, जंहिं सां गॾु टेक्स्ट आहे भारत जे हज़ारनि सालनि जो अक़ीदो ए भक्ति ए ज़ारी करण जी साल 2026 बि लिखियल आहे। सिको कोलकाता में हुकूमत जे मिंट ज़रिए ज़ारी कयो। वज़ीर आज़म 75 सालगिरह ते ॿीहर तामीर थियल मंदर जी इफ़्तिताह जे ॾींहुं सोमनाथ जे पाक दीवार ते पहुचण ते पंहिंजे रुहानी तजुर्बे जो इज़हार कयो। मोदी जी ज़ोर ॾिनो त मंदर जे रस्ते ते भॻवान सोमनाथ जे पुज़ारी जी वॾी तवानाई ऐं जोश खे ॾिसण सां हू मुतासिर ऐं जज़्बाती थी वियो। हुन चयो त हू इहो ई लम्हो ॿीहर महसूस करे रहियो आहे, जेको भारत जे पहिरें सदर डॉ राजेंद्र प्रसाद जे इफ़्तिताही ॾींहनि में महसूस कयो हूंदो। हुन वधीक चयो त सोमनाथ अमृत महोत्सव जो मज़हबी माहौल चङीअ तरह कंहिंखे बि हैरत अंगेज़ तवानाई सां भरपूर करे थो। वज़ीर आज़म इहो पिण मुशाहिदो कयो त कंहिं बि माण्हू सोमनाथ जे हर कुंड में भक्ति जो तजुर्बो हासिल करे सघे थो। इहो मञंदे तमाम माण्हुनि गॾु थी नए मरम्मत थियल मंदर जे 75 साल मुकमिल थियण जो जश्न मल्हाइण लाइ सभु आया आहिनि। मोदी जी ज़ोर ॾेई चयो त तारीख़ी ॾींहुं कंहिं न कंहिं नमूने भारत जे तहज़ीब वारे सफ़र में हिकु हम अहंग संगमैल आहे। पोइ मजलिस खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म मुशाहिदो कयो त सोमनाथ वक़्त जे इम्तिहान खे बर्दाश्त कयो आहे। तक़रीबन 1026 में ज़ालिम महमूद गज़नवी जे पहिरें हमले खां पोइ ॿिया केतिरा ई ज़ालिम जहिड़ोक अलाउद्दीन खिलजी पिण इन ते हमिलो कयो, पर उहे कॾहिं बि सोमनाथ मंदर जी क़ाइम रही रूह खे ख़तम न करे सघिया। वज़ीर आज़म राजाउनि ऐं आम माण्हुनि जी कोशिशुनि जी तारीफ़ कई, जेकी ज़ुल्म जे मथां सख़्तु क़दम रखिया, जहिड़ो लखुलिशा, सोमा शर्मा, महाराजा धर्म सेन, राजा भोज, महिपाल, भीमा देव, अनंत पाला, महारानी अहिल्याबाई होलकर, जाम साहिब, दिग्विजय सिंह जी नवानगर,
जिन सब मुख्तलिफ वक्तन ते मंदर जी भी हर तामीर में हिस्सो वरतो। मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ मंदिर जी बीहर तामीर में संदन कोशिश लाए खुशी जाहिर कई। वजीर आजम चयो त असांजे कदीम किताबन में चयो वियो आहे त खुदाई प्रभास यानी सोमनाथ जी परिक्रमा सजी दुनिया जी परिक्रमा जे बराबर आहे। सोमनाथ मंदिर असांजे फकुर ऐं शौर जी अलामत आहे। हुन नोट कयो त सोमनाथ सिर्फ़ हिकु मंदिर खां वधीक आहे, उहो हिंदुस्तान जी आण टुटंदी रूह जो सबूत आहे। मोदी जी ज़ोर ॾिनो त बर्बादी खां तज़दीद ताईं सफ़र क़ौम जे नाक़ाबिल ऐं शिकस्त वरसे ऐं हिमत वारे वरसे खे ज़ाहिर करे थो। मोदी जी चयो त सोमनाथ यानी भॻवान शिव खे संदसि पेशानी ते चंड सां नवाज़ियल आहे। जॾहिं हिंदुस्तान जो चंद्रयान टें कामयाबी सां पंहिंजे रोवर खे चंड जे ॾखण कुतुब ते पुॼायो, इन नुक़्ते जो नालो शिव शक्ति पॉइंट रखियो वियो त जीअं सोमनाथ जी इज़त में आहे ही नालो शिव, इंसानियत जी भलाई लाइ अज़म ऐं शक्ति, उन्हनि अज़म खे पूरो करण जी ताक़त खे ज़ाहिर करे थो जेको हिंदी सकाफ़ती वरसे खे साइंसी अमल सां ॻंढे थो। 11 मई उहो ॾींहुं आहे जॾहिं असां ऑपरेशन शक्ति जी कामयाबी खे यादि करियूं था। असांजे पोखरान में कामयाब न्यूक्लियर जांच दौरान वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जी मुदत में उहो पोखरान 2 तौर पिण मशहूर आहे। इन लाइ भारत खे घणी तनक़ीद जो सामनो करणो पियो। भारत इन्ही मां वधीक मज़बूत उभरियो ऐं अॼु हिकु मुक़ामी साइंसी ऐं टेक्नोलॉजिकल ताक़तवर मुल्क बणिजी चुको आहे। वज़ीर आज़म बीहर ज़ोर ॾिनो त सरकार असांजे हज़ारे साल पुराणे वरसे खे बरक़रार रखण लाइ पुरअज़म आहे। मंदर न रुगो सियाहती माक तौर कम कनि था पर पंहिंजी भक्ति भाव जे करे घणा श्रद्धालु ईंदा आहिनि, उन्हनि खे बि छिकीन था। वज़ीर आज़म चवे थो इहे मक़ामी मईशत खे हलाइनि था ऐं रोज़गार ऐं आमदनी पैदा करण में मदद कनि था। इहे हिकु श्रेष्ठ भारत जा बुनियादी मिसाल आहिनि।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

हींअर पेश आहिनि सिंधी भॼन। सभ खां अवल अचो असां ॿुधूं आज़ाद सूफ़ीअ खे।

असां आज़ाद सूफ़ीअ खे ॿुधी रहिया हुआसीं। हाणे अचो राम बजवानी ऐं साथियुनि जी आवाज़ में हिकड़ो सुहिणो भॼन आहियां पंहिंजे लाल जी।

हींअर पेश आहिनि ख़ास ख़ास ख़बरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ नागरिकनि खे क़ौमी वसीलनि जो बोझ घटि करण लाइ हिकु थियण जो नियापो ॾिनो। वेस्ट एशिया जे झेड़े खे ॾहाके जो सभ खां वॾो बुहरान करार ॾिनो। हुकूमत भरोसो ॾियारियो आहे त पेट्रोलियम जी का बि थोर कोन्हे, छाकाणि त मुल्क वटि 60 ॾींहनि जो कचो तेल ऐं कुदरती गैस जो ज़खीरो ऐं 45 ॾींहनि जी LPG आहे। बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा सरमा अॼु आसाम जे मुख्यमंत्रीअ तौर सौ खणंदो, जेको रियासत में NDA जी लगातार टीं मुदत जो निशान आहे। ईरान ऐं अमेरिका

पाण जे हलंदे झगड़े के खत्म करण जी कोशिशुन ते आज बु डेडलॉक में आहिन। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स धर्मशाला में पंजाब किंग्स के 10 विकेटों सा शिकस्त दिनी।

तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30 लॻे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन

0: Uttar Pradesh, Ladakh and Jammu and Kashmir for the day. The Met Department has predicted thunder squall with wind speed reaching up to 60 kilometers per hour over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Bihar and Uttarakhand today. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets in Dharmashala last night. Chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर. सुबह के ठीक 7:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं. अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका. इसमें आज आप सुनेंगे प्रत्युष शर्मा द्वारा गाए भजन. इनके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर सलीम अहमद, हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष और बांसुरी पर विनय प्रसन्ना.

इसी भजन के साथ कार्यक्रम संगीतिका अब यही संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे संगीतिका के अंतर्गत प्रत्युष शर्मा द्वारा भजन। इनके साथ संगत कर रहे थे तबले पर सलीम अहमद, हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष और बांसुरी पर विनय प्रसन्ना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:33 और 17 सेकेंड्स। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो और मैं हूँ आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त जो लेकर आती है हर बार एक नया प्यारा सा गीतों भरी गुड मॉर्निंग ये खूबसूरत सा कार्यक्रम और लेकर आती है छोटी सी मुस्कान और कोशिश रहती है कि उस छोटी सी मुस्कान को थोड़ा सा और बड़ा बनाने की। और जरिया क्या होता है? जी हाँ, हमारा ये कार्यक्रम और इसमें प्ले होने वाले बहुत ही खूबसूरत से गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप भी आ जाइए। दोस्तों कहते हैं ना कि हर सुबह दो चीजें लेकर आती है अपने साथ, एक तो नई रोशनी और साथ ही कुछ नए सपने। कभी कभी हम रात में बड़े बड़े सपने देखते हैं, कोई खुद को सफल इंसान के रूप में देखता है, तो कोई अपने परिवार को खुश देखता है, तो कोई बस इतना

चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुकून बना रहे। लेकिन मजेदार बात तो पता है क्या है, अलार्म बजते ही सारे सपने ऐसे भाग जाते हैं जैसे स्कूल टीचर आते ही पीछे वाली बेंच के बच्चे सीधे हो जाते हैं और कहते हैं ना, सब चीजें भूल जाते हैं, क्या सपना देख रहे थे, क्या नहीं देख रहे थे, सब कुछ भूल जाते हैं जैसे ही आंखें खुलती हैं।

जी आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर आपके साथ आज इस शो में हूं मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त। गीतों के साथ साथ अगर कुछ संदेश

0: जानकारी भी आपको सुनवा दी जाए तो क्या रहेगा, सोने पे सुहागा ना। तो सुनते हैं पहले ये संदेश, उसके बाद जारी रखेंगे अपना ये सफर।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी हाँ, जानकार तो बनिए और साथ ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों हर सुबह सिर्फ नींद से उठने का नाम नहीं, हर सुबह अपने सपनों को फिर से याद करने का मौका है। क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। हो सकता है अभी रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएं, और ये भी हो सकता है कि कभी कभी आप खुद पर भी शक करने लगे। लेकिन याद रखिए, सूरज भी हर दिन अंधेरे से लड़कर ही चमकता है।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जी हाँ, जानकार बनिए और सतर्क रहिए, और साथ ही साथ अपना जो जमा पूंजी है उसको भी सुरक्षित रखिए। फिलहाल वक्त हो चुका है 7:50, ऑलमोस्ट हो गए हैं 7:51। कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। बात यहाँ कर रहे हैं सपनों की। सुबह सबसे ईमानदार होती है, ये तो सभी को पता है, लेकिन अगर आप उदास हो और वो चुपचाप आपके पास बैठ जाती है, कौन? सुबह। तो आप उसे खुशी में बदल सकते हैं, यानी आपकी जो उदासी है उसे सुबह जो है वो खुशी में बदल सकती है। और साथ में अगर ठंडी ठंडी हवा चल रही हो गुनगुनाते हुए, तो आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाती है। और इस खूबसूरत सुबह के साथ जो देखते हैं आप सपना, जो आपने रात भर देखा है उसे भी पूरा करने की पूरी जो है ना ख्वाहिश जो है वो और जोर पकड़ लेती है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चुका है 7:56 और ये हुए पूरे 25 सेकेंड्स। तो दोस्तों, आज की सुबह खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप अपने सपनों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, अगर जिंदगी कभी बहुत तेज भागने लगे ना, तो कभी कभी सुबह की चाय लेकर बालकनी में बैठ जाना, और क्योंकि कई बार जो है ना, जवाब नहीं होते हैं, किताबों में नहीं होते हैं, और अगर आप उन जवाबों को कहीं ढूंढना चाहते हैं तो शायद कुछ खाली वक्त अपने साथ बिताइएगा, उन जवाबों को जो है वो आप ढूंढ पाएंगे। क्योंकि सुबह की जो ठंडी हवा और सूरज की जो गर्म रोशनी मिलती है आपको, आपके मन को और शांत करती है और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक तरोताजगी देती है।

तो दोस्त बैठे क्यों हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उठिए, मुस्कुराइए और इस नई सुबह को दिल से गले लगाइए। और फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की जो है ना, मुझे इजाजत दीजिए। और इसी तरह से आप सभी के लिए बहुत खूबसूरत गीतों के साथ फिर से गीतों भरी गुड मॉर्निंग को लेकर जल्द हाजिर होंगी। और आप अपना ख्याल रखें, अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करें और सपने पूरे भी करें। ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें। आई होप आपको ये कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। और इसी आशा के साथ अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केन्द्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित

0: वेटरिनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
7: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
8: हम जानते हैं कि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली

0: डिटेक्शन पर और कॉन्टिनम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की मांगें मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
3: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. ED arrests former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
6: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च हो, जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
5: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
6: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
5: Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. 4 ministers, including 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF, will also take oath along with Chief Minister. We have more from a correspondent.
7: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, 4 other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The 4 cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Neog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of BJP-ruled states. The Veterinary College ground at Khanapara in Guwahati has been fully decorated to host the swearing-in ceremony. Elaborate arrangements have been made at the venue in view of the large gathering expected for the event. The Kamrup Metro District Administration has also issued traffic advisories in several parts of the city to avoid congestion and ensure smooth movement of vehicles. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
5: Enforcement Directorate EDS arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata, in connection with the South Domdom Municipality recruitment scam. We have more from a correspondent.
8: After more than

0: to shift Bangladesh matches from India to Sri Lanka over security concerns. The controversy emerged after the Board of Control for Cricket in India, BCCI, reportedly dropped Bangladesh pacer Mustafizur Rahman from the IPL following threats from extremist group. The then Bangladesh Cricket Board, BCB, led by Aminul Islam, expressed concern over the safety of players, officials and journalists travelling to India for the tournament. After the ICC stated that security arrangements were adequate, the interim government subsequently directed the BCB to withdraw from the tournament, a decision that drew sharp criticism from former cricketers and sports analysts. Naval Singh Parmar, Akashwani News, Dhaka.
1: In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharmashala last night. Chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. Skipper Akshar Patel was the highest scorer with 56 runs. David Miller made 51 runs off 28 balls. For Punjab Kings, Arshdeep Singh and Yash Thakur took 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and opted to bowl. Putting to bat, Punjab Kings scored 210 for 5 in the stipulated 20 overs. Shreyas Iyer was the top scorer with 59 runs, while Priyansh Arya made 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc and Madhav Tiwari scalped 2 wickets each. Madhav Tiwari was adjudged player of the match. Today, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall of Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, thunderstorms and hailstorms are likely to prevail over Himachal Pradesh, Ladakh and Jammu and Kashmir for the day. The Met Department has predicted thunder squall with wind speed reaching up to 60 km per hour over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Bihar and Uttarakhand today. Thunderstorms and lightning are likely to prevail over Uttar Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Odisha, coastal Andhra Pradesh, Karnataka and the northeastern states today. The IMD has issued an orange alert for rain in Uttarkashi, Chamoli, Rudraprayag, Bageshwar and Pithoragarh districts of Uttarakhand for the next 36 hours, while a yellow alert has been issued for the remaining districts. There is possibility of hailstorms and gusty winds in various parts of the state during this period. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
2: Thank you, Abhishek. The Somnath Amrit Mahotsav is at the sacred Somnath Temple in Gir Somnath, Gujarat, finds prominent mention in most of the dailies this morning. The statesman, quoting Prime Minister Narendra Modi, says, Somnath Temple stands as beacon of unwavering faith, while the pioneer quotes him as saying, no power can bend India. Prime Minister Modi salutes scientists on National Technology Day, highlights push for self-reliant India, reports the statesman. Second day, Prime Minister makes austerity push, invokes COVID-era habits, leads the Indian Express. The Pioneer, in its editorial piece, says, rising crime against senior citizens. The paper elaborates that as India moves steadily towards becoming an aging nation, ensuring safety, dignity and emotional security for senior citizens must become a national priority. India, at present, is a young nation, but it is aging rapidly. By 2050, the country will have a significant elderly population. As the country progresses and new technologies emerge, they also have a downside. They are alienating a large section of society, senior citizens who find it difficult to cope with evolving technology and changing time. Suvendu government begins to implement key pledges, notice the Asian Age. New Delhi all set for first summit of International Big Cat Alliance in June, writes the Economic Times. And finally, the Beatles' first official London museum, called the Beatles at 3 Savile Row, is set to open next year in the Mayfair building, where the band recorded its final album and played its last gig, reports the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products and bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Domdom municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. and Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नजर आवाम से ज़रे मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा आज गुवाहाटी में आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा चार वज्रा भी हलफ लेंगे, जिनमें बीजेपी के दो एजीपी और बीपीएफ के एक एक वजीर होंगे। ईडी ने जुनूबी दमदम म्यूनिसिपलिटी भर्ती घोटाले मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहदा अरब इमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बामुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के दौरान जरे मुबादला बचाने के लिए आवाम से ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। कल शाम गुजरात के वडोदरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कोरोना के वक्त के तौर तरीकों जैसे घर से काम करने, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स, नीस, पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल को दोबारा अपनाने की अपनी सबका अपील को दोहराया। दरामदात में कमी लाने और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इज्तमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर आजम ने कहा कि हम सभी को मिलकर मुल्क के वसाइल पर बोझ कम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
4: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च हो। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
3: वजीर आजम ने कहा कि भारत बैरूनी मुल्क से बहुत सी मसनूआत दरामद करने पर जरे मुबादला की मद में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि मौजूदा बहरान के 22 दरामद होने वाली अशिया की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है और आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि इस बहरान के असरात मुल्क के शहरियों पर कम से कम पड़े।
4: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
3: उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते, मुल्क के मुफाद में हर छोटा और बामानी कदम जरूरी है। वजीर आजम ने सरकारी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसों और कारपुलिंग को अपनाने के जरिए पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील का इरादा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालात के मामूल पर आने तक सोना खरीदने से गुरेज करने की भी अपील की। एक अहम सियासी और तारीखी पेशरफ्त के तहत हेमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी मुद्दत कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से आज हलफ लेंगे। वह आसाम की तारीख में लगातार दूसरी मरतबा इस ओहदे पर फाइज होने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर होंगे। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, डॉ सरमा और उनकी वजारती कौंसिल को ओहदे और राजधानी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
5: डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के बतौर वजीर आला के अलावा वजारती काउंसिल के 4 अराकीन भी आज हलफ लेंगे। ये 4 काबिनी वजीर हैं रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दीगर कई मरकजी वुजरा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला शिरकत करेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब की मेजबानी के लिए गुवाहाटी के कानपाड़ा के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। तकरीब के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा को देखते हुए खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। कामरूप मेट्रो जिला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक और गाड़ियों की हसब मामूल आमोदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
3: इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने मगरबी बंगाल हुकूमत के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साबिक वजीर सुजीत बसु को कोलकाता में जुनूबी दमदम म्यूनिसिपलिटी भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी हुकाम के मुताबिक सुजीत बसु पर इल्जाम है कि उन्होंने साबिका टीएमसी हुकूमत के दौरान जुनूबी दमदम म्यूनिसिपलिटी में मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्री के लिए तकरीबन 150 उम्मीदवारों की सिफारिश माली फायदे हासिल करने के लिए की थी। उन्होंने बताया कि ईडी ने रिश्वत से हासिल शुदा आमदनी के बराह रास्त शवाहिद का सुराग लगाया है, जिनमें ऐसे फ्लैट्स शामिल हैं जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अफराद को म्यूनिसिपल नौकरियां दिलाने के एवज हासिल किए गए थे। तहकीकती एजेंसी ने उनके बैंक खातों में बड़ी मकदार में नकद रकम जमा होने की भी निशानदेही की है। सुजीत बसु को आज खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा जुमे से मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। ये दौरा हाल ही में तय पाने वाले भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे एफटीए के तनाजुर में यूरोप के साथ खासतौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में भारत की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम की है। जनाब ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे के ईरान के तजवीज को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज को मुस्तरद किए जाने के जिम्न में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरतहाल का शिकार है। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई तजवीज को रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल करार दिया। व्हाइट हाउस में जच्चा की सेहत देखभाल से मुतालिक तकरीब में ट्रंप ने शुरका से कहा कि वो अपनी बातों को मुख्तसर करें क्योंकि उन्हें ईरान के मामले पर जनरलों के बड़े ग्रुप से तबादले ख्याल करना है। सदर ट्रंप को इतवार के रोज ईरानी तजवीज मौसूल हुई जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए जंग के खात्मे का कोई रास्ता निकल आएगा। इस जंग से तेल की आलमी सप्लाई के अहम समुद्री रास्ते मसदूद हो गए हैं जिसके नतीजे में कई मुल्कों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ है जंगबंदी को इंतहाई नाजुक करार देने के बाद तेल के बाजार लड़खड़ा गए हैं और भारतीय कशीदगी में इजाफा हो गया। जनाब ट्रंप की जानिब से इस तबसरे के बाद जंगबंदी के बरकरार रहने से मुतालिक ताजा खदशात में इजाफा हो गया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी अमन तजावीज पर अपना जवाब भेजा जिसमें सभी महाजों पर मुखासमत के खात्मे, अमरीकी पाबंदियां हटाने, ईरान के मुंजमित असासे जारी करने, अमरीका की बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हुरमुज पर ईरान के इंतजाम को तस्लीम करने की बात कही गई थी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
5: ईरान के मुतालिबात बुनियादी तौर पर फौरी न्यूक्लियाई रियायतों के बजाय जंग के हालात और इक्तसादी सूरतहाल पर मबनी है जिसे वाशिंगटन इस मरहले पर कबूल करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। दोनों फरीकों के दरमियान काफी दूरी है और मसालेहतकार मुश्तरक हल ढूंढने में जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं क्योंकि पूरे मगरबी एशिया में जंग का दबाव और इक्तसादी दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात में हुकूमत कौमी बुनियादी ढांचे पर हमले के जवाब को कतई शक्ल दे रही है। हुकाम ने 2800 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल हमलों के जरिए

0: करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित राम नारायण द्वारा सारंगी पर बजाया राग अलहिया बिलावल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आप सुन रहे थे पंडित राम नारायण द्वारा सारंगी पर बजाया राग राग अलहैया बिलावल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9:15 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: अंक में आप सभी का स्वागत है।
1: हम सब लोगों ने अपने जीवन काल में, अध्ययन काल में लाइब्रेरी जरूर देखी होगी। पुस्तकालय महत्वपूर्ण स्थल होता है जहां दुनिया भर के लेखकों की लिखी गई, अनुभव की गई और साझा की गई जानकारियां एक पुस्तक के माध्यम में वहां संरक्षित रहती है। और जो भी लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़ना चाहते हैं वो पुस्तकालय जाते हैं, वहाँ अपने मनपसंद की किताबें देखते हैं और वहाँ से उन अर्जित की गई, संरक्षित की गई ज्ञान को अपने फायदे के लिए, अपने समग्र विकास के लिए उपयोग करते हैं। जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता जा रहा है उसी तरह से लाइब्रेरी का महत्व बढ़ रहा है और लाइब्रेरी की उपयोगिता भी बढ़ रही है। लाइब्रेरी का महत्व बढ़ रहा है, इसके रोल भी बदल रहे हैं, जिम्मेवारियां भी बदल रही है और एक स्किल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस तरह से पुस्तकालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आधुनिक युग में, खास करके हमारे जो पर्यावरण से जुड़ी हुई जानकारियां हैं उसके लिए भी। विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर पीके भट्टाचार्य। आप निदेशक हैं, साथ ही आप एक सीनियर फेलो हैं नॉलेज रिसोर्स सेंटर में, जो कि द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। डॉक्टर पीके भट्टाचार्य जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: एक तो हरित कौशल विकास की बात करते हैं, जो ग्रीन स्किलिंग की बात होती है, और उसमें इस चीज को, पुस्तकालय की भूमिका आप किस रूप में देखते हैं और इस तरह का जो विकास है वो व्यापक स्तर पर लागू करना क्यों जरूरी है?
2: तो आपका इस प्रश्न का जवाब हम दो तरीके से देंगे। पहले हम देते हैं जो ग्रीन स्किल को, जो हम बोलते हैं स्केल अप करना, तो ये बढ़ाने के लिए क्यों जरूरी है आज के दिन में। देखिए, हम सब जानते हैं जो भारत कोशिश कर रहा है, जो हम लोग 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में आए और 2070 तक हम चाहते हैं नेट जीरो कंट्री बन जाए। अब ये सब चीज बनने के लिए आपको कई सारे और चीज में बदलाव लाना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहले आता है जो एक सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस जो फॉलो करना पड़ेगा आपका इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री को पहले जो भी प्रोसेस फॉलो करके आजकल वो बिजनेस कर रहे हैं, उन चीज को बदल के न्यू टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, नए नए एरियाज पे काम करना पड़ेगा और वो सारा काम देखना पड़ेगा जो सस्टेनेबल हो। अब ये सस्टेनेबल जब हम ये वर्ड बोलते हैं, इसमें जो चीज सबसे जरूरी होती है, जो एक तो टेक्नोलॉजी का यूज और दूसरा जो उन टेक्नोलॉजी को चलाने वाला, जो कि एक ऐसा स्किल के साथ, ऐसे हरित कौशल का साथ बंदा आएगा जो उन इंडस्ट्रीज का जो भी नया चेंजेस है उनको लागू कर पाए। अब इस हिसाब से अगर देखे तो मैं कुछ आंकड़ा आपको अगर दू तो आपको समझ में आएगा। जो गवर्नमेंट सोचते हैं 2030 तक हमें कम से कम 32 लाख अतिरिक्त हरित कौशल श्रमिकों की आवश्यकता है, जिनमें लगभग 45% जो आज के दिन में जैसे काम कर रहे हैं उनमें बदलाव लाना पड़ेगा, जो हरित कौशल के ऊपर काम करेंगे। अब डिफरेंट सेक्टर पे काम होगा, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल आज हम बोलते हैं उनमें चेंज होगा, वेस्ट मैनेजमेंट में चेंज होगा। अब इन सब एरियाज में जो भी काम होगा वो सस्टेनेबल स्पेसिफिक हो। ये जो हमारा खाद्य वगैरह आगे और जरूरत होगी तो उस चीज के लिए हमें चाहिए होगा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो ये सारे चीज की जरूरत होगी और इसी चीज के लिए हमें चाहिए ये हरित कौशल वाले काफी सारे लोग, जो एक्चुअली आज के दिन में हमारे अंदर कमियां हैं। दूसरी जो क्वेश्चन आपने पूछा था, जो लाइब्रेरी इसमें कैसे मदद कर सकती है, अब देखिए लाइब्रेरी स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हम सब कोई जानते हैं लाइब्रेरी में बहुत नॉलेज है, आज तक हम नॉलेज लोगों को दे के आए हैं। अब इनमें अगर हम ऐसा काम कुछ करें जो उन नॉलेज से ऐसे छोटे छोटे आप कह सकते हो कोर्सेस बनाए, कोर्स मॉड्यूल बनाए, और जो कोर्स मॉड्यूल जो सस्टेनेबिलिटी ड्रिवेन हो, सस्टेनेबिलिटी को फोकस करके बनाया हो, उन कोर्स मॉड्यूल अगर लाइब्रेरी से छोटे छोटे कोर्सेस चलाए जाए, और या तो एक महीना वाला या एक दिन वाला, 7 दिन वाला, ऐसे कोर्सेस चलाए जाए और जो लोग इन कोर्स को वैल्यू एड करेंगे, जो लोग इस कोर्स को प्राप्त करने के बाद इनको यूज करके अपना नौकरियां वगैरह मिलेगा, अगर ऐसा स्थिति में हम पहुंचा सके या तो अपना निजी बिजनेस शुरू करेगा ऐसे स्थिति में पहुंचा सके, तो मैं सोचता हूं जो लाइब्रेरी अपना प्रॉपर काम कर रहा है।
1: इसको और आगे बढ़ाने के लिए पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है इस तरह के हरित कौशल विकास के लिए?
2: अब देखिए, लाइब्रेरी बेसिकली बहुत तरीके से कर सकते हैं। जो चीज आपको एक एग्जांपल दूं, हमारा जो गवर्नमेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाए हैं, इन नेशनल

0: एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला जा रहा है, जो पुस्तकालय में जो लोग बैठे हैं इनकी काम केवल अपनी लोगों को पुस्तक या तो नॉलेज सर्विस प्रोवाइड करना नहीं होना चाहिए, ये आसपास की जो समुदाय है उन लोगों के साथ भी मिलके उनका भी नॉलेज गेन कराना जरूरी है, उन लोगों को भी शिक्षा देना जरूरी है। अब मैं जो चीज कर रहा हूँ ग्रीन स्किल में बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत लोग चाहिए जो इस टाइप की इंडिया को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। हमें लाइब्रेरी फील्ड में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें सिखाया जाता है इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस, और इन दोनों चीज के दौरान हम लोग ये सीखते हैं कैसे इंफॉर्मेशन डिफरेंट जगह से लेके और जगह से लेके इन चीज को किस तरीके से हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट एक रिपोर्ट फॉर्म में हम अपना यूजर को देते थे। इस केस में हमें जो चीज करना पड़ेगा, जो हम सस्टेनेबिलिटी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन लेके उसको एकत्रित करके हमारा कोशिश ये होना चाहिए जो हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाएं। अब जो हम पहले रिपोर्ट बनाते थे अब हम उसको मॉड्यूल बना रहे हैं। अब इन मॉड्यूल को हो सकता है जो कुछ केसेस में हमारे शायद इतनी नॉलेज लेवल नहीं होगा, हो सकता है जो चीज हम टेरी लाइब्रेरी में भी फेस किए है। अब उस केस में क्या होगा, जो आपको जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है, जो एक्सपर्ट है उस फील्ड की, उनसे एक बार वैलिडेट कराना, उनसे एक बार समीक्षा कराने का भी जरूरत है। वो उसको देख के अगर आपको बता दे जो बहुत बढ़िया बना है आपका ये मॉड्यूल, तो फिर इन चीज को लेके हम ये हरित कौशल का जो प्लान बोल रहे थे ये चीज आगे ले जाए।
1: विभिन्न हितधारकों के लिए अगर हम बात करें कि जो हरित कौशल की बात करते हैं और जिसमें पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग इस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये तरीके क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे ये कार्य किया जा सकता है?
0: जैसे कि देखिए गवर्नमेंट का एक जो स्कीम्स है इनको आगे ले जाने के लिए कई सारे मिशन्स लाए हैं गवर्नमेंट, जिनमें एक मिशन है मिशन लाइफ। अब मिशन लाइफ सस्टेनेबिलिटी इन योर लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस के ऊपर जोर देते हैं। अब इसकी तहत हम लोग जो करते हैं, जो इनमें ना सात टॉपिक है जिनमें आपका क्लीन एनर्जी नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको कैसे यूज करेंगे, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे यूज करेंगे, आपका उससे क्या बेनिफिट होगा, देन आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से आप रीयूज करो ताकि उन्हीं वेस्ट से कोई और चीजें बने, ताकि आपको बार बार ज्यादा चीजें फेंकना ना पड़े, उसी चीज को यूज कर सकते हो। ये जो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज है ये सब कोई जानते हैं, फिर भी हम प्लास्टिक की पन्ने यूज करते हैं। अभी जैसे हमने ग्वालियर में वहाँ कम्युनिटी के साथ एक मेगा प्रोग्राम किया है 2 महीना, वहाँ हर एक बंदा जैसे कि मान लीजिए जो वहाँ का व्यापारी है, वहाँ का जो कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स है, इन सबको सिखाया है जो भाई वेस्ट जो पेपर है या वेस्ट जो क्लॉथ्स है उससे कैसे क्लॉथ बैग बनाया जा सकता है या तो पेपर बैग बनाया जा सकता है, और उससे किस तरीके से आपका जो प्लास्टिक बैग है उसको आप छोड़ सको उसकी यूज। ऐसे और भी एरियाज है जिन चीज को बेसिकली मिशन लाइफ की थ्रू हम लोगों को सिखा सकते हैं और सिखा भी रहे हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है लाइब्रेरी जो मैं कह रहा था डिफरेंट ट्रेनिंग्स दे सकते हैं लोगों को, जैसे कि एक दिन का ट्रेनिंग, ये मिशन लाइफ वाला आपको एग्जांपल दिया, हमने कई सारे टाइप की ट्रेनिंग कराते हैं जिनमें कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग्स है। अब इन टेक्निकल ट्रेनिंग जो है आपका वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग और सोलर एनर्जी के ऊपर हम कराते हैं, सोलर एनर्जी एप्लीकेशन। अब इन चीज की हर एक जगह पे यूज है, जैसे गांव में जब हम सिखाते हैं लोगों को तो सोलर एनर्जी कैसे सोलर पंप यूज करके, सोलर ड्रायर यूज करके फसल सुखाएंगे, जहां पे जानवरों का प्रॉब्लम है फसल खा जाते हैं या नष्ट करते हैं तो उन टाइप की केस में हम कैसे सोलर फेंसिंग यूज कर सके, ऐसे कई सारे ट्रेनिंग्स हम लोग सिखाते हैं लोग को, उनके लिए कोर्स मॉड्यूल बना के उनको वीडियो बना के उनको दिखाया जाता है। 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग में सिखाया जा सकता है। हमारे कुछ बड़े ट्रेनिंग्स भी होते हैं जो वेस्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए है, तो इस केस में हम गवर्नमेंट की जो ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम MoEFCC दैट इज वन एंड पर्यावरण मंत्रालय जो है, तो उनके साथ मिलके उनकी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलती है उसके अंदर हमने ये कोशिश की है। तो आज तक 1500 बच्चों को इन एरियाज में हम लोगों ने ट्रेनिंग दिए है। अब इन लोग क्या करते हैं, जो एक एक महीना का ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, रेसिडेंशियल होती है ये ट्रेनिंग। अब इन ट्रेनिंग में ये लोगों को सिखाया जाता है कैसे सोलर पैनल को यूज करके आप ये डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगा आपको, और उन इलेक्ट्रिसिटी को किस किस चीज में आप यूज कर सकते हो, जहां बैटरी की जरूरत है वहां पे आप यूज यूज करो, फार्मर्स

0: बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनको सिखाए हैं, जो ये जो उनका पॉली हाउस बनाया जाता है जिसके अंदर आपको एक टेम्परेचर कंट्रोल होता है, तो सर्दियों में गर्मियों में तो कहीं पंखा वगैरह चलाना, उस केस में सोलर टेक्नोलॉजी की जो बिजली है वो कैसे यूज कर सकते हो, ये सब चीज उनको सिखाया जाता है। सिमिलरली जब आप वेस्ट मैनेजमेंट में आते हो तो हम लोगों ने कोविड के बाद जो बड़ा झमेला था, जो बहुत सारे हैजर्डस वेस्ट मेडिकल वेस्ट बन रहा था, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, लोगों को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो हम लोगों ने उनको ट्रेन किए है जो किस तरीके से वो एक एक सामान को मैनेज करेंगे, उससे कैसे पीपीई किट बनाया जा सकता है, इन सब चीज के बारे में उनको नॉलेज दिए है, कैसे इसको मल्चिंग जिसको बोलते हैं वो किया जा सके ताकि उस वेस्ट प्रोडक्ट को दोबारा किसी चीज में यूज किया जाए। तो इन टाइप की ट्रेनिंग जो लोगों को दिए है, तो उसमें हमने महिलाओं के लिए रखे थे ये ट्रेनिंग, हमारा 4 ट्रेनिंग अब तक हुआ है, चारों ट्रेनिंग में सारे के सारे महिलाओं को जॉब मिल गई है, ये जो नियर बाई जो नर्सिंग होम्स है वहाँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे प्रदूषण हमें बोला जाता है, जो 25% प्रदूषण सिटी लेवल में आता है ये परिवहन से, तो स्वच्छ परिवहन का तहत हम लोगों को कोशिश करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे यूज करें। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने के लिए मेजर प्रॉब्लम है जो हमारे पास चार्जिंग स्टेशन सही से नहीं है, और अगर चार्जिंग स्टेशन है भी वो काम नहीं करता, तो इसलिए हमें रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए था काफी सारे चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स जो ट्रेंड हो, स्किल्ड हो। तो इन टाइप की लोगों को हम लोगों ने ट्रेन कराया, जो बेसिकली इसमें हमें सपोर्ट कर रहा है कॉरपोरेट लेवल का भी लोग, जैसे कि मर्सिडीज से हमें सपोर्ट मिलता है, मर्सिडीज बेंच से, तो इनके साथ मिलकर हम लोगों ने कुछ कोर्स मॉड्यूल बनाया जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स मॉड्यूल, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल अप्रूव्ड कोर्स मॉड्यूल है। तो उन कोर्स को जब उनको सिखाया जाता है तो वो लोग एक्चुअली IoT ड्रिवन हो चार्जिंग स्टेशन, उनको भी बेसिकली मैनेज कर सकते हैं और कोशिश कर सकता है जो उसको रिपेयरिंग भी। तो इसमें हमारे लिए क्या हो रहा है एडवांटेज, जब एक चार्जिंग मशीन खराब होता है उसको दोबारा रिपेयरिंग के लिए भेजना नहीं, वो वहीं पे मैक्सिमम काम उसका हो जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाहती भी है जो लाइब्रेरी में जो रिसोर्स है उनको यूज करे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स और आगे चल के उनसे लोगों को शिक्षा प्रदान करे। अब मेरा कहने का मतलब है वो शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो लाइफ में यूज करे और उससे उनको रोजगार भी मिले, या तो उनको अपना जो निजी समस्या है उन चीज को ठीक ठाक कर पाए। ये जो यूनिवर्सिटी सेटअप है, यूनिवर्सिटी सेटअप में आप लोग कुछ जो भी लोग वहां आएंगे उनको एक स्टैंडर्ड प्रशिक्षण दे पाएंगे, लेकिन बहुत सारे केस में हमें वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है जो यूनिवर्सिटी सेटअप में नहीं पॉसिबल। उन केस में अगर हमारा कुछ स्टैंडर्डाइज कोर्स बने जो NCVET में अप्रूव कराया जाए जो गवर्नमेंट की है, तो फिर वो छोटे छोटे कोर्सेस जो बेसिकली यूनिवर्सिटी की एक एक साल वाली कोर्स नहीं, मे बी 5 दिन वाली कोर्स, तो वो चीज डायरेक्टली उनको सिखा के उनकी बेनिफिट हो सकता है।
1: देखिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो कई सालों से है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट की बात की, अब आ रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, न केवल कि सिर्फ शिक्षा देने में बल्कि एक समग्र शिक्षा जिसमें सामाजिक सरोकार भी जुड़े हुए हैं उनसे। और आपने एक नई बात की है कि पुस्तकालयों को भी किस तरह से सामाजिक सरोकारों से जुड़ना चाहिए, उनको समाज के लोगों तक जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय जब हरित पुस्तकालय बनेगी तो न केवल ये ज्ञान प्रदान करेंगे बल्कि एक ऐसे भविष्य के निर्माण में भी मदद करेंगे जो टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हो। डॉक्टर PK भट्टाचार्य जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने इतने महत्वपूर्ण विषयों में जो पुस्तकालयों की बदलती हुई भूमिका है, जो उसका महत्व है आधुनिक युग में विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के, उन सब बातों पर विस्तृत जानकारियां दी आकाशवाणी आने के लिए, और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366।

9:35 पर सुबह ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 9:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे। नौ बजकर 50 मिनट पर खबरें नशे की जाएंगी और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अकवाल इन सर्री पर मबनी शम्मे फरोजा।

हुस्ने गजल प्रोग्राम में आज के फनकार हैं अशोक वर्मा और जयश्री गुप्ता। आप पेश करेंगे चंद गैर फिल्मी गजलें। इस प्रोग्राम का वक्त रहेगा सुबह 10:05। बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे पूर्वोत्तर डायरी और 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम पेश किया जाएगा। दिन में 11:30 पर जनाब हृदय कौल भारती का तहरीर करदा ड्रामा सुनेंगे रिश्तों का जुगनू। बारह बजे खबरें नशी की जाएंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी दोगानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम जारी रहेगा 12:45 तक। दौरान प्रोग्राम 12:30 तारीख साज प्रोग्राम पेश किया जाएगा। मौजू है बोध गया। सुर्खियों में ये प्रोग्राम आप सुनेंगे 12:45 पर। दिन में 1 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेशे खिदमत प्रोग्राम सुबगाही। सुबगाही प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए भजन।

0: सुबह के प्रोग्राम में आज आप समाप्त कर रहे थे भजन। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और प्रमोद, अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और अपने श्रोताओं को बताने का कि आज यानी 12 मई का दिन क्यों अहम है।
2: That's right. Today we observe International Nurses Day. This day is celebrated every year on the 12th of May to honor nurses and their service to society. Sir Firozi, I think ye jo nurse ki jo profession hai, bahut noble profession hai.
1: Bilkul.
2: Hai na, kisi ka khayal rakhna.
1: Aur ek jo main cheez add karna chahungi Pramod, wo ye hai ki aksar hum dekhte hain jo doctors hain wo bilkul apne tan man dhan se seva karte hain marizon ki, lekin kahin na kahin unka ek tay time hota hai, wo aate hain patient को चेक करते हैं और चले जाते हैं। पर इफ यू सी नर्सेस जो है

0: वो कहीं ना कहीं 24 घंटे उस मरीज जो रहता है उसकी डेडिकेटेड सर्विस में लगे रहते हैं.
1: एब्सोल्युटली. सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: है ना, ठीक है, पैसा मिलना अलग बात है, बट किसी का एक्चुअली केयर करना, बिकॉज मेरे पापा भी उसी स्टेट में थे 5-6 महीने, तो मैंने देखा था वो जो नर्सेज उनका ख्याल रख रहे थे, दे वर डूइंग इट विद सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन.
0: और कोविड के दौरान जो हमने देखा, अपनी जान गवाकर उन्होंने दूसरों की जान बचाई.
1: एब्सोल्युटली.
0: बिल्कुल प्रमोद. और अब जिक्र कर लेते हैं उन शख्सियत का जिनके नाम पर नर्सिंग डे मनाया जाता है. फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सिंग डे. 1820 में इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ. इन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है और जैसा कि हमने कहा, इन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे मनाया जाता है. इन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान घायलों की सेवा की. 1860 में लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नर्सिंग स्कूल की स्थापना की और पेशेवर नर्सिंग की नींव रखी. हर साल भारत में उत्कृष्ट काम करने वाली नर्सों को राष्ट्रपति द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. और प्रमोद, अपने श्रोताओं को बता दें कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं. और मुझे लगता है ऑन पॉइंट जो है ये थीम रखी गई है.
1: बिल्कुल, एब्सोल्युटली.
0: और मैं आपको ले जा रही हूँ लगभग 200 साल पीछे. 1666 में आज ही के दिन शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में आगरा पहुंचे. इसके बाद की घटनाओं और उनके साहस ने मराठा साम्राज्य के इतिहास को नई दिशा दी. आज ही के दिन 1915 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाने के बाद राज बिहारी बोस आज ही के दिन सानुकी मारू जहाज से जापान के लिए रवाना हुए. इन्होंने विदेशी धरती से भारत की आजादी की अलख जगाई.
1: अगर मैं आपसे एक क्विज पूछूं छोटा सा, तो आप बता पाओगे?
0: चलिए आप पूछिए, देखते हैं.
1: द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपके हिसाब से कब आया था?
0: I'm guessing around 1940.
1: Very good. 1941. Konrad Zuse presents the Z3, the world's first working computer in Berlin. And in 1926, explorer Roald Amundsen and his crew aboard the airship Norge flew over the North Pole. This is recognized as the first undisputed verified aerial reaching the pole.
0: और 1949 में ही विजयलक्ष्मी पंडित ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में भारत की राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला. वो अमेरिका में भारत की पहली महिला राजदूत बनी. और प्रमोद, हमने काफी घटनाओं का जिक्र किया जो आज ही के दिन घटी थी और जिनकी वजह से आज का दिन हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है. पर आज ही के दिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस दुनिया में आए या इस दुनिया से आज ही के दिन विदा हुए. अब उन लोगों का भी जिक्र कर लेते हैं.
1: That's right. And now moving on to birth and birthdays. So we have the birthday of Amita Prakash, an Indian film actress. She began her acting career when she was just 4 years old and acted in both Bollywood and Malayalam films. She has since been seen in a myriad of Bollywood films, television commercials and television reality and fiction shows. Her first television commercial was for a local footwear company in Kerala. And she went on to do a lot of films with Rajshree Films, playing the character of Choti in Suraj Barjatya's Vivaha. Her performance in Vivaha was hugely appreciated by critics.
0: जाने माने निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की आज जयंती है. इन्होंने राम राज्य, बैजू बावरा, गूंज उठी शहनाई, हिमालय की गोद जैसी फिल्मों का निर्देशन किया. इन्होंने प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश पिक्चर्स और प्रकाश स्टूडियो की स्थापना की. विजय भट्ट को हिंदी फिल्मों में शास्त्रीय संगीत की शुरुआत करने का श्रेय जाता है. इनकी फिल्मों में महान शास्त्रीय कलाकारों ने कई बार एक साथ अपनी गायकी या वादन का फन बिखेरा, जैसे बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खां और पंडित डीवी पलूसकर ने आज गावत मनमोरा गीत गाया था. दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का. दीजिए इजाजत सर फिरोजी और वीसी प्रमोद को कार्यक्रम आज सवेरे समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी.
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे. नमस्कार.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे. ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. सुबह के 9:50 हुआ चाहते हैं. अब खबरें नशे की जाएंगी.
3: ये आकाशवाणी है. अब आप मोहम्मद अम्मार से खबरें सुनिए. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बुहरान के पेश नजर आवाम से जर मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और

0: सर ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई तजवीज को रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल करार दिया। व्हाइट हाउस में जच्चा की सेहत देखभाल से मुतालिक तकरीब में ट्रंप ने शुरका से कहा कि वो अपनी बातों को मुख्तसर करें क्योंकि उन्हें ईरान के मामले पर झड़पों के बड़े ग्रुप से तबादले ख्याल करना है। सर ट्रंप को इतवार के रोज ईरानी तजवीज मौसूल हुई जिससे उम्मीद की जा रही थी कि 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुई जंग के खात्मे का कोई रास्ता निकल आएगा। इस जंग से तेल की आलमी सप्लाई के अहम समंदरी रास्ते मसदूद हो गए हैं जिसके नतीजे में कई मुल्कों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों की जानिब से मौसूल जवाब को पढ़ा है जो उन्हें पसंद नहीं आया। ट्रंप ने इसे पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार दिया। तेहरान के साथ जंगबंदी को जनाब ट्रंप ने नाकाबिल यकीन हद तक कमजोर करार दिया। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी को इंतहाई नाजुक करार देने के बाद तेल के बाजार लड़खड़ा गए और सिफारती कशीदगी में इजाफा हो गया। जनाब ट्रंप की जानिब से इस तबसरे के बाद जंगबंदी के बरकरार रहने से मुतालिक ताजा खदशात में भी इजाफा हो गया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी अमन तजावीज पर अपना जवाब भेजा जिसमें सभी महाजों पर लड़ाई के खात्मे में अमरीकी पाबंदियां हटाने ईरान के मुंजमद असासे जारी करने अमरीका की बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हुरमुज पर ईरान के कंट्रोल को तस्लीम करने की बात कही गई थी। जम्मू कश्मीर में हुक्काम ने जरूरी इजाजतनामे हासिल किए बगैर काम करने की पादाश में बाइक और कैब खिदमात फराहम करने वाली कंपनी रैपिडो पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू के आरटीओ जसमीत सिंह ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि रैपिडो कंपनी एग्रीगेटर सर्टिफिकेट के बगैर काम कर रही थी जिससे मरकज के जेर इंतजाम इलाके में उसकी खिदमात गैर कानूनी हो गई हैं। भारतीय बहरिया के नामजद सरबराह वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा है कि मुल्क सरहद पार से होने वाली किसी भी जसारत से निपटने और उसका खात्मा करने के लिए तैयार है। मगरबी बहरी कमान के कमांडिंग इन चीफ फ्लैग ऑफिसर जनाब स्वामीनाथन ने कहा कि भारत कई सालों तक दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है और मुल्क में बिलखसूस बैरूनी सरजमीन से की जा रही दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द कैंपों को खास तौर पर निशाना बनाया गया जिन्होंने साल 2025 में पहलगाम वाकई को अंजाम दिया था। जनाब स्वामीनाथन पाकिस्तानी दिफाई अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तबसरों से मुताल्लिक रिपोर्ट पर रायसनी कर रहे थे। कानून की वजारत आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर के ब्लॉकों की नीलामी का दूसरा मरहला शुरू करने जा रहा है। दूसरे मरहले के तहत वजारत जम्मू और कश्मीर हुकूमत के ताउन से नीलामी के लिए 12 चूना पत्थर के ब्लॉक पेश कर रहा है। बांग्लादेश में भारत में मुनाक़िदा मर्दों के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात का पता लगाने के लिए एक 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है। 10 मई के सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक साबिक एडिशनल सेक्रेटरी डॉ AKM वलीउल्लाह इस कमेटी की सरबराही करेंगे जबकि बांग्लादेश के साबिक कप्तान और मौजूदा चीफ सेलेक्टर हबीबुल बशर और सुप्रीम कोर्ट के वकील फैसल दस्तगीर कमेटी के अरकान में शामिल हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बुहरान के पेश नजर अवाम से जर मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमराह 4 वजरा भी हलफ लेंगे जिनमें बीजेपी के 2 AGP और BPF के 1-1 वजीर शामिल होंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्यूनिसपैलिटी भर्ती घोटाला मामले में मगरब बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहद अरब अमारात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे और इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बमुश्किल कायम है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत अकवाल जर्रे पर मबनी शम्मे फरोजा।

0: होनी चाहिए, और अगर किसी एक को कोई दुख, रंज, अलम या परेशानी पेश आती है तो उसकी तकलीफ भी तमाम इंसानों को महसूस होनी चाहिए। बाहमी अदावत, नफरत, बुग्ज़ व इनाद और हसद व जलन जैसी बीमारियों से तमाम लोगों को दूर रहना चाहिए। पूरी दुनिया के इंसानों को बाहमी मोहब्बत, उख़ुवत व भाईचारा, खैरख्वाही व हमदर्दी, शफ़क़त व एहतराम, इज़्ज़त व तौक़ीर और अज़मत व मरतबत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला सूरह हजरात आयत नंबर 6 में फरमाता है, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को ईजा पहुंचा दो फिर अपने किए पर पशेमानी उठाओ। इसके अलावा इसी सूरत में आगे ये भी है, ऐ ईमान वालो, बहुत बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियां गुनाह हैं, और भेद ना टटोला करो, और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको उससे घिन आएगी, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। सही मुस्लिम की हदीस में है, जो शख्स अपने भाई के ऐब को छुपाएगा, उसे जिल्लत और रुसवाई से बचाएगा, तो अल्लाह करीम रोज़े क़यामत के दिन उसके गुनाहों को छुपा लेंगे। एक और हदीस में इस बात का सबक दिया गया है, आपस में हमदर्दी और खैरख्वाही के जज्बे को मौजज़न रखा जाए। अगर कोई परेशानी और तकलीफ में मुबतला है तो उसकी परेशानी और तकलीफ को दूर करने की हत्तल मकदूर कोशिश की जाए। जो शख्स किसी की दुनियावी परेशानी को दूर करता है तो अल्लाह ताला उसकी क़यामत के दिन की परेशानियों को दूर फरमाएगा, और जो शख्स किसी भाई के लिए किसी मामले में आसानी पैदा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया व आखिरत में आसानियां पैदा फरमाएंगे। जब तक आदमी अपने भाई की हर मुमकिन मदद करने में लगा रहता है उस वक्त तक अल्लाह ताला उसकी इमदाद फरमाते रहते हैं। इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही सनद के साथ हजरत अबू सईद खुदरी की रिवायत नकल फरमाई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मोमिन भाई के उयूब को देखकर छुपा लेता है तो अल्लाह ताला उसे बदले में जन्नत अता फरमाएंगे। एक और जगह इमाम तिबरानी आमिर का एक वाकया नकल करते हुए लिखा है, क्या आपको वह दिन याद है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया था, जिसे अपने भाई की बुराई या गैर अखलाकी काम के बारे में मालूम हो जाए और वह उसे छुपा ले, यानी अपने भाई की पर्दापोशी करे, तो अल्लाह कयामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएंगे। सुनन इब्न माजा में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, जो किसी दूसरे की पर्दापोशी करता है अल्लाह कयामत के दिन उसके उयूब और गुनाहों को छुपा लेंगे, और जो शख्स लोगों की पर्दादरी करता है अल्लाह ताला उसको घर बैठे जलील और रुस्वा कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के पोशीदा अहवाल और खुफिया मामलात के तजस्सुस को सख्त नापसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजस्सुस यानी किसी की टोह में लगे रहने की मजम्मत बयान करते हुए फरमाया, इंसानों के खुफिया हालात की टोह ना लगाओ, क्योंकि जो दूसरों के मामलात की टोह लगाता है अल्लाह ताला उसके अयूब जाहिर कर देता है, और जिसके अयूब को अल्लाह जाहिर करता है उसे दूसरों के सामने रुस्वा कर देता है। बुखारी की एक हदीस से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बुरा वो शख्स है, वो इंसान है जिसकी बुराई के डर से लोग उसे छोड़ दें।
1: अभी आप सुन रहे थे अखवालें जर्री पर मबनी शम्मे फरोजा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात जारी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर। हुस्न गजल इस प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए अशोक वर्मा और जयश्री गुप्ता की गाई चंद गैर फिल्मी गजलें। कलाम है जिगर मुरादाबादी, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर और फिराक गोरखपुरी का।

0: अपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी। उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
0: पूर्वोत्तर डायरी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको लिए चलते हैं असम। 4 मई को असम विधानसभा चुनाव के नतीजे हमने देखे और असम की 126 सदस्यों वाली विधानसभा का नया कार्यकाल, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में असम में सरकार का नया कार्यकाल शुरू हो रहा है। तो हमारे सहयोगी उत्पल ने इस बार असम विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ये विशेष रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको सुनवाते हैं।
2: घोषित हुए असम विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों ने पूरे राज्य में उत्साह और नई उम्मीद की लहर पैदा कर दी है। हिमंत बिस्व

0: शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 82 सीटों पर जीत दर्ज की, जो वर्ष 2021 में मिली 60 सीटों की तुलना में बड़ा इजाफा है। भाजपा के सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने 126 सदस्यीय विधानसभा में कुल 102 सीटें हासिल कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी सुनिश्चित की। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस को 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जो पिछली बार की 29 सीटों से कम है। मतगणना के दिन सुबह से ही असम के शहरों और गांव में लोग टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल फोन से जुड़े रहे और हर रुझान पर नजर बनाए रखी। परिणाम सामने आते ही विजयी दल के समर्थकों ने शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मनाया। जनादेश पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का उल्लेख किया और ऐतिहासिक जीत को जनता के विश्वास का प्रतीक बताया।
1: गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है, माँ कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है, हैट्रिक तीसरी बार।
0: प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि यह जीत विकास, सुशासन और जनता के भरोसे की जीत है।
1: असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकर देव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोड़ोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा।
0: मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्य की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई सरकार तेज विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी।
2: मैं असम वासियों को धन्यवाद दे रहा हूँ। आपने प्रधानमंत्री जी का ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखाया, हम लोग बहुत ही ग्रेटफुल है और असम में विकास का गंगा बहते रहे, इसलिए भारत सरकार और असम सरकार डबल इंजन सरकार काम करेगा।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए इस जीत का श्रेय राज्य और केंद्र के नेतृत्व को दिया।
3: We are sincerely grateful to the people of Assam because of their support and sympathy and blessing this particular historic mandate we could able to get and this a great recognition to the credible service rendered by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji at the center and also at the state Dr. Himanta Biswa Sarma ji the Chief Minister because this is a kind of encouragement inspiration they have given to the party as a like historic mandate use mandate ultimately with this particular mandate under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister who are going to take the agenda of Assam particularly for the speedy growth and also the like, you know, self-reliant state in the country.
0: सरकार गठन की प्रक्रिया के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। भाजपा संसदीय बोर्ड द्वारा किए गए इन नियुक्तियों का उद्देश्य सरकार गठन की प्रक्रिया को सुचारू, स्थिर और व्यवस्थित बनाना है। स्पष्ट जनादेश और सरकार गठन की तेज प्रक्रिया के बीच असम के लोगों को उम्मीद है कि राज्य विकास, शांति और बेहतर अवसरों के एक नए दौर की ओर आगे बढ़ेगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं करिश्मा राय।
4: असम के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। होम्योपैथी का ये प्रांगण अगरतला में एक लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करता आ रहा है, तो हमारे सहयोगी सुमन भट्टाचार्य ने रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की अगरतला और त्रिपुरा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भूमिका पर ये एक खास रिपोर्ट हमको भेजी है, आइए आपको सुनवाते हैं।
0: त्रिपुरा के खूबसूरत और हरियाली से भरे खुमुलवंग क्षेत्र में जहां प्रकृति और जनजातीय संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान है, वहीं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उम्मीद की एक नई किरण बनकर खड़ा है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी अगरतला। साल 2017 में अपने आधुनिक परिसर में स्थानांतरित होने और क्षेत्रीय संस्थान का दर्जा मिलने के बाद इस संस्थान ने अपनी सेवाओं और प्रभाव दोनों का विस्तार किया है। साल 1984 में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के तहत एक क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के रूप में स्थापित ये संस्थान आज पूर्वोत्तर भारत में शोध और जन स्वास्थ्य का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। जी हाँ, ये कहानी है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी अगरतला की। करीब 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस संस्थान में आधुनिक ओपीडी, प्रयोगशालाएं, फार्मेसी और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समृद्ध पुस्तकालय मौजूद है। यहाँ डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों की समर्पित टीम मरीजों की देखभाल और शोध कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करती है। हर दिन सैकड़ों मरीज यहाँ निशुल्क इलाज प्राप्त करते हैं। सामान्य ओपीडी सेवाओं के साथ साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा रोमेटोलॉजी जैसी विशेष सेवाएं भी उपलब्ध हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया और फाइब्रोमाइल्जिया जैसी पुरानी बीमारियों का समग्र होम्योपैथिक पद्धति से उपचार किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में हजारों मरीज इस संस्थान की सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं, जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। शोध इस संस्थान की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ 25 से अधिक बड़े शोध परियोजनाओं पर काम किया गया है, जिनमें कोविड-19 प्रबंधन, मलेरिया रोकथाम, क्रॉनिक किडनी डिजीज, स्कूल स्वास्थ्य और किशोर स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल है। ये अध्ययन होम्योपैथी के वैज्ञानिक आधार को मजबूत करने के साथ साथ जन स्वास्थ्य नीतियों को भी सहयोग देते हैं। संस्थान में आधुनिक जांच सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जहां हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ी जांचें की जाती हैं, जिससे सही निदान और बेहतर उपचार संभव हो पाता है। संस्थान केवल अपने परिसर तक सीमित नहीं है, ये ग्रामीण स्वास्थ्य शिविरों, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों, मलेरिया जागरूकता अभियान, पोषण अभियान और मानसिक स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से समाज के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्य भी कर रहा है।
5: Regional Research Institute for Homeopathy Agartala is committed to integrating scientific research with compassionate patient care. Our goal is to make evidence-based homeopathy accessible to every section of society. Under strong leadership and clear vision, the institute is steadily moving towards expanding its capabilities, including plans for advanced diagnostic services and quality improvement up to the benchmark of NABH.
0: मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टि के साथ ये संस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है। भविष्य में यहाँ उन्नत जांच सुविधाओं और इंडोर मरीज सेवाओं के विस्तार की भी योजना है।
6: एट रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी अगरतला आवर अप्रोच इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू ट्रीटिंग डिजीजेस, ट्रीटिंग सफरिंग ह्यूमैनिटी, बट वी इक्वली एम्फसाइज ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी अवेयरनेस एज इम्पोर्टेंट पिलर। थ्रू आवर रिसर्च इनिशिएटिव इंक्लूडिंग स्टडीज ऑन क्रॉनिक किडनी डिजीज, मलेरिया, देन गॉलब्लैडर कैंसर, adolescent health, we are working to develop evidence-based and sustainable healthcare solution. Our aim is to integrate homeopathy with modern medicine, incorporating diagnostic support to ensure safe, effective and patient-centered care. We are also actively reaching out to communities through health camps, school health programs, menstrual health programs and awareness drives, ensuring that healthcare services is accessible in remote areas also.
0: विज्ञान, सेवा और सामाजिक प्रतिबद्धता का अनोखा संगम प्रस्तुतकर्ता रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी अगरतला आज शोध आधारित और सुलभ स्वास्थ्य सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है। जैसे जैसे ये संस्थान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये एक मजबूत संदेश भी दे रहा है, शोध के माध्यम से उपचार और समर्पण के साथ सेवा, ताकि सभी के लिए एक स्वस्थ और बेहतर भविष्य बनाया जा सके। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी अगरतला से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ वैष्णवी।
4: श्रोताओं, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में लगातार हमारे देश में नए आविष्कार और नई खोज हो रही हैं और

0: भारत लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत भी इसमें पीछे नहीं है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक जटिल रेडियोलॉजी की प्रक्रिया को वहां के चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक पूरा किया और इसी कहानी को अपनी एक छोटी सी रिपोर्ट में हमारे सहयोगी मनोज हमें सुना रहे हैं। तो आइए अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज की इस रिपोर्ट में पूर्वोत्तर भारत की चिकित्सा उपलब्धि के बारे में जानते हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस ट्रिम्स में पहली बार रीनल आर्टरी स्यूडो एनुरिज्म के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी IR प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यह संस्थान की उन्नत और न्यूनतम चीरा लगाने वाली चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती क्षमता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये प्रक्रिया रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर वांगजू सुमयान एवं उनकी टीम द्वारा कार्डियोलॉजी एवं यूरोलॉजी विभागों के साथ समन्वय में की गई थी। विज्ञप्ति के अनुसार मरीज की हालत स्थिर है, अब वो अच्छी तरह से हो रही है। इस जटिल मामले का उपचार एंडोवैस्कुलर कोयल एम्बोलाइजेशन तकनीक के माध्यम से किया गया। ये एक अत्याधुनिक और न्यूनतम चीरा लगाने वाली तकनीक है जिसके जरिए बिना ओपन सर्जरी के धमनियों की असमानताओं का सटीक उपचार संभव होता है। 40 वर्षीय महिला मरीज किडनी स्टोन की सर्जरी के बाद बाई रीनल आर्टरी में चोट लगने और उसके परिणाम स्वरूप स्यूडो एन्यूरिज्म बनने की समस्या से पीड़ित थी। मरीज को तेज दर्द और पेशाब में खून आने की शिकायत थी। उपचार के दौरान जांघ में एक छोटे से छेद के जरिए दो छोटे धातु के कोयल डालकर रक्त श्राव वाली धमनियों को बंद किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये उपलब्धि संस्थान की चिकित्सकीय क्षमताओं में एक बड़ी उपलब्धि है और अरुणाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। साथ ही ट्रिम्स की अत्याधुनिक इमेज गाइडेड इंटरवेंशन तकनीकों में भी बढ़ती विशेषज्ञता भी इससे उजागर होती है, जो पारंपरिक सर्जरी की तुलना में अधिक सुरक्षित, तेज और अंगों को संरक्षित रखने वाले विकल्प प्रदान करती है। ट्रिम्स के उप चिकित्सा अधीक्षक एवं रेडियोलॉजी विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर वांगजू सुमयान ने कहा है कि ये उपलब्धि उन्नत चिकित्सा तकनीकों के क्षेत्र में ट्रिम्स की आकांक्षाओं बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। संस्थान में अलग कैट लैब के साथ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेवाओं की शुरुआत करना लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर सुमयान ने कहा है कि उन्नत IR प्रक्रियाओं की शुरुआत से आंतरिक रक्तस्राव, रक्तवाहिका संबंधी चोटों और ट्यूमर एम्बोलाइजेशन जैसी जटिल आपात स्थितियों के उपचार में ट्रिम्स की क्षमता को काफी बढ़ावा देगी। इससे मरीजों के ठीक होने में कम समय लगेगा और जटिलताओं में भी कमी आएगी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार लोगों और राज्य सरकार के सहयोग से ट्रिम्स पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित होने की अपनी दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।

0: श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत अपनी वस्त्र कला, बुनाई और शिल्प कला में समृद्ध रहा है और पूर्वोत्तर भारत की इस वस्त्र कला शिल्प कला को और समृद्ध बनाने के लिए सरकार ने समय समय पर प्रयास किए हैं। केंद्र सरकार ने लगातार विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की इस समृद्ध कला को देश विदेश के कोने कोने तक पहुँचाया है। मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई कला और पूर्वोत्तर भारत की एरी सिल्क शिल्प कला को मिलाकर पद्मा डोरी कला का उद्घाटन किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने इस पहल की शुरुआत की। तो आइए जानते हैं कि ये पद्मा डोरी कला क्या है और कैसे पूर्वोत्तर भारत अन्य राज्यों की वस्त्र कला और शिल्प कला को एक साझा रूप देकर नए प्रयास की ओर बढ़ रहा है। आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
1: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने पद्मा डोरी नामक एक अनूठी अंतर सांस्कृतिक वस्त्र पहल की शुरुआत की है। ये पूर्वोत्तर भारत की एरी अहिंसा रेशम परंपरा को मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई की समृद्ध धरोहर के साथ जोड़ती है। इस पहल का औपचारिक शुभारंभ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने किया। इसके बाद एक आकर्षक फैशन शो आयोजित किया गया जिसमें टिकाऊ एरी सिल्क और चंदेरी वस्त्रों की जटिल कलात्मकता के अद्भुत संगम को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर श्री संजय जाजू ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में इस पहल को आकार मिला है जिसका उद्देश्य भारत की विविध वस्त्र परंपराओं को जोड़ना है। उन्होंने बल देकर कहा कि पद्मा डोरी अपनी तरह की एक विशिष्ट पहल है जो मध्य प्रदेश की चंदेरी और पूर्वोत्तर भारत की एरी सिल्क जैसी दो समृद्ध

कार्यक्रम में विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें वस्त्र और सहयोगात्मक शिल्पकला की झलक देखने को मिली। टिकाऊ विलासिता और स्वदेशी ज्ञान परंपराओं के व्यापक विमर्श के बीच ये पहल आधुनिक बाजारों में पारंपरिक हस्तशिल्प की प्रासंगिकता को भी रेखांकित करती है। 1 मई से शुरू हुई 3 दिवसीय प्रदर्शनी को एक इंटरैक्टिव मंच के रूप में तैयार किया गया, जहां आगंतुक कारीगरों से संवाद कर सकते थे, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकते थे और रेशे से कपड़े तक की यात्रा का अनुभव कर सकते थे। पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश के कारीगर इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। वे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और संवाद के माध्यम से अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय व्यंजनों का भी विशेष आकर्षण था, जो सहभागी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं आकर्षिता सिंह।

0: तो श्रोताओं, एरी सिल्क को लेकर आपके मन में जिज्ञासा और बढ़ी होगी। आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए हम एरी सिल्क के बारे में अपनी अगली रिपोर्ट में आपको विस्तार से बता रहे हैं और इस रिपोर्ट में आप जानेंगे खास तौर पर मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में एरी सिल्क का बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। एरी सिल्क पूर्वोत्तर भारत की एक अलग शिल्पकला की पहचान है। ये रेशम कोमलता, अहिंसा और संवेदनशीलता का प्रतीक है और इस रेशम से पूर्वोत्तर भारत के हजारों परिवार अपनी आजीविका कमा रहे हैं। विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण भी एरी सिल्क के माध्यम से हो रहा है। तो आइए, पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक तंत्र का एक अहम हिस्सा एरी सिल्क के बारे में आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में सुनवाते हैं।
1: मेघालय के पारंपरिक एरी सिल्क आज अपनी कोमलता, टिकाऊपन और अहिंसा की विशेष पहचान के कारण देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील सोच और पारंपरिक ज्ञान का प्रतीक बनकर उभरा है। पूर्वोत्तर भारत, खासकर मेघालय और असम में तैयार होने वाला यह रेशम अपनी अनोखी उत्पादन प्रक्रिया और उपयोगिता के कारण अन्य रेशमों से अलग स्थान रखता है। एरी सिल्क को पीस सिल्क या अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। इसका कारण इसकी उत्पादन विधि है जो इस दुनिया के अन्य रेशमों से अलग बनाती है। सामान्यतः शहतूत या मुगा रेशम में कोकून को उबालकर धागा निकाला जाता है जिससे रेशम के कीड़े की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एरी सिल्क में सामिया रसीनी नामक कीड़ा पहले तितली के रूप में कोकून से बाहर निकलता है और उसके बाद खाली कोकून से धागा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए यह रेशम शाकाहारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील लोगों के बीच खास पसंद बनता जा रहा है। मेघालय के रीभोई जिले और उमरेन दिवोन क्षेत्र को एरी सिल्क उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उमरेन दिवोन को देश का पहला एरी सिल्क विलेज घोषित किया जा चुका है। यह बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 25,000 से अधिक परिवार एरी सिल्क उत्पादन और बुनाई से जुड़े हैं, जिनमें 90% से अधिक महिलाएं हैं। इस तरह यह उद्योग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रभावी माध्यम बन गया है। एरी सिल्क की एक खास विशेषता इसकी थर्मो रेगुलेटरी प्रकृति है। यह कपड़ा मौसम के अनुसार शरीर को संतुलित तापमान प्रदान करता है। सर्दियों में यह शरीर की गर्मी को बनाए रखता है, जबकि गर्मियों में हवा के प्रवाह को आसान बनाकर ठंडक का एहसास देता है। इसकी बनावट में हल्की ऊनी गर्माहट भी होती है, जिसके कारण इसे कई बार असमिया ऊन के नाम से भी जाना जाता है। यही गुण इसे साल भर पहनने योग्य बनाते हैं और इसे दैनिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं। इस रेशम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है प्राकृतिक रंगों का उपयोग। एरी सिल्क के कपड़ों को रंगने के लिए स्थानीय और जैविक स्रोतों से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीले रंग के लिए हल्दी, लाल के लिए लैक और नीले या गहरे रंगों के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और कपड़े की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। प्राकृतिक रंगों के कारण यह वस्त्र त्वचा के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। हाल के वर्षों में एरी सिल्क को मिला GI टैग इसकी पहचान को और मजबूत करता है। यह टैग इस बात की पुष्टि करता है कि यह उत्पाद अपने मूल क्षेत्र और पारंपरिक तकनीक से ही तैयार किया गया है। GI टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, खासकर जापान और यूरोपीय देशों में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। इन देशों में ऐसे उत्पादों को अधिक महत्व दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और जिनका उत्पादन नैतिक तरीके से किया गया हो। आर्थिक दृष्टि से भी एरी सिल्क उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में इसके उत्पादन और निर्यात में वृद्धि देखी गई है। बुनकरों को अब सीधे बाजार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। कई क्षेत्रों में बुनकरों की आय में 30 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बदलाव ग्रामीण स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। सरकार भी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर कारीगरों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और नए डिजाइन के माध्यम से एरी सिल्क को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है। एरी सिल्क काफी उपयोगी और टिकाऊ है। इसे घर पर ही हल्के ठंडे पानी और माइल्ड डिटर्जेंट से आसानी से धोया जा सकता है। समय के साथ इसकी बनावट और अधिक मुलायम होती जाती है, जिससे इसकी उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहती है। यह गुड़ इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए भी एक बेहतर विकल्प बनाता है। पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक प्रयासों के मेल से यह उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिला रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं करिश्मा राय।

तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए, और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।

अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर डायरी, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशा जारी है। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में चंद वो नगमे हम आपकी नजर करना चाहेंगे जिनकी मौसीकी तरतीब दी इकबाल कुरैशी ने। आज उनका यौम पैदाइश है। इकबाल कुरैशी की मौसीकी अगर बात की जाए तो उसमें क्लासिकी टच था और चाचा चा बनारसी ठग, बिंदिया, लव इन शिमला जैसी फिल्मों की मौसीकी उन्होंने तरतीब दी। आज के प्रोग्राम में उन्हीं की मौसीकी में तरतीब दिए नगमे हम आपको सुनवाना चाहते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं फिल्म बनारसी ठग के नगमे से, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की और यकीनन मौसीकी इकबाल कुरैशी साहब की।

और आपकी नजर करते हैं लव इन शिमला फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ और मौसीकी इकबाल कुरैशी की।

रोमांस से भरपूर ये नगमा आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म थी लव इन शिमला। और अब आपकी नजर करते हैं उम्र कैद फिल्म का नगमा आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया हुआ, मौसीकी इकबाल कुरैशी की।

हमने बस यही जाना है, दिल तुम्हारा दीवाना है। हमने बस यही जाना है, दिल तुम्हारा दीवाना है।

प्यार बना अफसाना फिल्म का ये दुकान आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। अगली पेशकश मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में। फिल्म है पंचायत, मौसीकी इकबाल कुरैशी की।

इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशा जारी है। रिश्तों का जुगनू, जनाब हृदय कौल भारती का तहरीर करदा ये ड्रामा सुनिए।

एक छोटे से कस्बे की ये कहानी किसी हकीकी वाकये पर मबनी तो नहीं, लेकिन इसकी फजा और दौर, एक हकीकत और उस दौर की कोख में जो कुछ पनपता रहा, उनकी परछाइयां आप इस कहानी में महसूस करेंगे। ये कहानी है उन सच्चाइयों की, परछाइयां परछाइयां परछाइयां।

0: अभी माँ जाग रही है ना? ताज माँ,
1: उफ़ो, दादी की पोती जाग रहे हूँ, आगे बोलो।
0: मुझे मालूम था आप जाग रही होंगी। मैं तो बस
1: दादी को तंग करने के लिए चिल्ला रही थी।
0: हाँ, कुछ ऐसा ही। नाश्ता लाऊं आपके लिए?
1: शाइस्ता बेटी, बाकी सभी कर चुके?
0: सभी कौन, एक भाईजान ही तो है, वो कब के तैयार होके जा भी चुके। बस दादी और मैं, अब एक आप है और एक ये आपकी इकलौती पोती।
1: इकलौती क्यों पगली? ऐसा नहीं कहते। अरे बच्ची, कोई इकलौता नहीं होता, अल्लाह ताला की जात उसके साथ रहती है।
0: ओ दादी, आप भी बात को कहां से कहां खींच लाई। मैं तो सिर्फ अपनी और आपकी हालत बयान कर रही थी।
1: जानती हूँ तू क्या कह रही थी, खूब जानती हूँ। अरे बच्ची, मैं भी तो कभी तेरी उम्र की ही थी।
0: अच्छा,
1: मैं भी कुछ ऐसी ऐसी थी।
0: ऐसी कैसी ही दादी, बताओ ना कैसी थी आप, क्या था आपका जमाना?
1: आई कुछ खास नहीं था, अब कोई इतराने वाली बात नहीं थी उसमें। तावीज बनाकर गले से लगाए रखने वाला कोई वाकया नहीं था उसमें। उस
0: दादी माँ, ठीक तो है ना? मैं तो बस वैसे ही कह रही थी, आप कुछ कहना नहीं।

0: कहना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक कप गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। मैं अब भी आई।
1: सुन तो,
0: मैं बस ये गई और वो आई।
1: अल्लाह, तू बड़ा करीम है। इस दिन माँ की बच्ची पर हमेशा करम की निगाह रखना मेरे मौला।
0: देखा दादी, मैं ये गई और वो आई, मैंने कहा था ना, और ये रही गर्मा गर्म चाय।
1: जीती है बच्चे। अरे पागली, इस बुढ़िया से इतना लगाव अच्छा नहीं। हाँ, पका हुआ फल हो कभी भी।
0: बस बस दादी, आगे नहीं। अब बात चाय की चुस्कियाँ लीजिए, ताकि ऐसी बात के लिए मुंह खाली न रहे।
1: अरे बहुत बोलने लगी है बच्ची।
0: कहाँ बोलती हूँ मैं दादी, मैं तो बस इतना भर बोल लेती हूँ कि किसी को गूंगी ना लगूं।
1: अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था।
0: हाँ, आप ही तो कहती है ना, लड़कियों को कम बोलना चाहिए, इसीलिए।
1: अच्छा अच्छा, तो मेरी बच्ची मेरे कहे पर अमल कर रही है। और जो तुम बोलती तो कितना बोलती तुम?
0: बहुत सारा मेरी अच्छी दादी। अब चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है।
1: हाँ बेटी।
0: एक बात पूछूं दादी माँ?
1: अच्छा, गर्मा गर्म चाय पिला दी है तो कीमत तो वसूल करेगी। हाँ, पूछ।
0: आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना?
1: लड़की अब पूछना, फजूल में थका ना दे मुझे।
0: वो अभी हमने मकान बदल दिया, ऐसे अब अपने मकान में आ गए हैं। ये ना
1: यही पूछना था।
0: कुछ और भी।
1: अरे तो कहना।
0: वो आपने अपने जेवरों का डिब्बा, लकड़ी का बड़ा संदूक, सभी कुछ नौकरों पे ऐसे छोड़ा जैसे सब्जी तरकारी का टुकड़ा हो?
1: आए तो क्या अपने कंधे पर उठा कर ले आती। और फिर मुझे मालूम था ना,
0: क्या
1: मेरी सयानी होशियार समझदार बच्ची एक दिन का इधर से उधर नहीं होने देगी।
0: दादी माँ, आप ही तो कहती हैं कि झूठ का बोझ इंसान को चैन की नींद नहीं सोने देता। रोजे कयामत अल्लाह ताला के सामने।
1: आए तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ?
0: मैंने ऐसा तो नहीं कहा दादी, लेकिन।
1: हाँ हाँ बोल, लेकिन क्या?
0: लेकिन वो दादी माँ, ये कि वो डिब्बा आपने मुझे उठाने नहीं दिया जो एक सद पे आपके सराहने पड़ा है।
1: ओहो लड़की, तुम इस बक्से के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? इसमें मेरी जान है, इसीलिए किसी को हाथ नहीं लगाने देती हूँ बस।
0: और दादी माँ, आप मेरी जान भी हैं, जिगर भी हैं, जाने जिगर हैं, इसीलिए तो मैं बक्से को देखना चाहती हूँ, बल्कि देखने का हक रखती हूँ।
1: ये हक की बात तुमने काफी वजनदार कही।
0: हाँ
1: वाकई, हक तो रखती हो तुम। अच्छा उठा लाओ बक्सा, दिखाती हूँ। चाबी ये तकिए के नीचे है।
0: आप नाराज तो नहीं हुई ना?
1: अरे अब लाओ भी, नहीं तो मेरा इरादा बदल जाएगा।
0: अभी नहीं। ये रहा आपका डिब्बा और ये चाबी।
1: ये ले, अब खोल।
0: मैं खोलूं?
1: क्यों, तुझे ताला खोलना नहीं आता?
0: नहीं, आता तो है लेकिन।
1: खोल। हाँ खोल।
0: ये खुल गया ताला, ये उठा ढक्कन और ये, अरे दादी माँ, इसमें तो
1: क्यों कुछ नहीं है?
0: नहीं है दादी माँ, लेकिन
1: है तो निकाल देख। अरे बुत सी बनी क्या देख रही है?
0: किताब है वो सीधा से तीसरी जमात की तारीख की किताब, किस जमाने की है?

0: मुझे किसी जमाने की नहीं बल्कि तेरी दादी के जमाने की।
1: इस बक्से में तो और कुछ भी नहीं।
0: ये क्या कम है, तेरी दादी के सभी ख्वाब, तमाम जिंदगी इसी में दफन है।
1: दादी माँ, ये क्या कह रही हैं आप?
0: ठीक कह रही हूँ शाइस्ता बेटी, ये किताब मेरे लिए बहुत कुछ है,
1: सब कुछ। दादी,
0: मेरी यादों का खजाना।
1: दादी माँ, आप रो रही हैं?
0: नहीं रे, ये तो बस ऐसी ही यादों की धूल आंखों में आ गई। मेरा घर, मेरा गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां भी इंसान ही आबाद थे। छोटी छोटी खुशियों गमों के दरमियान आधे अधूरे ख्वाबों के जजीरों के सहारे ढूंढती मिटती थी, और उसी के बीच में थी मेरी सहेली अश्मी। अश्मी मेरी जान, मुझे अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह याद है उस आया का नाम, संगरमाल। संगरमाल नाम था उसका, एक हरे बदन के एकदम कोरी, बुढ़ापे ने आवाज में कमाल की नरमी दी थी। इबादत समझकर अपना काम करती थी वो, लड़कियों को घरों से लाकर स्कूल ले जाना। बेचारी, माँ बाप कभी कभी ऐसे छिड़कते थे जैसे उनकी बेटियां पढ़कर संगरमाल पर एहसान कर रही थी। मेरी माँ तो रोज ही ऐसा करती थी। हाँ, उस दिन भी जब वो अश्मी को लेकर।
2: अश्मी बेटे, ऐसे चलेगी तो आज भी कल की तरह देर हो जाएगी। देखो ना, कल किस बुरी तरह से तुम्हें डांटा और मुझे भी।
1: किसने संगरी मासी? किसने डांटा?
2: तेरी मास्टर ने और किसने?
1: लेकिन संगरी मासी, मैं तो चल ही रही हूँ ना, और कितना तेज चलूँ?
2: जितना मैं चलती हूँ।
1: तब तो मासी मुझे दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा।
2: क्यों? मैं क्या दौड़ रही हूँ?
1: नहीं दौड़ती तो नहीं, लेकिन अगर मेरी टांगे भी आपकी जितनी लंबी होती तो
2: बस, मैं बस, भी बस मेरी अम्मा बस कर, चल जैसा तेरा जी में आए वैसा कर। तौबा मेरी, इस चटाकी से तो बात करना।
3: अश्मी, अरे स्कूल जा रही है क्या?
1: ओ सहला,
3: आना,
2: अरे सुन तो अश्मी, कहाँ जा रही है?
3: स्कूल जा रही है।
1: चल तू भी, बहुत मजा आएगा।
3: नहीं, अब्बू मना करते हैं।
1: क्यों क्यों मना करते हैं? पढ़ाई करना कोई बुरी बात थोड़ी है।
3: पर अम्मा भी तो नहीं मानती।
1: तुमने कहा नहीं, वहाँ पढ़ाई होती है। ये देख, देख ना मेरी तख्ती।
3: तुमने लिखा है?
1: और नहीं तो क्या, मैं इससे भी साफ लिख सकती हूँ। पता है, कल मुझे 5 में से पूरे 5 नंबर मिले लिखाई पर।
3: वो क्या होता है
1: वो?

0: वो होता है होता है ना, वो होता है बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा सारा, मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ सच्ची।
1: लड़की चल, काफी हो गया, अब ऐसे ही चलती रहेगी तो स्कूल पहुँचते पहुँचते फाटक बंद हुआ होगा। हाँ
2: ए ए आर यू संगरी है? स्कूल में नौकरानी है तो नौकरानी की तरह ही रहे हैं। कितनी बार कहा है तुमसे कि सारा स्कूल नहीं जाएगी नहीं जाएगी, फिर क्यों आती है यहाँ? हमारे खानदान की लड़कियाँ ऐसे बाहर नहीं घूमती। चल चल चल सारा अंदर चल चल चल चल।
0: अरे पता है नाक वाली है तू, खानदानी है, मगर ये अश्मी भी कोई घूमने नहीं आती, पढ़ने आती है, इल्म सीखने।
2: हाँ ए लो, कुछ भी हो बाहर तो जाती है ना लड़की की जात।
0: ये तो अपनी अपनी समझ है, वैसे मैं भी तुम्हारी लाडली को स्कूल ले जाने नहीं आई थी, ये तो इस अश्मी ने उसे देख लिया तो रुक गई। स्कूल में तहजीब भी सिखाते हैं।
2: लो अब ये हमें सिखाएगी तहजीब, और बात तो देखो ऐसे कर रही है जैसे यही अश्मी की माँ है।
0: माँ होना मेरे नसीब में कहा, चपरासन हूँ स्कूल की, जो कहते हैं वही करती हूँ।
2: ठीक है जाओ जाओ बजा लाओ तुम अपनी नौकरी, लेकिन हमारी बेटी को स्कूल विस्कूल के बखेड़े में मत घसीटो, मैं कह देती हूँ सौ बात की एक बात।
0: तो मैं भी इस गली में से नहीं गुजरती, पर क्या करूँ मजबूरी है, रास्ता भी यहीं से जाता है। चल अश्मी काफी वक्त बर्बाद हो गया यहाँ।
2: हाँ फिर आती क्यों है, जाओ।
3: देखो भाई तुम पे ये चुप्पी फंपती नहीं,
4: अब क्या कहूँ, तुम तो जानो मैं कभी किसी मामले में पड़ती नहीं, पर कोई घर आकर तुमसे उलझे तो चुप भी तो नहीं रहा जा सकता।
0: क्यों ऐसा क्या हुआ, कोई झगड़ने आया था क्या?
4: बराबर बराबर समझी तू, झगड़ने ही तो आई थी, वो संगरी है ना संगरी जो स्कूल की नौकरानी।
0: संगर माल
4: काहे की माल, और संगरी कहो संगरी, जब से लड़कियों के स्कूल में नौकरानी बनी है किसी को खातिर में ही नहीं लाती।
3: अरे भाई नौकरी पर लग गई है ना, इसीलिए अपने आप को मर्द समझने लगी है।
4: अरे वो तो मर्दों के भी कान कुतरने लगी है, जहाँ भी कोई लड़की नजर आई बस उसे स्कूल जाने के लिए उकसाती रहती है उकसाती रहती है। अरे आज तो सारा के पीछे पड़ गई।
3: अच्छा अच्छा फिर क्या हुआ?
4: फिर क्या, भगा दिया मैंने उसे दरवाजे से ही। वो कादर है ना कादरदार, उसकी लड़की साथ थी।
3: कादर कादर कौन? अच्छा अच्छा अच्छा वो जो डाकखाने में हरकारा है
4: वही। एरिया घिसती है गांव गांव चिट्ठियां बांटते, वही अपनी लड़की को स्कूल भेज रहा है।
3: तो क्या कादर हरकारे की लड़की अश्मी स्कूल जाती है?
0: लो तुम्हें नहीं मालूम, उसे तो बाप ने स्कूल खुलते ही दाखिल करवाया था।
4: वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, पूछने वाला कौन है, न जोरू न जाता अल्लाह मियां से नाता। हम तो ऐसा नहीं ना कर सकते। तुम जानो हमारे खानदान की लड़कियां घर की दहलीज सिर्फ एक बार पार करती हैं, जब उनकी शादी हो जाती है।
3: हाँ। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, ये खानदानी चोचले भी सिर्फ औरत जात को ही भुगतने पड़ते हैं, शादी से पहले क्या और शादी के बाद क्या।
0: बराबर बिल्कुल सही कहा, होश संभाला नहीं कि सभी की नजर हम पर रहती है, ये मत करो वो मत करो, वहाँ मत देखो यहाँ मत जाओ, और शादी के बाद वो तो पता ही है सबको, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, चूल्हा चक्की बर्तन मांजना लीपा पोती कपड़े धोना गाय का चारा गोबर पापना बच्चे पालना, अरे सारी जिंदगी चाकरी में ही निकल जाती है।
3: और नहीं तो क्या, आज मरे तो कल मियाँ दूसरी की तलाश करता है
0: और क्या।
3: हाँ सच कहती हूँ, मेरे बस की होती तो मैं भी स्कूल पढ़ने जाती हूँ।

0: करें? लो इसकी सुनो, सींग ना फूटे सो बचिया ही रही।
1: दो सिलेबस, दो यहाँ, तीन हासिल। नहीं नहीं, हाँ दो और ये तीन।
2: ये हो गई मेरे बेटे के लिए चाय तैयार। अब मैं अपनी अश्मी बेटी को एक प्याला गरम गरम चाय पिलाता हूँ, फिर देखना स्कूल का काम चटोपट हो जाएगा।
1: ओह अबू, आपने क्यों बनाई? मैं खुद ही बनाती ना।
2: बनाएगी बिटिया, तू भी बनाएगी, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। अभी तो मेरी अश्मी बिटिया सिर्फ पढ़ाई करेगी, सिर्फ पढ़ाई।
1: उफ अब्बू, ये क्या फिर कहवा? मुझे तो सिर्फ नमक वाली चाय चाहिए।
2: जानता हूँ मेरी बच्ची, तुमको सिर्फ नमक वाली चाय पसंद है, समावार से निकली बिल्कुल गर्मा गर्म चाय। लेकिन क्या है बेटी, कहवे से दिमाग तेज रहता है, देख लेना चाय पीते ही दिमाग हवाई जहाज की तरह उड़ने लगेगा। सभी पढ़े लिखे यही चाय तो पीते हैं। चल मेरे बच्चे, पीले बेटा पीले, चले उठा के ले ले। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। अरे सारा बेटी, आओ आओ, बहुत अच्छे मौके पे आई हो। मैं तो सोच ही रहा था कि कोई अच्छी सी बेटी हमारे साथ आकर चाय पिए। ये देख, मैंने एक प्याली पहले ही ज्यादा रख रखी है ना। चाय अच्छी बनी है ना सारा बेटी
1: जी।
2: अच्छा बेटी, ये बताओ तुम्हें नमकीन चाय अच्छी लगती है या कहवा?
1: जी दोनों।
2: देखा अश्मी बेटा, ऐसी होती हैं अच्छी लड़कियाँ, जो मिले उसी में खुश।
1: मैं भी इनके घर में ऐसे ही कहती हूँ अब्बू।
2: तो बिटिया हमें बनाती है क्यों? अच्छा अब तुम दोनों बातें करो, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ, ठीक है?
1: क्या अब्बू, कुछ लाना है? मैं ले आऊंगी।
2: नहीं नहीं बेटा, तुमसे नहीं होगा, तू अपना काम कर।
1: अश्मी, मैं ना तुम्हारी किताबें देखने आई हूँ।
0: ओह कौन सी वाली?
1: सबे।
0: ओह तू भी स्कूल आएगी क्या?
1: ना, अम्मा मना करती हैं। कहती है अच्छे घर की लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती। तू अपनी किताब दिखाना, वो तस्वीरों वाली दिखाना पहले। अश्मी, इसमें महाराजा बहादुर की तस्वीर भी है।
0: है ना,
1: दिखा तो जरा।
0: ये है महाराजा की तस्वीर।
1: जरा जरा ठीक से दिखा तो, ये महाराजा बहादुर है, मोटा है ना। ये इसके सर पे क्या है?
0: क्या ये तो पगड़ी है, साफ तो दिखता है।
1: ये नहीं, ये जो पगड़ी के ऊपर है वो चील के पर जैसा।
0: ये अरे पागल, ये तो चील का पर नहीं, ताज है, ताज।
1: ताज ऐसा होता है?
0: और नहीं तो क्या।
1: ये कौन है?
0: ये है अकबर।
1: अकबर कौन?
0: अरे बड़ा साला अकबर नहीं, अकबर आजम बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह था ये।
1: अच्छा, उसकी भी कहानी है इसमें?
0: अरे पागल है तू बुद्धू कहीं की, कहानी है तभी तो तस्वीर है।
1: अश्मी ये किताब मुझे दे देगी?
0: अरे तुझे दो, मैं कैसे पढ़ूंगी फिर?
1: देना, बहन नहीं है मेरी।
0: पागल हो गई है तू, क्या करेगी इसका?
1: तू देना।
0: कैसे दो, मारेगी नहीं मास्टर ने स्कूल में मुझे, पता है कितना पीटती है वो, किताब नहीं साथ होने पर। हाँ ना बाबा ना, नहीं दो।
1: अश्मी देख देख, तू मुझे किताब देगी ना तो मैं तुम्हें ये कान का झुमका दूंगी, चांदी का है, बिल्कुल नया।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सारा, मैं ये किताब तुझे नहीं दूंगी, नहीं दे सकती।
1: रोन दे, अब मैं कभी तुमसे मिलने यहाँ नहीं आऊंगी, तू मेरी सहेली नहीं है।
0: जा रही सारा। अरे सुन तो सारा।

0: अरे कादर भाई।
1: जी बड़े बाबू।
0: अरे भाई वो कल टेलीग्राम उसी वक्त पहुंचा दिया था ना।
1: जी बड़े बाबू, वो कुरैशी बाबू की साइकिल ले गया था ना।
0: हाँ हाँ।
1: इसलिए काम जल्दी हो गया।
0: अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यार तू ये मुझे बड़े बाबू मत कहा कर।
1: क्यों?
0: मैं कितनी बार कहा तुमसे कि ये सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंग्रेज हूँ जिन्हें हम बहुत पहले भगा चुके हैं यहाँ से।
1: वो बड़े बाबू।
0: हाँ।
1: मेरी अर्जी का क्या हुआ बड़े बाबू?
0: ओहो फिर वही राग। अरे मेरे भाई, मेरे यार, मेरे जिगर,
1: मेरी बात समझने की कोशिश तो कर।
0: श्रीनगर में किसी भी पोस्ट ऑफिस में हर कार्य की पोस्ट है ही नहीं।
1: वो
0: अब ऐसे में मैं कैसे ट्रांसफर करा दूं तुम्हारा, बताओ?
1: आप मुझे वहाँ चपरासी की जगह रखवा दीजिए, पानी पिलाने वाले की जगह दिलवा दीजिए। मैं बाबू लोगों की चिलम भरा करूँगा, कुछ भी करूँगा बड़े बाबू, लेकिन मेरी बदली जरूर करवा दीजिए।
2: इतनी भी क्या मजबूरी है शहर जाने की? कोई जायदाद हाथ लगने वाली है क्या?
1: मजबूरी है बाबू, तभी तो कहता हूँ।
0: अरे मैं अच्छी तरह समझता हूँ, यकीन करो मैं तुम्हारे ट्रांसफर के लिए कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन कादर भाई मैं कोशिश ही तो कर सकता हूँ, भाई बदली के ऑर्डर तो मैं नहीं निकाल सकता ना।
2: जी ऐसी भी क्या मजबूरी है बड़े बाबू कि आप छुट्टी लेकर इसकी सिफारिश करने शहर जाते हैं?
0: मजबूरी ही है, और मजबूरी ये है कि इसकी एक ही औलाद है, इसकी बच्ची, और ये उसे पढ़ाना चाहता है। हमारे कस्बे में एक ही प्राइमरी स्कूल है, पांचवी जमात तक। अब तुम इसकी मजबूरी समझ गए ना, आगे पढ़ाना चाहता है ये अपनी बच्ची को।
2: आप तो नाराज हो गए बड़े बाबू।
0: नहीं नहीं मैं नाराज बिल्कुल नहीं हुआ, मैं बस ये समझा रहा था कि इस मजबूरी की वजह क्या है।
1: जी
0: वो कादर भाई।
1: जी जी बड़े बाबू।
0: अब आप खड़े क्यों हैं? जाइए अपना काम कीजिए और देखते हैं ऊपर वाले को क्या मंजूर है।
1: ठीक कहते हैं आप, ऊपर वाला बड़ा रहीम है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अच्छा
0: अरे हाँ कादर भाई।
1: जी
0: अरे जरा सुनो तो।
1: जी हाँ।
0: अरे मान लो अगर तुम्हारी बदली हो भी गई वहाँ, तो वहाँ रहोगे कहाँ भाई? मेरा मतलब है इसका कुछ रहने का बंदोबस्त है वहाँ? नहीं
1: वो तो हो जाएगा, मेरी बहन है वहाँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: अकेली है, शोर फेरी का काम किया करता था, शाल साड़ियां जनाना सूट, एक सीजन गया फिर लौट कर नहीं आया।
0: ओहो लेकिन क्यों?
1: अब क्या बताऊं, जितने मुंह उतनी बातें, पर उसके साथ ही फेरी वाले कहते हैं कि किसी दूसरी औरत के साथ निकाह पढ़वाया। वही दुकान दिलाने का लालच दिया उन्होंने, अल्लाह बेहतर जाने क्या हुआ।
0: ओह भाई बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा खादा भाई कोई बच्चा बच्चा?
1: हाँ हाँ बड़े बाबू एक बेटा है, मिस्त्री का काम करता है किसी वर्कशॉप में।
0: चलो तुम्हारे जाने से उसे भी कुछ सहारा मिल जाएगा। ठीक है तुम जाओ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा भगवान ने चाहा तो।
3: अबू।
0: हाँ?
3: हम शहर से वापस कब आएंगे?
4: ओफो अपने कपड़े ठीक से ट्रंक में रख ले, अभी हम यहीं हैं और तुम्हें वापस आने की फिक्र होने लगी।
3: अगले साल
4: जब तेरी पढ़ाई पूरी होगी तब। चल अब बातों में वक्त जाया मत कर, सवेरे ही यहाँ से निकलना है।
3: लेकिन अबू हम क्यों नहीं?
4: कहा ना वक्त जाया मत कर, इतनी मुश्किल से तो बदली करवाई है, बड़े बाबू का अगर मन बदल गया फिर कुछ नहीं कर सकेंगे हम।
3: अच्छा
4: चलो कर ले।
3: अबू मैं थोड़ी देर के लिए खेलने जाऊँ?
4: खेलने जाएगी? ये जो इतना काम पड़ा है।
3: अबू जाने दो ना, एक आज ही तो खेलना है।
4: अच्छा बेटा पर जल्दी आना।
3: हाँ, जल्दी आऊंगी। अच्छा अबू अच्छा। अभी अब क्यों आई हूँ यहाँ?
5: सारा सारा हम जा रहे हैं गांव छोड़कर।
3: तो मैं क्या करूँ?

0: अकेले जा रहे हैं।
1: कहाँ?
0: शहर।
1: क्यों?
0: अब्बू की बदली हो गई है। सुन, तू मुझसे नाराज है ना? देख देख, तेरे लिए एक चीज लाई हूँ।
1: किताब?
0: हाँ किताब, मैं वापस नहीं मांगूंगी। ले लेना इसे। अब मैं जाती हूँ सारा, अब्बू ने जल्दी आने को कहा है।
1: अच्छा
0: अच्छा, कितनी अच्छी किताब है।
2: अश्मी अश्मी अश्मी, अरे सुनो।
1: अश्मी, क्या ये रख ली?
0: क्या
1: अपने मुट्ठी बंद कर?
0: नहीं नहीं,
1: देख ना, नहीं मेरी कसम है, घर जाके खोलना, ठीक है ना?
0: अच्छा,
1: घर जाके।
0: अच्छा, घर जाना चाहती हूँ।
1: आइया, ये डॉक्टर साहब, हम आप ही राह देख रहे थे।
3: मुझे आने में जरा देर हो गई।
1: नहीं नहीं, आप तो वक्त पे आई। ये दादी माँ की तबीयत अचानक कुछ बिगड़ गई, पुराने वक्तों को याद कर रही थी।
3: एक्साइटमेंट में अक्सर ऐसा हो जाता है।
1: आइए आइए।
3: हाँ,
1: यहाँ
3: जी,
1: इस तरफ से
3: जी।
1: ये है हमारी दादी माँ।
3: अच्छा अच्छा। अरे सारा, सारा तुम ही हो? तेरे ख्वाब तो नहीं दिख रही सारा? सरब
1: में डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। दादी माँ, दादी
3: घबराओ नहीं, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तुम्हारी दादी। मैं इंजेक्शन देती हूँ, फिलहाल ये बाजू तो ऐसे पकड़ो अपनी दादी का।
1: जल्दी
3: अच्छी तरह पकड़ो, इसे बचपन से उछल कूद करने की आदत। बस बस, अब थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। बस सारा, बस सारा।
1: इसे आप पहचानती हैं डॉक्टर साहब?
3: हाँ, ये तो मेरी तीसरी जमात की किताब है।
1: हाँ,
3: तुम्हें?
1: आपकी तीसरी जमात की किताब? दादी ने इसे ऐसे बक्से में रखी थी जैसे अनमोल खजाना हो।
3: सारा सारा, तुम भी किताब इतने बरस से।
4: हाँ अश्मी, एक यही तो थी बचपन की याद।
5: रिश्तों का जुगनू, अभी आप सुन रहे थे जनाब हृदय कौल भारती का तहरीर करता ये ड्रामा, तरतीबो पेशकश मोतीलाल काचरू की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 12 बजे हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र आवाम से गैर मुल्की ज़र मुबादले की बचत की खातिर ईंधन और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमा के रोज से मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से इर्तका पजीर गहरे तहजीबी, सकाफती और रूहानी ताल्लुकात से जुड़े हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग बंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बमुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनाकिद मर्दों के ICC T20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहत जानने के लिए कमेटी तश्कील दी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के दौरान गैर मुल्की ज़र मुबादला बचाने के लिए

और आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि इस बहरान के असरात मुल्क के शहरियों पर कम से कम पड़े। उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते, मुल्क के मफाद में हर छोटा और बामानी कदम जरूरी है। वजीर आजम ने सरकारी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसों और कार पुलिंग को अपनाने के जरिए पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील का इरादा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालात के मामूल पर आने तक सोना खरीदने से गुरेज करने की भी अपील की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे के रोज से मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रहेंगे। ये दौरा हाल ही में तय पाने वाले भारत यूरोपीय यूनियन आजादाना तिजारती माहिदे FTA के तनाजुर में यूरोप के साथ खासतौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में भारत की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में नरेंद्र मोदी जुमे के रोज मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे, जहां वो सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा उमूर, खासतौर पर तवानाई के शोबे में तावुन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादले ख्याल करेंगे। इसके बाद वजीर आजम जुमे को ही नेदरलैंड्स पहुंचेंगे, जहां वो शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलिका मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी नेदरलैंड्स के वजीर आजम जॉब रॉब जेटन के साथ भी बातचीत करेंगे। यह दौरा दिफा, सलामती, इख्तराआत, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स और आबी शराकतदारी समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन को मजीद फरोग देगा। दौरे के तीसरे मरहले में नरेंद्र मोदी इतवार को स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे और स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेंगे और बाहमी ताउन के नए इम्कान पर गौर खौज करेंगे। दोनों वज़रा आज़म यूरोपीय कमीशन के सदर उरुसा वॉन डेर लियन के हमरा सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, जो यूरोपीय कारोबारी रहनुमाओं का अहम फोरम है। अपने दौरे के चौथे मरहले में वजीर आजम पीर के रोज नॉर्वे पहुंचेंगे, जहां वो तीसरे भारत नॉर्डिक समिट और दो तरफा मीटिंगों में शिरकत करेंगे। अपने दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम मंगल के रोज इटली का सरकारी दौरा करेंगे। उन्होंने आखिरी बार जून 2024 में G7 सरबरा इजलास के दौरान इटली का दौरा किया था। वजीर आजम इटली की सदर सर्गियो मट्टेरला से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत होते दो तरफा ताल्लुकात के पस मंजर में हो रहा है, जहां दोनों फरीक मुश्तरका स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 पर सरगर्म तौर पर अमल दरामद कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से इर्तका पजीर गहरे तहजीबी, सकाफती और रूहानी ताल्लुकात से जुड़े हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका बुद्धिस्ट विरासत का हवाला देते हुए जनाब बिरला ने कहा कि ये देरीना रवाबित दोनों मुल्कों के दरमियान पुरजोश और दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद बने हुए हैं। लोकसभा स्पीकर ने कल पार्लियामेंट हाउस में श्रीलंका के ख्वातीन अराकीन ने पार्लियामेंट के साथ बातचीत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। श्रीलंका के अराकीन ने पार्लियामेंट के वफ की क्यादत श्रीलंका के ख्वातीन और बच्चों के उमूर की वजीर सरोजा सावित्री पॉल राज ने की। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम है। जनाब ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे की ईरान की तजवीज को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज को मुस्तरद किए जाने के जिमन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरत हाल का शिकार है। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई तजवीज को रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल करार दिया। सदर ट्रंप को इतवार के रोज ईरानी तजवीज मौसूल हुई, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुई जंग के खात्मे का कोई रास्ता निकल आएगा। इस जंग से तेल की आलमी सप्लाई के अहम समंदरी रास्ते मसदूद हो गए हैं, जिसके नतीजे में कई मुल्कों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की जानिब से मौसूल जवाब पढ़ा है, जो उन्हें पसंद नहीं आया। ट्रंप ने इसे पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार दिया। तेहरान के साथ जंग बंदी को जनाब ट्रंप ने नाकाबिले यकीन हद तक कमजोर करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी को इंतहाई नाजुक करार देने के बाद तेल के बाजार लड़खड़ा गए हैं और सिफारती कशीदगी में इजाफा हो गया है। जनाब ट्रंप की जानिब से इस तबसरे के बाद जंगबंदी के बरकरार रहने से मुतालिक ताजा खदशात में इजाफा हो गया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी अमन तजावीज पर अपना

0: के।
1: बैजुबावरा फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से।

0: हरियाली और रास्ता फिल्म का नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, मौसीकी थी शंकर जयकिशन की। सावन मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। ये प्रोग्राम अभी जारी है। आइए पहले सुनते हैं तारीख साज प्रोग्राम। आज का मौजू है बोध गया, तहरीर जनाब आदिल हसन की।
1: बोध गया ये शहर बिहार के शिमाल मशरक में वाक़ जिला गया में है, जो राजधानी पटना से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए यूं तो बेशुमार चीजें मौजूद हैं, लेकिन जो इस शहर को सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है महाबोधि टेम्पल, जो बुद्ध धर्म के मानने वालों के लिए एक अहम मजहबी मकाम है, जिसका शुमार दुनिया भर में मौजूद बुद्ध मजहब के अहम मंदिरों में किया जाता है। बल्कि ये कहना बेजा ना होगा कि बुद्ध मजहब की इब्तिदा यहीं से हुई। ये शहर गौतम बुद्ध की वजह से काफी मारूफ मशहूर है, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की पैदाइश 563 या 480 कबले मसीह नेपाल के शहर लुम्बिनी में हुई। आपके वालिद रियासत के राजा थे, जिसकी वजह से आपका बचपन नाजो न्याम में गुजरा, लेकिन जल्द ही उनका दिल बचपन के खेल खिलौनों से बेजार हो गया। जब आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो वालिद ने बहुत कोशिश की कि आपको फन सिपा सालारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी में माहिर फन बनाया जाए, लेकिन कामयाबी न मिली। इसके बजाय वो दुनिया के असरार और रुमूज में डूबे रहते थे। तजस्सुस इस कदर बढ़ा कि कभी कभी घर से निकलकर जंगल का रुख कर लेते और कई कई दिनों तक गौर व फिक्र में डूबे होने की वजह से घर वापस न आते। कभी किसी का दिल न दुखाते, अगर किसी की तकलीफ देखते तो उसकी तकलीफ दूर करने में लग जाते। जब कभी शिकार करने जाते तो खाली हाथ ही ये सोच कर वापस आ जाते कि उस जानवर ने उनका क्या बिगाड़ा है। जबान के सच्चे और दिल के बहुत नरम थे। वालिद ने ये सोचकर शादी कर दी कि शादी के बाद आपका दिल दुनियादारी में लग जाएगा, लेकिन ऐसा न हुआ, बल्कि शिद्दत तलाश हक और बढ़ने लगी, यहाँ तक कि घर बार छोड़कर राह हक की बाजियाफ्त में निकल पड़े। शाहाना जिंदगी छोड़कर फकीराना रविश इख्तियार कर ली। दर दर फिर कर दर्द दिल का मुदावा करने लगे, लेकिन कहीं भी कल्बी सुकून हासिल न हुआ। जिस रूहानी सुकून की तलाश में घर बार त्याग दिया था वो अभी कोसों दूर था। बिलाखिर ये करार बोध गया के जंगलों में हासिल हुआ। मुसलसल 6 बरस की रियासत व मुजाहदा के बाद एक दिन ऐसा आया जब वो एक घने पीपल के साये में बैठे असरारे खुदी में डूबे हुए थे। तभी अपने दिल पर इल्म व मारिफत का नुजूल महसूस किया। फिर क्या था, अपनी पूरी जिंदगी उसी मारिफत को फैलाने में बसर कर दी। आखिरी उम्र में उन्होंने अपने शागिर्दों को पूरी दुनिया में बुद्ध मत को फैलाने का पाबंद अहद किया और दुनिया से कूच कर गए। आज एशिया के कई मुल्क, बर्मा, नेपाल, चीन, जापान, थाईलैंड और हिंदुस्तान में बुद्ध धर्म के मानने वालों की काफी तादाद पाई जाती है। बोध गया गौतम बुद्ध के ही नाम पर बनी बोधि टेम्पल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। बोधि टेम्पल हिंदुस्तान की उन गिनी चुनी कदीम इमारतों में से एक है, जिसकी बुनियाद आज से हजारों साल पहले रखी गई। बौद्ध धर्म में ये टेम्पल उन मजहबी टेम्पल्स में से एक है, जिसकी जियारत करने के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं। कदीम जमाने के तर्ज तामीर से बनी हुई ये इमारत काबिले दीद है। जगह जगह पे खूबसूरत नक्शो निगार लोगों को अपनी तरफ मायल करने में कामयाब है। हरे भरे पौधों से घिरे होने की वजह से फितरी मंजर से लुत्फ अंदोज होने का खूब मौका मिलता है। ये बात भी काबिले जिक्र है कि जब पुरानी इमारतों का नक्शो निगार खत्म होने लगा तो मौर्या खानदान का मशहूर राजा अशोका ने उसी जमाने में बोधि टेम्पल की एक शानदार व दिलफरेब इमारत बनवाई थी, जिसके कुछ हिस्से आज भी जाजिबे नजर हैं, जिसकी ऊंचाई 55 मीटर है। अशोका की ही निशानी मजबूत व तवाना पिलर भी है, जिस पर उसने बौद्ध धर्म की हिदायतें कंदा करवाई थी। मंदिर के अंदर एक खास मकाम पर खूबसूरत कीमती पत्थरों से मुजैन गौतम बुद्ध की मूरत है, जिसको लोग अकीदत व मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। इस मंदिर में सदियों से उस दरख्त की भी हिफाजत की गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके साये में ही बैठकर गौतम बुद्ध को मारफत हासिल हुई। हर सुबह इस मंदिर में बुद्ध धर्म के कायदों के एतबार से कई रूहानी मजलिसें लगाई जाती हैं, जिसमें लोग कल्बी सुकून हासिल करने के लिए शौक से शरीक होते हैं। इस मंदिर का रकबा काफी वसी है, जिसमें कदीम और जदीद दोनों तरह की इमारतों का संगम देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के काबिज होने के बाद कुछ अंग्रेज माहिरीन तामीर ने जदीद तर्ज की खूबसूरत इमारतों का इजाफा किया है जो लोगों के लिए तवज्जो का मरकज है। इस मंदिर की अहमियत का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि सन 2002 में यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज यानी बैन अल-अक़वामी विरासत का हिस्सा करार दिया है।
0: अभी आप सुन रहे थे तारीख साज प्रोग्राम, मौजूद था बोध गया और तहरीर थी जनाब आदिल हसन की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशा जारी है और साथ ही साथ प्रोग्राम जारी है मिले सुर मेरा तुम्हारा।

0: भरत मिला फिल्म का ये दुगाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। और इस दुगाने के साथ ही मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम सोमनाथ, अमृत पर्व, भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव विषय पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश मोरी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
3: नमस्कार।
2: सतीश जी, जैसा कि हम जानते हैं आज सोमनाथ अमृत पर्व का अवसर था और प्रधानमंत्री ने इस पर्व में भाग लिया, जलाभिषेक किया और उन्होंने बहुत ही प्रेरणात्मक संबोधन भी दिया इस अवसर के महत्व को लेकर। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
4: 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
2: सो सतीश जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से इंगित किया कि ये प्राचीन मंदिर है और ये पहले भी बहुत चुनौतियों से गुजर चुका है, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में हमें इसके इतिहास के बारे में बताएं और ये बताएं कि इसका अभी तक इतने गौरवपूर्ण रूप में खड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है।
3: ये देखा जाए तो सोमनाथ पे बार बार हमला हुआ था पहले, ये 1000 साल पहले भी बार बार हमला हुआ और सोमनाथ टेम्पल को धराशे किया गया। बाद में ये भारत की आजादी के टाइम से ये सोमनाथ टेम्पल को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए

0: सरदार वल्लभ भाई ने एक स्वप्न देखा था, उसके हिसाब से हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी ने उसका शिलान्यास किया, और ये शिलान्यास करते करते मंदिर का बांधकाम आगे बढ़ा। 94-95 में हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने नृत्य मंडप का भी लोकार्पण किया, और उसके पे कलश लगाने की जो बात थी उसको कलश लगाया, और ऐसे पवित्र जो लोग थे उन्होंने उसमें साथ दे के ये सोमनाथ मंदिर का अभी तक में निर्माण पूरा कर दिया है। और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है, और इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को एक राष्ट्र लेवल पे सब एकजुट रहे लोग, उसके लिए का एक सेंटर बनाना चाहते हैं और एक प्रेरणा का स्रोत है ऐसा दिखाना चाहते हैं।
1: जी
0: सोमनाथ ट्रस्ट पे जब हमला होता था तब हमीर जी गोहिल की भी शहादत हुई थी, बाद में आजादी के बाद अहल्याबाई होलकर और गायकवाड़ जी सबने अपना योगदान देके मंदिर बनाने में सहयोग दिया। उसके बाद अभी जो जामनगर के राजवी है जाम साहब, उसके जो वंशज है वो भी उनके प्रमुख रहे हैं, और उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो हमारे कन्हैयालाल मुंशी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या जाम साहब हो, या गायकवाड़ हो, उन सब ने अपना योगदान देके ये मंदिर को अभी तक का जो स्वरूप बना है वो भव्य स्वरूप बनाने में अच्छी तरह से अपना योगदान दिया है। अभी तो ये अथॉरिटी भी एक बना दी है मंदिर के लिए कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है या तो जो लीगल है उसको भी सोमनाथ ट्रस्ट में लेके उसका डेवलपमेंट ऐसे किया जाए कि एक धार्मिक स्थान के साथ साथ प्रवास के लिए भी एक स्थान बने। उसके लिए भी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने कोशिश की है। 3 साल पहले भी सोमनाथ तमिल संगम करके तमिल से लोग आए थे, और 5,000 से ज्यादा लोग तमिल से आए थे, और सोमनाथ तमिल संगम करके एक उत्सव किया था।
1: जी
0: ऐसे हर साल में कोई ना कोई अलग अलग उत्सव होता रहता है, और लोग ज्यादा से ज्यादा सोमनाथ मंदिर के प्रति जुड़ते जा रहे हैं। और उसमें शाम के टाइम पे लाइट एंड साउंड शो हो रहा है, तो ये सब चीज प्रवासी लोग आके देखते हैं। अभी उसमें एक और जोड़ दिया है कि सोमनाथ मंदिर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी एक प्रेजेंटेशन होने वाला है, मीन्स ये शो भी होगा, तो
1: जी
0: लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए उसके लिए प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं।
1: सो आपको लगता है कि इस तरह के जो प्रेरणात्मक धर्म स्थल होते हैं, जैसे अभी स्वाभिमान पर्व भी हुआ था, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, क्योंकि 1,000 साल हुए थे जो पहला रिकॉर्डेड अटैक है महमूद गजनी का इस स्थल पर, उसको तो उसके बाद जैसे आपने बताया कि कई बार इसका विध्वंस हुआ, लेकिन सबने मिलकर, श्रद्धालुओं ने, राजाओं ने आगे आकर उसका पुनर्निर्माण किया, और ये साइकिल कई बार रिपीट हुई। सो आपको लगता है कि बार बार विध्वंस के बावजूद सोमनाथ का भारतीयों की सामूहिक चेतना से कभी भी लोप नहीं हुआ, ये जो एक कॉन्शियसनेस है ये हमेशा रही, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जो देश है उसकी एकता के लिए? और जैसा आप कह रहे हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और मिलकर यहाँ पर पूजा अर्चना होती है।
0: देश के कोने कोने से लोग आ पाए, अलग अलग वहीं पे जो फैसिलिटी उपलब्ध करवा जा रही है, और वहीं एक पूरा जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है इस टाइप का एक सीशोर पे भी एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मंदिर के डेवलपमेंट के साथ साथ वहीं नेचर के साथ भी डेवलपमेंट हो रहा है, और लोग जो सोमनाथ आते हैं नजदीक में जो लायन सेंचुरी है उसका भी विजिट करते हैं। कई लोग सोमनाथ के साथ द्वारका का भी दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि जितना सोमनाथ पुराना है ऐसे द्वारका नगरी भी पुरानी,
1: जी
0: मीन्स हमारी विरासत है भारतीयों की, तो उसके साथ जुड़ते हैं, और लोग धार्मिकता के साथ प्रवास का भी आनंद लेते हैं, और बहुत से लोग जुड़ते हैं इसमें। अभी जो ये लाइट साउंड शो हो रहा है या ये हिस्टोरिकल बता रहे हैं, इससे यूथ भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसमें अपने आप का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि सोमनाथ मंदिर की आरती उनकी वेबसाइट पे डेली लाइव होती है, कि वो भी नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से ये सोमनाथ मंदिर की आरती लाइव लोग घर पे देख पाए, इसलिए भी इंतजाम उन्होंने किया है, तो विदेश में बैठे लोग भी सोमनाथ का दर्शन कर पाए, इसलिए भी प्रधानमंत्री का विजन था तो ये भी किया हुआ है।
1: जी बिल्कुल, इनफैक्ट जो ये सांस्कृतिक विरासत और हमारी जो आध्यात्म

0: आत्मिक एकता है उसका कितना बड़ा प्रतीक है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि विनाश में सृजन कैसे होता है, असत्य में सत्य की जीत कैसे होती है, बहुत सारी प्रेरणात्मक यहाँ से हमें सीख मिलती है। आपको लगता है ऐसा पर्व जब होता है, स्वाभिमान पर्व या सोमनाथ अमृत पर्व, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, आपको लगता है कि देश के युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है, गौरव उत्पन्न होता है, एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें?
2: डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये लोग, कुछ लोग आध्यात्मिक हिसाब से वहीं विजिट करते हैं, कुछ लोग एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से विजिट करते हैं, कुछ लोग ये सी शोर है इसलिए भी आना चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग एंगल से लोग आते हैं और जुड़ते जा रहे हैं। अलग अलग पर्व हो रहा है, अलग अलग उत्सव हो रहा है। जब महाशिवरात्रि होती है तब भी सोमनाथ का बहुत महत्व है, और उसका जो शिवरात्रि की रात्रि के टाइम पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, वहीं लाखों की मेदनी इकट्ठी होती है और सोमनाथ में अपना पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ऐसा साल में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग उत्सव के टाइम पे भी ऐसे लोग जुड़ते हैं और आते रहते हैं।
0: तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति ही नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक प्रगति के भी स्रोत होते हैं जब ऐसे तीर्थ स्थलों को, धर्म स्थलों को डेवलप किया जाता है। और जो आप टूरिज्म की बात कर रहे थे, 97 लाख श्रद्धालुओं से अधिक हर वर्ष यहां आते हैं, और जिस तरह की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी डेवलप की गई है, जिसमें वंदे भारत और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल है, ये आपको लगता है ये पूरे आर्थिक विकास के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है?
2: वो सही बात है, क्योंकि ये जो टूरिस्ट आते हैं तो इसके हिसाब से जो आनुषंगिक जो व्यवसाय है सब टूरिस्ट के बेस पे, तो आनुषंगिक व्यवसाय भी बढ़ता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और वहीं की जो लोकल कम्युनिटी है उसका भी ग्रोथ होता है। तो ये सब हिसाब से टूरिस्ट प्लेस बहुत मायने रखता है। और पहले सोमनाथ आज से 10-15-20-25 साल पहले देखो तो सिर्फ दर्शन का स्टेशन था। पहले ऐसा ही मानते थे कि दर्शन के लिए जाना है, अभी वहीं अलग अलग एक्टिविटी इतनी शुरू हो गई है कि लोग दर्शन के अलावा भी अपना आनंद प्रमोद के लिए जा सकते हैं और वहीं रुकते हैं। पहले 2-4 होटल थी, अभी तो इतनी होटल भी हो गई है, इतनी धर्मशालाएं हो गई है, अलग अलग ट्रस्ट के भी बिल्डिंग बन गए है, तो लोग आके रहते हैं, अच्छी फैसिलिटी भी उपलब्ध करवा जा रही है। जैसे आपने बोला वंदे भारत, सोमनाथ में पहले मीटर गेज रेलवे लाइन थी, वो भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गई है, तो इसके हिसाब से ज्यादा ट्रेन की भी कनेक्टिविटी हो गई है, और पास में ही केशोद एयरपोर्ट है, दीव का एयरपोर्ट है, उसकी भी फैसिलिटी मिल रही है। तो इस हिसाब से लोग ज्यादा से ज्यादा इजिली वहीं अप्रोच करके जा सकते हैं
0: जी। और एक और चीज जो आज प्रधानमंत्री ने जिस पर ध्यान केंद्रित किया, वो उन्होंने कहा कि ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की जो परमाणु शक्ति है उसको दर्शाने के दृष्टिकोण से भी, आइए सुनते हैं। क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, जो शक्ति के प्रतीक है, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही, आइए उनके शब्दों में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात।

0: बात उन्होंने कही है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती, जिसका एक सिंबल सोमनाथ टेम्पल भी है और जो उनका एक हमेशा से वर्तमान सरकार का एक मूल मंत्र रहा है, विरासत भी विकास भी। आपको लगता है ये भी बहुत अच्छी तरह चरितार्थ होता है? एक तरफ हम विरासत को पूरा उसका संरक्षण पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं जैसा ये महोत्सव इंगित कर रहा है, दूसरी तरफ विकास वो चाहे एकदम एडवांस्ड फील्ड में हो, एटॉमिक पावर में हो, शक्ति हमारी जो है वो किसी भी और देश से कम नहीं होनी चाहिए, उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है, तो इस दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं?
1: देखो, सोमनाथ को शक्ति केंद्र भी बोला जाता है
0: जी।
1: वहीं लोग आते हैं, वो अपना मन की शांति लेते हैं, आध्यात्मिक विचारों की उन्नति होती है और लोग जहाँ शक्ति केंद्र में आते हैं वहीं से एक अलग चेतना लेके जाते हैं और अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं आगे जाके और तरक्की करूंगा, इधर मैंने सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया है तो एक अपने आस्था का भी केंद्र है। इस हिसाब से देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है और जितने भी धार्मिक स्थल है उसमें सोमनाथ का महत्व अलग ही है। वो भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, इसलिए भी लोग 12 ज्योतिर्लिंग को जाते हैं तो पहले सोमनाथ आते हैं और दर्शन करते हैं, तो इस रूप से भी बहुत महत्व सोमनाथ का बनता जा रहा है।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बारीकी से बताया कि क्या महत्व है जो सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है उसका पूरे देश के लिए, हमारे आध्यात्मिक, हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर। दिन का एक बजा जाता है, अब से चंद लम्हों के बाद आप आलमी खबरें सुनेंगे। ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से आलमी खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नजर आवाम से गैर मुल्की जर मुबादले की बचत की खातिर ईंधन और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से इर्तका पजीर गहरे तहजीबी, सकाफती और रूहानी ताल्लुकात से जुड़े हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बमुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनदा मर्दों के ICC T20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहत जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के दौरान जर मुबादला बचाने के लिए आवाम से ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। कल शाम गुजरात के वडोदरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कोरोना के वक्त के तौर तरीकों जैसे घर से काम करने, ऑनलाइन क्लासेज, वर्चुअल मीटिंग्स, निज पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल को दोबारा अपनाने की अपनी साबिका अपील को दोहराया। दरामदात में कमी लाने और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर आजम ने कहा कि हम सभी को मिलकर मुल्क के वसाइल पर बोझ कम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि भारत बैरून मुल्क से बहुत सी मसनूआत दरामद करने पर जर मुबादला की मद में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि मौजूदा बहरान के बायस दरामद होने वाली अशिया की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है और आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि इस बहरान के असरात मुल्क के शहरियों पर कम से कम पड़ें। उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं

स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। ये दौरा हाल ही में तय पाने वाले भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे FTA के तनाजुर में यूरोप के साथ खासतौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में भारत की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में नरेंद्र मोदी जुमे को मुत्तहिद अरब अमारात पहुंचेंगे, जहां वो सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा उमूर, खासतौर पर तवानाई के शोबे में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। इसके बाद वजीर आजम जुमे को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे, जहां वो शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलिका मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी नीदरलैंड्स के वजीर आजम के साथ भी बातचीत करेंगे। ये दौरा दिफा, सलामती, इख्तरात, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स और आबी शराकतदारी समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन को मजीद फरोग देगा। दौरे के तीसरे मरहले में नरेंद्र मोदी इतवार को स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे और स्वीडन के अपने हमनसब के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेंगे और बाहमी ताउन के नए इम्कानात पर गौरखोज करेंगे। दोनों उज़राए आज़म यूरोपी कमीशन की सदर उर्सुला ओंडेर लियन के हमराह सनात से मुतालिक यूरोपी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, जो यूरोपी कारोबारी रहनुमाओं का एक अहम फोरम है। अपने दौरे के चौथे मरहले में वजीर आजम पीर के रोज नॉर्वे पहुंचेंगे, जहां वो तीसरे भारत नॉर्डिक समिट और दो तरफा मीटिंगों में शिरकत करेंगे। अपने दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम मंगल के रोज इटली का सरकारी दौरा करेंगे। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत होते दो तरफा ताल्लुकात के पस मंजर में हो रहा है, जहां दोनों फरीक मुश्तरका स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान 2025-2029 पर सरगर्म तौर पर अमल दरामद कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से इर्तका पजीर गहरे तहजीबी, सकाफती और रूहानी ताल्लुकात से जुड़े हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका बुद्धिस्ट विरासत का हवाला देते हुए जनाब बिरला ने कहा कि ये देरीना रवाबित दोनों मुल्कों के दरमियान पुरजोश और दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद बने हुए हैं। लोकसभा स्पीकर ने कल पार्लियामेंट हाउस में श्रीलंका के ख्वातीन अराकीन पार्लियामेंट के साथ बातचीत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। श्रीलंका के अराकीन पार्लियामेंट के वफद की क्यादत श्रीलंका की ख्वातीन और बच्चों के उमूर की वजीर सरोजा सावित्री पॉल राज ने की। एक अहम सियासी और तारीखी पेशरफ्त के तहत हिमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी मुद्दत कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से आज हलफ लेंगे। वो आसाम की तारीख में लगातार दूसरी मरतबा इस ओहदे पर फायज होने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर होंगे। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य डॉ सरमा और उनकी वजारती कौंसिल को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। भारतीय बहरिया के नामजद सरबराह वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा है कि मुल्क के सरहद पार से होने वाली किसी भी जसारत से निमटने और उसका कलाकमा करने के लिए तैयार है। मगरबी बहरी कमान के कमांडिंग इन चीफ फ्लैग ऑफिसर जनाब स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत कई सालों तक दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है और वो मुल्क में बिलखसूस बैरूनी सरजमीन से की जा रही दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द कैंपों को खासतौर पर निशाना बनाया गया जिन्होंने साल 2025 में पहलगाम वाकये को अंजाम दिया था। जनाब स्वामीनाथन पाकिस्तानी दिफाई अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तबसरों से मुतालिक रिपोर्ट पर रायजनी कर रहे थे, जिसमें आसिम मुनीर ने कहा था कि इस्लामाबाद के खिलाफ मुस्तकबिल में किसी भी तरह की मुहिम जोई का नतीजा इंतहाई खतरनाक और वसीतर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी को इंतहाई नाजुक करार देने के बाद तेल के बाजार लड़खड़ा गए हैं और सिफारती कशीदगी में इजाफा हो गया है। जनाब ट्रंप की जानिब से इस तबसरे के बाद जंगबंदी के बरकरार रहने से मुतालिक ताज़ा खदशात में इजाफा हो गया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी अमन तजावीज पर अपना जवाब भेजा, जिसमें सभी महाजों पर मुखासमत के खात्मे, अमरीकी पाबंदियां हटाने, ईरान के मुंजमिद असासे जारी करने, अमरीका की बहरी नाकाबंदी खत्म करने और अबनाए हुरमुज पर ईरान के इंतजाम को तस्लीम करने की बात कही गई थी।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बोरान के पेश नजर आवाम से गैर मुल्की जर मुबादला की बहस की खातिर ईंधन बचत के खातिर ईंधन और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से इर्तिका पजीर गहरे तहजीबी, सकाफती और रूहानी ताल्लुकात से जुड़े हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बमुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनक्कदा मर्दों के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहत जानने के लिए एक कमेटी तश्कील की है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं। हमारी पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। दिन में 3 बजे आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

ये गाना किस फिल्म का था ये तो आप सभी को पता चल गया होगा और हमारे पास जवाब भी बेहद सारे आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज का। फिल्म सत्ते पे सत्ता, जी हाँ बिल्कुल सही। और डीबी राणा जी ने सबसे पहले हमें जवाब दिया है, नेहरू विहार दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें मैसेज देने के लिए। लेकिन आज के हमारे फेवरेट श्रोता जी, बता ही दिया हमने नाम उनका, और वाह क्या कमाल का गीत है ना दोस्तों, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। आज भी जब ये गाना बजता है तो दिल अपने आप पुराने दिनों की गलियों में घूमने लगता है। इस गाने की खास बात यह थी कि इसे फिल्म के सातों भाइयों की दोस्ती और जिंदगी के अलग अंदाज को दिखाने के लिए शूट किया गया था। और क्या आप जानते हैं इस फिल्म की कहानी हॉलीवुड फिल्म सेवन ब्राइड्स

24/7 ब्रदर्स से प्रेरित थी, लेकिन बॉलीवुड अंदाज में इसे इतना मजेदार बनाया गया कि ये अपने समय की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हो गई। अब जरा सोचिए, 7 शरारती भाई और उनकी जिंदगी में एक आती है समझदार लड़की यानी हेमा मालिनी जी। फिल्म में उनका किरदार पूरी कहानी को खूबसूरती से बदल देता है। और अब वक्त है अगले गाने का, जो प्यार और मासूमियत से भरा है। और हमारे पास मैसेज आया नेहरू चौक मैडम, सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद और भी बहुत सारे मैसेज हैं। पिपरिया से कमलकांत, दीपा, रिमझिम और मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव और फिर हमारे पास अजीत भास्कर का भी आया है मैसेज और बिट्टू घने एक फिल्म से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सुरेश, पूनम, गंगिन। इसी तरीके से हमें बहुत सारे भूषण खैरा जी की फैमिली, उन पूरे परिवार से हमें मैसेज आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा नगमा।

हाँ दोस्तों, दिल पर मेरे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गीत आज भी रोमांटिक प्लेलिस्ट की शान बना देता है। कहते हैं इस गाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि दर्शकों की इस जोड़े को खूब पसंद करा था। और दोस्तों, सत्ते पे सत्ता सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं, बल्कि इसमें फैमिली बॉन्डिंग, भाईचारा, प्यार का खूबसूरत संदेश भी था। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने

एक सीधा साधा भाई और एक खतरनाक विलेन दोनों किरदार बखूबी निभाए थे और यही डबल रोल फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बना। अब माहौल का थोड़ा सा और मस्ती भरा बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता देते हैं हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का, इसी तरह से प्यार बरसाए रखिएगा। कैसा प्रोग्राम लगता है इसी से हमें पता चलता है जब आपके मैसेज आते हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनान, अविराल, इन्होंने हमें मैसेज किया है। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन जी का मैसेज आया है हमारे पास, भूषण खेरा जी का मैसेज आया है हमारे पास, और बिट्टू गंगनेजा ने हमें जलालाबाद वेस्ट से सुरेश पूनम गंगनेजा जी ने मैसेज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज करने के लिए। और अब सुनते हैं हमारा ये अगला नगमा, बहुत ही खूबसूरत। सच में ये गाना बहुत ही खूबसूरत है, जिंदगी ऐसे ही बतानी चाहिए।

0: जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम ये जो है एक ही फिल्म से यस। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट रैना तंवर और हम मस्ती भरे सारे गाने और फिल्म को फिल्म की दिलचस्प किस्सों के साथ लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले एक सुनते हैं संदेश।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो हम बात कर रहे हैं सत्य पे सत्ता फिल्म की और आज देखिए दोस्तों, वाह कितना अच्छा दोस्त सुन, अभी हमने गाना सुना ना जिंदगी मिलके बिताएंगे, तो हम सब ये गाना ना बहुत ही खूबसूरत है और सच में जिंदगी बहुत छोटी सी है ना, तो जिंदगी हमेशा मिलके बितानी चाहिए। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि दोस्ती और भाईचारे का एक एंथम बन चुका है। आज भी कई दोस्त अपनी यादों में इस गीत को जरूर शामिल करते हैं। इस फिल्म के सातों भाइयों के नाम भी बड़े दिलचस्प थे, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यानी हफ्ते के 7 दिनों पर आधारित 7 किरदार। और दोस्तों कहते हैं कि जो फिल्म के सेट पर ना खूब मस्ती होती थी। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान सभी कलाकार सचमुच एक परिवार की तरह रहने लगे थे और 7 भाइयों की कहानी, जो अनाथ थे, एक दूरदराज फार्म हाउस में रहते थे, अनपढ़ और असभ्य थे। बड़ा भाई रवि जो है बाकी 6 भाइयों को पालन पोषण करता और रवि को इंदु यानी हेमा मालिनी से प्यार हो जाता और वो शादी कर लेते। इंदु घर में आती है तो सब जंगली भाइयों को ना सभ्य बनाने की बहुत कोशिश करती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब रवि के हम शक्ल बाबू खूंखार विलन यानी कि एंट्री होती है और एक साजिश के तहत दोनों सभी भाइयों की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब जरा रोमांस और शरारत का तड़का लगाया जाए तो तैयार हो जाइए अगले खूबसूरत गीत के लिए।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं।

डोल राणा जी ने किया था, दर्शन गौर जी ने हमें मैसेज किया है, और उसी में अजीत भास्कर और सुदर्शन मुखी जी ने मैसेज किया है, धर्मेंद्र छिप्पा जी ने मैसेज किया है हमें राजस्थान से, धर्मेंद्र कपिल पूजा भोपालगढ़, और संजय साहू पोटियाला से हमें मैसेज कर रहे हैं। पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज करने के लिए। हमें सुनील पाठक जी ने मैसेज किया है हमें, और इसी तरह से देवशंकर तामोरिया जी ने मैसेज किया है, मांगे राम जी ने मैसेज किया है हमें, और इसे उन्होंने हिमानी शुभम यश ऋतु सभी ने हमें मैसेज किया है। लालगिरी से हमें गोस्वामी जी ने मैसेज किया है, और आर कुमार जी ने मैसेज किया हमें मिंटू पंजाब से, बंडिंग खेड़ा और पिंकी लवली आरती अरोड़ा, और लालगिरी जी ने, हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने हमें मैसेज किया है, एंजल सोनू पप्पी हरजिंदर भाटिया जी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हरजिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पसंद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम को। और सुनते हैं जाते जाते ये वाला गीत, क्योंकि अब समय हमारा हो गया है, हमें अलविदा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस खूबसूरत सफर में जाते जाते सुनते हैं ये वाला गीत। तो दोस्तों आज के इस खूबसूरत सफर यहीं समाप्त करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आरडी बर्मन साहब के संगीत और ये सब फिल्म के जो सुनहरी यादें और दिल को छू जाने वाले गीत मैंने प्ले किए थे वो बहुत अच्छे लगे होंगे आपको। आपकी दोस्त रैना तंवर आपसे लेती है इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई फिल्म गानों और कुछ जुड़ी यादों के साथ। जाते जाते इतना ही कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि मई के संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का भागीदार बन के एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाएं, क्योंकि ऑयल और पेट्रोल भी बहुत महंगा है भाई, पैदल चले जितना जा हो सकता है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट दे और आपके दिल को दे जो सुकून वो काम जरूर करे। सुनते रहिए आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे कार्यक्रम के साथ।

मैं नाम नहीं ले पाई, कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। और नरेंद्र सूथक जी का भी मैसेज हमें आया है, और जाते जाते मैं नाम बता देती हूँ, हरजिंदर सिंह जी का भी आया है। बहुत सारे मैसेज आए हैं जिनको मैं ले नहीं पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सारे ही हमारे बहुत ही खास श्रोता है, इसी तरह से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोहन जी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब से कुछ ही देर में हम सुनेंगे पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश हिंदी में समाचार। तो जुड़े रहिए हमारे इस आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पेपर लीक होने के इल्जाम कारण नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के हुक्म दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूजे कार्यकाल लई असम के मुख्यमंत्री वजों सहु चुकी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को साल 2026 लई राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड प्रदान किए। सीबीआई वालों लखा रूपये के कथित रिश्वतखोरी मामले में बीती देर रात पंजाब च मोहाली स्थित पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर से छापेमारी। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला शामी 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद में होगा। खबरां विस्तार नाल।

गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। ये तकरीब गुवाहाटी के खानापाड़ा इलाके में वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद हुई। डॉक्टर शर्मा के साथ चार अरकान असेंबली को भी काबीना वजीरों की हैसियत से हलफ दिलाया गया। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजंता नेओग, आसाम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बहुत से मरकजी उजरा और एनडीए की सरकार वाली रियासतों के उजराए आला ने इस तकरीब में शिरकत की। इसके साथ ही डॉक्टर शर्मा आसाम में ऐसे पहले गैर कांग्रेसी रहनुमा बन गए हैं जिन्होंने वजीर आला का ओहदा लगातार दूसरी बार संभाला है। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए इस रियासत में लगातार तीसरी बार इक्तदार में आया है। उसने 126 रुकनीय आसाम कानून साज असेंबली में 102 सीटें हासिल की थीं। भारतीय जनता पार्टी 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टियों आसाम गण परिषद एजीपी और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ को 10-10 सीटें हासिल हुई थीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से 5 मुल्कों मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम जुमे को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से तवानाई से मुतालिक इश्तराक और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। वजीर आजम इसी रोज नीदरलैंड्स में शाह विलियम अलेक्जेंडर, मलिका मैक्सिमा और वजीर आजम रोब जेटेन से मुलाकात करेंगे। स्वीडन में जनाब मोदी वजीर आजम उल्फ क्रिस्टेरसोन के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला ओंडेर लेन के साथ सनत से मुतालिक यूरोपियन राउंड टेबल से खिताब करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी नॉर्वे के दौरे पर जाएंगे, जहां वो तीसरी भारत नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वजीर आजम जोनास गेयर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली जाएंगे और सदर सर्जियो मेत्रेला और वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वजीर आजम के आइंदा दौरे से हाल ही में किए गए भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती समझौते के तनाजुर में यूरोप के साथ मुख्तलिफ शोबों, खासतौर से तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में भारत की साझेदारी मजीद मजबूत होगी। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया है, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में दाखिले के लिए इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने बताया कि यह फैसला तलबा के मफाद में और उस ट्रस्ट को तस्लीम करते हुए किया गया है जिस पर कौमी इम्तिहान का निजाम मुनहसिर है। एजेंसी ने यह भी कहा कि हुकूमत ने इस मामले को तफ्तीश के मरकजी ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है, ताकि पेपर लीक के इल्जाम की भरपूर तरीके से जांच की जा सके। एजेंसी ने कहा कि वो सीबीआई को अपना पूरा ताउन देगी और तफ्तीश के लिए तमाम तर मवाद, रिकॉर्ड्स और मदद फराहम करेगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ने यह फैसला मरकजी एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फराहम की गई तफ्तीशी मालूमात की बुनियाद पर किया गया। एनटीए ने कहा कि यह इम्तिहान दोबारा कराया जाएगा, जिसके लिए अलग से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मई 2026 साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, उम्मीदवारों की मालूमात और इम्तिहान के लिए मुंतखब मराकज में कोई तब्दीली नहीं की गई और इन्हें दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान में इस्तेमाल किया जाएगा। एजेंसी ने बताया कि नए सिरे से किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी और न ही इम्तिहान की कोई इजाफी फीस ली जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के जाती मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की छानबीन अपने हाथ में ले ली है। रियासती पुलिस की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने आज बाजाब्ता तौर पर तहकीकात का काम अपने हाथ में ले लिया है। एक बयान में सीबीआई ने कहा है कि उसके कोलकाता जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर की निगरानी में खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी जाएगी। इस दौरान सीबीआई की एक टीम के आज मध्यमग्राम थाने का दौरा करने और उस जगह का मुआयना करने का इम्कान है जहां पर कत्ल का ये वाकया पेश आया था।
وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری کے زیر صدارت پہلی کابینہ میٹنگ کے فیصلوں کی ستائش کی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی بنگال کے لوگوں کی فلاح

0: Meteorological Department IMD has forecast heat wave conditions at isolated places over Gujarat, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rajasthan and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has issued an orange-coloured warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya and also predicted heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim tomorrow. Bihar and Uttarakhand are also likely to witness thundersquall with wind speed reaching up to 60 kilometers per hour tomorrow. Meanwhile, warm night conditions are expected to prevail at isolated places over Rajasthan throughout this week. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NEET exam for admission to undergraduate medical education cancelled over paper leak allegations, CBI probe ordered. Himanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term. CBI takes over probe into murder of West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari's aide, Chandranath Roth. President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्रिपद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्व सरमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री सरमा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत

0: के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के सेंगोतयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी

0: और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: LPG किचन में इस्तेमाल होने वाली LPG सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू LPG उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
1: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेलेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है।

0: मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और श्रोताओं, शुरू करते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। जी हां, आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देर ना करते हुए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और सबसे पहले सुनवाती हूं आपको ये गीत, जिससे कि आपको भी पता चले कि आज हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो लीजिए सुनते हैं ये गीत और उसके बाद बात करेंगे अपने इस कलाकार के बारे में।

दोस्तों अभी आप समझ ही गए होंगे और नहीं समझे तो हम बता देते हैं। आज हम बात करेंगे इकबाल कुरैशी की। जी हाँ साथियों, इकबाल कुरैशी का जन्म 12 मई 1930 को औरंगाबाद में हुआ था और बाद में वे हैदराबाद चले गए थे। दोस्तों बचपन में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए प्रदर्शन भी किया था और फिल्म उद्योग में आने से पहले वे निजी समारोह में गीत भी गाया करते थे और कवि मखदूम मोहिद्दीन और अभिनेता निर्देशक चंद्रशेखर के दोस्त भी थे वो। बाद में जब वे मुंबई पहुंच गए तो वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के नाटकों में निर्देशन में शामिल हो गए थे।

दोस्तों, कुरैशी को कई फिल्मी संगीत रचनाओं का श्रेय दिया जाता है। इनमें मोहम्मद रफी, मुकेश और महेंद्र कपूर, मुबारक बेगम और तीन बहन मंगेशकर, लता, आशा और उषा द्वारा गाए गए गीतों का संगीत शामिल है। उनके संगीत में नीरज और कैफी आजमी के गीतों को ध्वनि प्रदान की है।

दोस्तों, इकबाल कुरैशी ने शशि कपूर, मनोज कुमार और जॉय मुखर्जी, साधना सहित कई अभिनेताओं के साथ संगीत दिया है। उन्होंने 1958 की फिल्म पंचायत के 10 गानों के लिए संगीत तैयार किया, जिसमें उन्होंने लोक और शास्त्रीय संगीत का संयोजन किया और ताथैया करके आना गीत में बीन और कांच तरंग वाद्य यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया। दोस्तों, 1960 में उन्होंने दो फिल्मों बिंदिया और लव इन शिमला के लिए संगीत तैयार किया, जिनके गीत राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे और मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए थे। साथियों, इन दो गीतों में मैं अपने आप से घबरा गया हूं और यूं जिंदगी के रास्ते सवारते चले गए की धुने दिखाती हैं कि रफी उच्च स्वर तक कैसे पहुंच सकते थे। साथियों, लव इन शिमला में कुरैशी का गीत गाल गुलाबी किसके हैं, जिसे रफी ने गाया था और जिसमें तत्कालीन नए अभिनेता जॉय मुखर्जी ने अभिनय किया था। अगले वर्ष उन्होंने फिल्म उमर कैद के लिए संगीत तैयार किया, जिसमें हसरत द्वारा लिखित और मुकेश द्वारा गाई गई दुखद गजल मुझे रात दिन ये ख्याल है वो नजर से मुझको गिराना दें शामिल थी। दोस्तों, 1963 में कुरैशी ने फिल्म ये दिल किसको दूं के लिए मुबारक बेगम और आशा भोसले द्वारा गाए गए गीत हमें दम देके का संगीत तैयार किया, जिसमें शशि कपूर ने पदार्पण किया।

दोस्तों, उन्होंने चंद्रशेखर की 1964 की फिल्म चा चा चा के लिए संगीत तैयार किया और निर्देशन किया, जिसमें हेलन ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी। साथियों, इस फिल्म में सुबह न आई शाम न आई गीत शामिल था, जिसे तत्कालीन नए गीतकार नीरज ने लिखा था और रफी ने गाया था। साथियों, इसी फिल्म से वे मखदूम मोहद्दीन की कविता चारागर के लिए संगीत तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा जाने गए, जिसे एक चमेली के मांडवे तले गीत में दर्शाया गया था, जो दो प्रेमियों की कहानी कहता है जो कभी एक साथ नहीं हो सकते थे। भारतीय फिल्म संगीत इतिहासकार मानेक प्रेमचंद ने इस संगीत को कुरैशी का सर्वश्रेष्ठ प्रयास बताया था। साथियों, 1964 के बाद जिन फिल्मों में उन्होंने योगदान दिया वे उतनी सफल नहीं रही थी। उन्होंने आलमारा 1973 में संगीत तैयार किया, जो पहली भारतीय टॉकी फिल्म आलमारा 1931 का रिमेक थी। कुरैशी एक बहुत अच्छे संगीतकार थे साथियों।

दोस्तों, संगीत में उनकी रुचि बचपन से ही शुरू हो गई थी। जब वे किसी भी निजी समारोह में और ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाते थे और निजी समारोह में जाते थे, तो वहां भी उनका जो शौक था वो शुरू हो जाता था। बड़े होने पर मुंबई आने के बाद वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए और नाटकों के लिए संगीत देने लगे।

धरती बिछोना मेरा, तारे खिलौना मेरा, राहों में उड़ते जुगनू, चांदी और सोना मेरा। मैं दिल वाला हूँ, अरे मैं मत वाला हूँ, नाम

दोस्तों, इकबाल कुरैशी का निधन 21 मार्च 1958 में को मुंबई के विले पार्ले स्थित उनके घर पर हुआ। टेलीविजन साक्षात्कार देने के लिए तैयार था और इसी दिन हमें एक सुपर स्टार हमारे साथ, जो कि इतना अच्छा, जिसने हमें संगीत दिया, वो हमसे बिछड़ गया।

कितनी हंसी। दोस्तों इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

और मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है महबूब की मेहंदी।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है अदबी प्रोग्राम। सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। आज के प्रोग्राम में सामईन हम आपको सुनवाएंगे मोहतरमा गजाला कमर एजाज से उनका अफसाना नेमत खाना। कलामी शायर के तहत अपना कलाम पेश करेंगे जनाब नवेद अंजुम, और इसके अलावा एक गजल भी आपकी समातों की नजर की जाएगी। इब्तदा करते हैं कलाम शायर से। सामईन, शायरी न सिर्फ हमारी अदबी तस्कीन का विरसा है या अदबी तस्कीन का जरिया है, बल्कि ये हमें जीहोश भी बनाती है। शायरी में न सिर्फ दर्द जाना या गम जाना होता है, बल्कि इसमें दर्द जहां और गम जहां भी साफ तौर पर नजर आता है। कामयाब शायरी की पहचान यही है कि वह हर दौर में अपनी अलग मानवीयत रखती है। कहीं भी किसी भी दौर में उस शेर को पढ़ा जाए तो वह अपनी मानवीयत ढूंढ लेता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि हर अहद की लफ्जियात अलग होती हैं, लेकिन शेरी लफ्जियात हमेशा एक सी रहती हैं, यानी उनकी मानवीयत हमेशा बरकरार रहती है। आज के प्रोग्राम के आगाज में आइए सामईन सुनते हैं जनाब नवेद अंजुम से उनका कलाम।
1: एक गजल मुलाहजा फरमाए। उदासी शब की तो रंजे सहर को देखते हैं, गमे फिराक में दीवारो दर को देखते हैं। उजाला मांग के लाता है रोज शम्स से वो, हम इस्तराब में अक्सर कमर को देखते हैं। हजार चेहरे छुपे हैं हर एक चेहरे में, बड़े ही ध्यान से हर एक बशर को देखते हैं। कुछ इस अदा से नजर फेर ली थी उसने कभी, कुछ इस अदा से नजर फेर ली थी उसने कभी, जहां भी जाएं उसी की नजर को देखते हैं। खड़े हुए हैं जहां एक सफ में हैवां सब, उसी कतार में हम नामवर को देखते हैं। एक और गजल है। आंख लग जाए तो मंजर ना कहीं खो जाए,

मेरी नजरों से वो पैकर न कहीं खो जाए, सिर्फ इस वास्ते है भीड़ से वहशत मुझको, मेरी आवाज ही दबकर न कहीं खो जाए। सोचता हूं तेरा चेहरा न हो औरों जैसा, ये मेरी आंखों में बसकर न कहीं खो जाए। इतना जागा हूं कि डर लगने लगा है मुझको, मेरी आंखों से ही बिस्तर न कहीं खो जाए। एक नज्म है जिसका उन्वान है अफसुरदा। रात अफसुरदा है, तारीक है, बेसामा है, हसरतो यासो उमंगे दिले वहशी का मजार। यूं तो खामोशी ने बुन रखे हैं ताने बाने, इसकी आगोश में पिन्हा है ख्यालों का जहां। चंद बेसूद तमन्नाओं के मुभम खाके, आरजुओं के धुंधलके में कई ख्वाब निहां। कितनी मोहूम उम्मीदों के हैं बुझते से चराग, अब से पहले तो समा और ही कुछ था, लेकिन रात के वलवले थे, जोश तरब था कुछ और। आग ही आई दबे पांव मगर रात गए, जहन पे जितनी भी तस्वीरें थी लर्जा सी हुई। आलमे होशो खिरद हिरसो हवस का अफसों, एक शबखू ने किया रात को हंगामा बपा, और हम जाम बकफ बैठे रहे रात गए। रात ने फाश किए राज कई दर पर्दा, राज कीती के जहां वालों के दीवानों के। कहीं इस्मत लुटी दुनिया में कहीं अदल मिटा, और फिर रात ने डाली जो स्याही मुझ पर, अपने इंसान भी होने का भरम टूट गया। तुमने मुझसे ये कहा है कि मैं अफसुरदा हूं, मैं भी अफसुरदा हूं, ये शहर भी अफसुरदा है। एक गजल है, सभी रिश्ते सरे बाजार आ जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। सभी रिश्ते सरे बाजार आ जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। ताल्लुक सारे पुरसरार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। ताल्लुक सारे पुरसरार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। वो जिनसे था कभी एक गहरा नाता एक जमाने से, वो जिनसे था कभी एक गहरा नाता एक जमाने से, वो सारे लोग ही बेजार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। वो सारे लोग ही बेजार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। लुटाते फिरते थे जो जानो दिल सब तेरी राहों में, लुटाते फिरते थे जो जानो दिल सब तेरी राहों में, वो दिल आजार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। वो दिल आजार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। गवा दी उम्र सारी जिनको पाने के लिए तुमने, गवा दी उम्र सारी जिनको पाने के लिए तुमने, वो जर बेकार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। वो जर बेकार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। बड़ा करने में जिनको तुमने अपना खो दिया सब कुछ, बड़ा करने में जिनको तुमने अपना खो दिया सब कुछ, वो बच्चे बरसरे पैकार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। वो बच्चे बरसरे पैकार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। बहुत मायूस थे फूलों के मुरझाने पे तुम लोगो, बहुत मायूस थे फूलों के मुरझाने पे तुम लोगो, ये सब गुलजार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। ये सब गुलजार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। सभी रिश्ते सरे बाजार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। ताल्लुक सारे पुरसरार हो जाएंगे एक दिन, मैं न कहता था। एक दूसरी गजल मुलाजा फरमाए कि जब से तेरा ख्याल रहता है, छोटे बहर की गजल है, जब से तेरा ख्याल रहता है एक मुसलसल मलाल रहता है, जब से तेरा ख्याल रहता है एक मुसलसल मलाल रहता है। जाने क्या हो गया उसे लोगो, जाने क्या हो गया उसे लोगो, क्यों वो हर पल निढाल रहता है, क्यों वो हर पल निढाल रहता है। हिजर के दर्द में कहीं शामिल, हिजर के दर्द में कहीं शामिल, फिक्रे रंजे विसाल रहता है, फिक्रे रंजे विसाल रहता है। तुमने दे तो दिए जवाब सभी, तुमने दे तो दिए जवाब सभी, हां मगर एक

0: सवाल रहता है, हाँ मगर एक सवाल रहता है। वो समंदर हूँ जिसमें रोजो शब, वो समंदर हूँ जिसमें रोजो शब, हर घड़ी एक उबाल रहता है। जब से तेरा ख्याल रहता है, एक मुसलसल मलाल रहता है। एक और गजल, आखिरी गजल मुलाहजा फरमाए। ये जो टूटे से हैं अल्फाज सभी मेरे हैं, ये जो टूटे से हैं अल्फाज सभी मेरे हैं, जितने बिखरे हैं यहाँ साज सभी मेरे हैं। ये जो टूटे से हैं अल्फाज सभी मेरे हैं, जितने बिखरे हैं यहाँ साज सभी मेरे हैं। आज के दौरे जबाबंदी में मुझको अब तक, आज के दौरे जबाबंदी में मुझको अब तक, दे रहे हैं यहाँ आवाज सभी मेरे हैं, दे रहे हैं यहाँ आवाज सभी मेरे हैं। एक जमाने से कलेजे से दबा रखा है, एक जमाने से कलेजे से दबा रखा है, दिल में पिन्हा है जो सब राज सभी मेरे हैं। एक जमाने से कलेजे से दबा रखा है, दिल में पिन्हा है जो सब राज सभी मेरे हैं। नगमा जन जो थे यहाँ आज वो हैं जान बलब, नगमा जन जो थे यहाँ आज वो हैं जान बलब, जो भी हैं गीत के दमसाज सभी मेरे हैं, जो भी हैं गीत के दमसाज सभी मेरे हैं। हाँ इसी तरह से एक उम्र गुजारी है नवीद, हाँ इसी तरह से एक उम्र गुजारी है नवीद, चाहे जैसे भी हों अंदाज सभी मेरे हैं, चाहे जैसे भी हों अंदाज सभी मेरे हैं। ये जो टूटे से हैं अल्फाज सभी मेरे हैं, जितने बिखरे हैं यहाँ साज सभी मेरे हैं।
1: कलामी शायरी के तहत अभी आप जनाब नवीद अंजुम से उनका कलाम सुन रहे थे। उम्मीद है कि कुछ न कुछ कलाम जरूर आपको पसंद आया होगा। अब बात करते हैं उर्दू अदब की एक और मकबूल आम सिंफ अफसाने की। गो के अफसाना अंग्रेजी अदब से उर्दू अदब में आया, लेकिन उर्दू ने इसका दिल खोलकर इस्तकबाल किया और बाहें फैलाकर इसे गले से लगाया। इस तरह अफसाना उर्दू में एक मकबूल आम सिंफ बन गया और आज अफसाना उर्दू की मकबूल सिंफ शुमार किया जाता है। अफसाना निगार आपके आसपास की कहानी को उठाता है, आपके आसपास के किरदारों को मुतालिफ कराता है। वो किरदार जिन्हें हम बिल्कुल फरामोश कर देते हैं या जो हमारे आसपास होते हैं हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, अफसाना निगार उन किरदारों की बात करता है और हमें एहसास दिलाता है कि हम अपनी जिंदगी किस जाविये से जी रहे हैं। तो आइए सामईन, अब सुनते हैं मोहतरमा गजाला कमर एजाज से उनका ये अफसाना नेमत खाना।
2: अफसाने का उन्वान है नेमत खाना। पुराना होने के बावजूद नेमत खाना कुछ अरसे पहले तक नया होने का गुमान देता था, और क्यों ना देता। फुर्सत के औकात में अम्मा रगड़ रगड़ कर उसको चमकाती और फिर देर तक उसे निहारती रहती। ये उनकी माँ की आखिरी निशानी की शक्ल में उनके पास था, मगर कुछ दिनों से वक्त की छाप उस पर साफ नजर आने लगी थी। वो बेचारगी से उसे देखकर आहें भरा करती। कितना लंबा साथ था, माँ बाप जुदा हो गए मगर नेमत खाना उनके पास था। दरवाजा खोलते वक्त आजकल उसमें चुरमुराहट सी होने लगी थी, उनका दिल बैठ जाता। पहली बार आवाज सुनकर अम्मा ने देर तक उसके कब्जों पर तेल रगड़ा था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। काफी कमजोर हो गए थे वो, जोर से दबाने पर शायद निकल ही पड़ते। कारीगर को दिखाया मगर उसने बेहद रुखाई से कहा था कि उसकी टीन गल चुकी है और हथौड़ी की एक चोट भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सबूत के तौर पर उसने अम्मा की ना ना के बावजूद एक चोट कर ही दी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका और टीन अंदर को धस गई। उन्होंने घूर कर जब कारीगर को देखा तो वो बड़बड़ाते हुए वापस चला गया। अम्मा दुपट्टे के कोने से देर तक उसे सहलाती रहीं। बहू लाउंज में बैठी अखबार पढ़ रही थी। अम्मा ने उन्हें मुतवज्जो करने की बहुत कोशिश की मगर वो लापरवाह बनी बैठी रहीं। बेहिसी की भी हद होती है। अम्मा ने आंखें रगड़ी। वो वक्त नजरों के सामने आ गया जब अब्बा ने खुद दुकान पर बैठकर उसको बनवाया था। टीन की चादर इतनी मजबूत थी कि कुछ दिन पहले तक वैसी ही चमक बरकरार

थी, खास ऑर्डर देकर बनवाया गया था और 4 दिन की मेहनत के बाद वो तैयार हो सका था। आम तौर पर मिलने वाले नेमत खानों से अलग उसमें एक ऊपर का खाना था जिसका दरवाजा टीन का था। नीचे के खानों में जाली थी ताकि हवा अंदर जा सके और खाने पीने की चीजें खराब ना हो। उस जमाने में अलग से बावर्ची खाने का रिवाज कम होता था। कुछ घरों में अलग से था भी तो दरवाजा नदारद। इंसानों से ज्यादा बिल्ली चूहे और दूसरे कीड़े मकोड़ों से सामान की हिफाजत के लिए नेमत खाना हुआ करता था और जहेज में बतौर खास दिया जाता। मगर इस नए घर में बावर्ची खाना भी था, उसमें दरवाजा भी लगा था और सामान रखने के लिए अलमारियां भी बनाई गई थी। उनके जमाने में तो इन सब का तसव्वुर भी नहीं था। हाँ, फैला हुआ बड़ा सा घर, बीच में आंगन, चारों तरफ दालान जिसका एक हिस्सा बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। लकड़ी और बुरादे के चूल्हों से लेकर गैस के चूल्हे का दौर उनके सामने गुजरा था। मगर ऐसा बावर्ची खाना, शादी से पहले किसी ने बताया था कि बहू ने घर सजाने यानी इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया है। उनको ये बात समझ में नहीं आई थी। सलीका और हुनर तो लड़कियों को घर से मिलता है, अब भला स्कूलों में सफाई सुथराई और झाड़ू बुहारू का ढंग सिखाया जाएगा। कह तो वो नहीं सकी थी मगर सोचा जरूर था। शौहर के गुजर जाने के बाद अकेलेपन से उकता कर उन्होंने बेटे के पास जाकर रहना मंजूर किया था, मगर उनकी बस यही शर्त थी कि नेमत खाना उनके साथ ही जाएगा। राशिद के एक जानने वाले ट्रांसपोर्टर थे, उन्होंने उसे बाहिफाजत पहुंचाने का जिम्मा अपने सर ले लिया और यूं नेमत खाना अम्मा के साथ यहां आ गया। मगर बहू को उससे अजीब सी चिढ़ थी, उन्हें बावर्ची खाने में उसे रखना कतई गवारा नहीं था, किचन का सारा लुक खराब हो जाएगा। हिना ने शौहर से कहा, बावर्ची खाने की खूबसूरती नेमत खाने के होने या ना होने पर मुनहसिर थी। राशिद को मदाखलत करना पड़ा और वो अम्मा को ये समझाने में कामयाब हो गए कि नेमत खाना उनके कमरे में उनकी नजरों के सामने रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये नाना जान की वाहिद निशानी है जो उन्होंने नानी जान के लिए बनवाई थी और अब उनके हाथों में है। अम्मा को बेटे पर टूट कर प्यार आया। राशिद ने एक आंख बंद करके मुस्कुराते हुए बीवी की तरफ देखा और सब ठीक है का इशारा किया। हिना खुश हो गई और अपने मॉड्यूलर किचन को सजाने संवारने में लग गई, जहां की हर चीज उनकी पसंद की थी, दीवारों के रंग से लेकर फर्श की टाइल्स तक। पहली बार बेटे के घर में घुसते ही अम्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आंगन में पत्तों की खड़खड़ाहट की आदी थी। अपनायत का एहसास दिलाती मिट्टी में बसी सोंधी सोंधी खुशबू रूह को सरशार कर जाती और यहाँ चमचम करता घर और सामान, वो छूने से भी डरती थी। साफ सफाई और सलीका भी किताबों से हासिल होता है, 5 मिनट में ही वो इस बात की कायल हो गई थी। हर नए घर के अपने उसूल और कायदे होते हैं, इसका अंदाजा उन्हें पहले से था और जल्दी उससे वास्ता भी पड़ गया। दूसरे दिन वो वजू करके बाथरूम से निकली तो प्यास का एहसास हुआ। जग खाली था, पानी लेने वो कमरे से बाहर आई। फ्रिज में ठंडा पानी था, नॉर्मल पानी की बोतल पता नहीं कहाँ थी। वो बहू के कमरे तक आई और उनको पुकारा, मगर इससे पहले कि वो अपनी बात कहती, हिना बोली, अम्मा गीली चप्पल से फर्श खराब हो जाता है, बाथरूम के बाहर चप्पल रखी है, आप उसे इस्तेमाल किया करें और फिर बाहर निकलकर बदल लें ताकि फर्श खराब ना हो। बात सही थी, फर्श देखते हुए वो कमरे में आ गई और बहुत देर तक दिमाग में ये बैठाने की कोशिश करती रही कि कौन सी चप्पल कहाँ पहनकर जाना है। औरतों की उम्र का बड़ा हिस्सा यही सब समझने और समझाने में सर्फ होता है, मगर आदत तो जाते जाते ही जाती है। शादी करके जब वो ससुराल आई थी तो उनका कमरा छत पर था। वो धपड़ धपड़ सीढ़ियां चढ़ा करती और रोज सास की डांट सुनती, बहू बेटियों को धीरे धीरे सर झुकाकर चलना चाहिए, ये कौन से रंग ढंग निकाले हैं दुल्हन ने। जिंदगी का लंबा अरसा गुजर गया,
घुटनों के दर्द से चलना फिरना भी दुश्वार हो गया। सांस गुजर गई होती तो शायद अब भी उनको सुधारने की कोशिश में लगी रहती।

0: अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। अब ये बहू का नया घर और इस घर के नए जाब्ते, पता नहीं कितना वक्त लगेगा इस माहौल को समझने में। जब भी वो बहू से कुछ कहने के लिए जाती, वो मोबाइल कान में लगाए या तो किचन में मसरूफ होती, ड्रेसिंग टेबल के सामने होती या फिर टीवी देख रही होती। आवाज पर उनकी तरफ मुड़ती तो वो जल्दी से अपनी बात कह देती, पता नहीं सुना भी या नहीं, उनको खदशा लाहक हो जाता। मगर वो सुन भी लेती और अमल भी हो जाता। दवाइयां उनके कमरे में होती, चाय के साथ खाने वाला बिस्किट डब्बे में मौजूद होता। नया जमाना है, आपस में बात करने का रिवाज खत्म हो गया है, अब मशीनों से बात होती है, टीवी की सुनो और फोन पर बोलो। वो अपने आप को समझाती रहती और घबराती। आजकल वैसे भी पता नहीं क्या हो गया था, ख्वाब में गुजरे हुए लोग दिखाई देते, कभी माँ बाप तो कभी और दूसरे रिश्तेदार। और अब कई रातों से राशिद के अब्बा का हंसता हुआ चेहरा सामने आ रहा था। दिन भर तबीयत बोझल सी रहती, क्या करें, दिल ज्यादा बेचैन हो जाता तो नेमत खाना खोलकर चीजों को दुरुस्त करने में लग जाती। पुरानी यादें एक एक करके ताजा होती तो दिल पुरसकून हो जाता। उस दिन रात में अचानक सीने में दर्द उठा, बेकाबू हो गया तो राशिद को आवाज देकर बुलाया। दोनों आए, उनको पानी पिलाया, सहलाया। डॉक्टर के पास जाने के लिए वो राजी नहीं हुई। छपकी आई तो लगा राशिद के अब्बा उनको बुला रहे हैं और माजून खाने के लिए कह रहे हैं। पट से उन्होंने आंखें खोल दी और उठने की कोशिश की। राशिद ने बहुत मुश्किल से उन्हें लिटाया, सांस उखड़ने लगी। उंगली से उन्होंने नेमत खाने की तरफ इशारा किया। हिना और राशिद ने कुछ न समझते हुए एक दूसरे को देखा। अम्मा की उंगली नेमत खाने की तरफ इशारा कर रही थी। राशिद जल्दी से उधर आए। नानी हमेशा नेमत खाने में ताला लगाया करती थी, अम्मा ने वो रिवायत बरकरार रखी थी। हिना ने चाबी इधर उधर टटोला मगर बेसूद। राशिद ने ताले को जोर से खींचा तो वो चुरमुराते हुए दोनों कब्जे अलग हो गए और दरवाजा उनके हाथ में आ गया। खुलती बंद होती आंखों से अम्मा ने ये मंजर देखा, एक कमजोर सी आह मुंह से निकली। दरवाजा हाथ में लिए राशिद अम्मा की तरफ मुड़े मगर उनकी रूह जिस्म से आजाद हो चुकी थी।
1: माजी को कुरेदता और मुस्तकबिल के खाके बनाता ये अफसाना नेमत खाना भी पेश कर रही थी मोहतरमा गिजाला कमर एजाज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आई सामने अब सुनते हैं बेगम अख्तर की आवाज में ये गजल कलाम मिर्जा गालिब का है।

उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला से लपक जाए आवाज तो देखो। अभी गजल था थी बेगम अख्तर कलाम मिर्जा गालिब का था। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक आप जरूर हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है urdu service esd@gmail.com। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान शमीम उस्मानी को इजाजत दीजिए। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम के आगाज में समाप्त सुनाइए मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाजों में रुस्तम सोहरा फिल्म का नगमा, नगमानी का अमर जलालाबादी, मौसीकार सज्जाद।

से हैं बातें, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं।

फिल्मी नगमे सामिन इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। प्रोग्राम की अगली पेशकश इज्जतदार फिल्म का नगमा अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे हरियाली और रास्ता फिल्म का नगमा। मौसीकार थी शंकर जयकिशन। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म है दिल एक मंदिर। नगमा निगार शैलेंद्र, मौसीकार शंकर जयकिशन।

वजीर आजम के आइंदा दौरे से हाल ही में किए गए भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती समझौते के तनाजुर में यूरोप के साथ मुख्तलिफ शोबों खासतौर से तजारत और सरमायाकारी के शोबे में भारत की साझेदारी मजीद मजबूत होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से इर्तका पजीर गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी ताल्लुकात से जुड़े हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका बुद्धिस्ट विरासत का हवाला देते हुए जनाब बिरला ने कहा कि ये देरीना रवाबित दोनों मुल्कों के दरमियान पुरजोश और दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद बने हुए हैं। लोकसभा स्पीकर ने कल पार्लियामेंट हाउस में श्रीलंका की खवातीन अराकीन पार्लियामेंट के साथ बातचीत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा ने आज लगातार दूसरी बार आसाम के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। ये तकरीब गुवाहाटी के खानापाड़ा इलाके में वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनकिद हुई। डॉक्टर सरमा के साथ चार अरकान असेंबली को भी काबीना वजीरों की हैसियत से हलफ दिलाया गया। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, आसाम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बहुत से मरकजी वजरा और एनडीए सरकार वाली रियासतों के उजराए आला ने इस तकरीब में शिरकत की। इसके साथ ही डॉक्टर शर्मा आसाम में ऐसे पहले गैर कांग्रेसी रहनुमा बन गए हैं जिन्होंने वजीर आला का ओहदा लगातार दूसरी बार संभाला है। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के जाति मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की छानबीन का काम संभाल लिया है। रियासती पुलिस की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने आज बाजाब्ता तौर पर तहकीकात का काम अपने जिम्मे ले लिया। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया है जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में दाखिले के लिए इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने बताया कि यह फैसला तलबा के मफाद में और उस ट्रस्ट को तस्लीम करते हुए किया गया है जिस पर कौमी इम्तिहान का निजाम मुनहसिर है। एजेंसी ने यह भी कहा कि हुकूमत ने इस मामले को तफ्तीश के मरकजी ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है ताकि पेपर लीक के इल्जाम की भरपूर तरीके से जांच की जा सके। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम है। जनाब ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे की ईरान की तजवीज़ को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के जिम्न में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरत हाल का शिकार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में 15 नर्सिंग पेशावरों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड नर्सिंग के मैदान में इनके गैर मामूली ताउन पर दिया गया है। चीन के हुनान सूबे में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 5 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। हंगामी हालात से निमटने वाले मुकामी ब्यूरो के मुताबिक ये आग हेंगयांग सिटी के एनफेंग जिले में लगी। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से जोर देकर कहा है कि वो मगरबी एशिया के बहरान के पेश नजर गैर मुल्की जर मुबादला की बचत के खातिर ईंधन और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से 5 मुल्कों मुत्तहिद अरब इमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से इर्तका पजीर गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी ताल्लुकात से जुड़े हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: हम इन शाम की 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस ते हिंदी ए पंजाबी सेवाए शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी ए। सभा दी शुरुआत च समाचार फरमाओ सराय की प्रोग्राम झोक माही दी।

0: रेडियो दास सिरायकी प्रोग्राम हे। हरजीत कौर हाजर है तुहाडी सेवा विच सिरायकी प्रोग्राम घिन के। की हाल चाल है तुहाडी? मेरा ख्याल है तुसा सारा ठीक ठाक हो सो। ते वाला प्रोग्राम शुरू करें दे हाँ। आज मैं तुहा को सब तो पहला एक बहु वदिया कहानी सुनवेंदी पई हाँ, जिंदा नाम है मेडी धी मेढा फखर। कहानीकार हिन डॉक्टर मोहन लाल अरोड़ा।
1: मेडी धी मेडा अभिमान मेडा फखर मेडा गरूर। मैं एक साधारण परिवार च जम्मा ते पला। साडे मां प्यो ने बहु मेहनत करके साकू सबे बहन बिरावां को पढ़ाया लिखाया ते परिवारिक धार्मिक ते अच्छे संस्कार दिते। सबे बहन बिरावां को अपने पैरां ते खड़ा किता। मैं सरकारी अस्पताल च कंपाउंडर दी नौकरी लग गया। मेडे मां प्यो ने मैकू सख्त हिदायत दिती कि नौकरी करिंदे होया घमंड कायम नहीं करना, किसी भी मरीज नाल उच्चा नहीं बोलना, सबे मरीजा नाल मिठा बोलना है ते उन्हां को चंगी दवाई दे के ठीक भी करना है। उन्हां कोलो आशीर्वाद ते दुआ गिननी है। किसी भी मरीज या स्टाफ कोलो बद दुआ कहनी गिननी, ए गल हमेशा याद रखनी है। मैं अपनी नौकरी दौरान अपने मां प्यो दी हिदायत पल्ले बद गिननी। कुछ समय बाद मेडी शादी थी गई। मेडी कुआर पढ़ी लिखी सियानी सुगड़ आई। उन्हें मेडी मां प्यो कोलो परिवारिक धार्मिक ते अत्रिक संस्कार गिने। समाज च लवन देवन ते तीज त्योहार व्रत वगैरा दा पाठ पढ़ा। एक साल बाद मेडी कुआर दी गोद हरी थी गई ते साडे घर पुत्र जन्म मां। परिवार च पहला पोता आई ते धूम धड़ाके नाल छट्टी कीती गई। सवा महीने बाद चोला पाता गया ते एक साल बाद हरिद्वार वज के झंड उतरवाई गई। सारे परिवारिक रीति रिवाज पूरे किते गए। कुछ दी बाद एक बहन ते एक ब्राह दी शादी कीती गई। छोटे ब्राह किते दुकान भी कराई गई। ही करके मैं कु बैंक तू कर्जा गिनना पिया। मेडी सरकारी नौकरी आई ते बैंक कर्जा आसानी नाल मिल गया। थोड़े दी बाद मेडा तबादला थी गया ते एक घर तू डू घर करने पे। कुछ बैंक कर्जा ते कुछ तबादले दा खर्चा होन करके साडी आर्थिक स्थिति कमजोर थी गई। घर तू बाहर रहन करके ते कमजोर स्थिति दी वजह नाल मेडी कुआर को पीलिया थी गया। असा अंग्रेजी देसी नीम हकीम ते वड्डे डाक्टर नु खूब इलाज कराया पर कोई आराम ना आया। बहु भाज दौड़ कीती पर पीलिया ना घटा बदा ही गया। परिवार तो बिना कल्ले रावना केड़ा औखा है। हर छोटी जी तकलीफ बहु वड्डी लगती है। बिना मां प्यो दे आशीर्वाद दे बाजार च आटे दाल दा भाव पता लगता है। मां प्यो दा आशीर्वाद तो हमेशा साडे सिर उत्ते होना ही चाहिदा है। मेडी मां ने आके कोई देसी इलाज करवाया ते कुमार को दूजी जिंदगी मिली। नहीं ते वड्डे डाक्टर ने जवाब दे ही दिता है। मां प्यो तो अपने बालां को तत्ती वाह भी नहीं लगन देंदे। स्कूल फीस मकान किराया ते बैंक कर्ज सब कुछ ठीक ठाक चलता पी आई ते साडे घर एक चुहेर ने जन्म किया यानी मेडी घर मेडी धी रानी आई। साडे घर दी रौनक वध गई। खुशियां ही खुशियां आ गई। इवें लगे जिवें साक्षात लक्ष्मी दा अवतार थी। एडी सोहनी ते एडी होशियार धी दे सारे परिवारिक रीति रिवाज पूरे किते गए। छट्टी कीती गई चोला पाता गया रीति रिवाज नाल झंड उतरवाई गई। मेडा चुहर हुंदे अगू पिछू घूमे। कदे हुंदी अख खोले कदे हुंदे मुंह च उंगली पावे ते अदे मम्मी दा नक भी है अखा भी खुलेंदी है। मम्मी मैं कुदे दी है ना? हां पुत्र तू हिंदा वड्डा बिरा है ते कु रखड़ी विदेसी ते कु तिलक भी करे सी है। मम्मी मेडी कितनी मिठी बहन है ना? हां मिठे पुत्र दी मिठी बहन। मैं जेड़े ड्यूटी तू आंदा हूं तू गोद चाह के गिंदा। मेडी सारी थकावट दूर थी वेंदी। मैं अपनी धी दे मुंह च अपने आप को बोल गया। हर ले हुंदे किते कुछ ना कुछ गहना आंदा। कदे झूला कदे साइकिल कदे नवे कपड़े कदे खावन पीवन दा समान। मैं

0: ती गरम चा घिनस्या कोई गरम चा घिनसा वेसने ओए आशिक है तेकू घरू में चवा घिनसा।
1: बहुत शुक्रिया। वॉल्यूम वन दा गाना।
0: हिक मैडे दिल दा मसीला नहीं।

गीत दे नाल ही सिरायकी प्रोग्राम इथा ही खत्म थींदा है। तुहाकू ए प्रोग्राम किंज दा लगा साकू खत घल के जरूर दसो। ते हुन हरजीत कौर को देवो इजाजत, वल मिलसू।

0: जी मेरा की बड़ो, मैं सारी जमीन फूक आया तुहाडे झगड़े च, मैं गरीब।
1: ओ मैनू कुछ नहीं पता, तुम भी अपना टिकाणा कर।
2: एनी कहंदा जगीरा घरों बाहर हो गया, मोना झट मेरे पैरों पै गया।
0: भैन जी मैनू जिउंदा तुसी रख सकते हो, तुहाडा एहसान सारी उम्र दुआवां देवांगा। जगीरे दे भाईए नू जमीन बेच के महाराज दी सौ 3 लाख दिता है, इस वेले कक्खा तो होना।
2: 3 लाख दा सौदा ना हो तां कहिंदा सी मेरा पग वट जा रहा, तू तां कनेडा आ गया, मैं तां किसे थां जोगी नहीं रही, असूं पट्टी गई।
0: जी मैनू बख्शो, मुंडे नालों इत्थे खुदकशी कर लवांगा, मुंडे मां बाप घर वाली ते 2 बच्चे।
2: वो मेरे पैर फड़ी रो रहा सी, ओदी हालत वेख के मेरा मन पसीज गया। मोन रोना, मैं तेने वापस नहीं भेजांगी।
0: मैं तेरे सही जीवांगा, जो कहेगी करांगा, तमा दे लोबियां साडे नाल ठगी मार।
2: वो होका लै गया, मैं जी भर के रोई सा, दिल विच आई मोहने दे ब्याह जवां, जगीरे दी हिक ते पिप्पल ला दवां, पर मोहने दी घरवाली ते बच्चे नकामी दी चटान नाल मेरा मत्था आवज्जा। विंदर नूं फोन कीता, सारी आप बीती दसी, उस अगों मैनूं वी तत्तियां सुनाईयां, उस दी सहायता नाल वैनकूवर किराए ते कमरा लै लिया। मालक मकान भावें देसी बंदा सी, उहदी घरवाली मैनूं वेख के औखी भारी हुई, भावें मेरे कमरे दा बूआ दूजे पासे सड़क ते खुलदा सी। हुण मैं हर तरह बेबस जी हो गई सां, घर वालियों बारी जनानी नूं 100 बिजां, मैनूं बुरी तरह महसूस होया। पार खाने समाज विच रखवाला मर्द जरूर चाहीदा है। हरी नूं 2 चिट्ठियां लिखियां सन, नाल तंबीह कीती सी मैनूं चिट्ठी ना लिखी। चिट्ठी फड़ी जाण ते जगीरा ए ना आखे यार हंडा के आई है। औख वेले हरी नूं मंगवाना चाहिया, पर उसने व्याह करवा लिया सी। एक क्लब विच मैनूं किचन सांभण दी नौकरी मिल गई, हाबड़े गोरे तकण लगे, मैं हाले पूरी जवान सां, मूँह मत्थी लगदी सां। एक शाम शराबी गोरा किचन विच आ गया, हैलो आख के उसने मैनूं फड़ना चाहिया, मेरे कोलों थप्पड़ जड़ हो गया ते अगले ही दिन काम तों छुट्टी हो गई। कनेडा अमरीका विच नीरी वेलफेयर नाल गुजारा नहीं चलता, आखिर सिर तोड़ यतना नाल एक ट्रैवल कंपनी विच क्लर्की मिल गई। मैं हिम्मत नाल टाइप भी सिख ली। जगीरे ने मेरी चंगी जाब वेख के मुड़ जुड़ना चाहिया, पर मैं बुरी तरह दुरकार दिता। टिकटां दी खरीद नाल मेरे कोलों पंजाब तों आईयां दुखी कुड़ियां दियां दर्दनाक कहानियां आउण लगियां। दलीपो नूं 45 साल दे पक्के मर्द नाल नरड़िया गया सी। मापिया नूं इक्को लालच कनेडा दा, मालक दलीपो दी पूरी राखी करदा ते कई कई वार कम विचाले छड के घर आ जांदा, किते पिछों गुलछरे तां नहीं उड़ाउंदी। गालां मार कुट तों तंग आई ने दरिया दे पुल तों छाल मार दित्ती ते बाहियां वरियां दी सतनाम पागलखाने पुज गई। साडे मां बाप कनेडा दे लालच भोरे शर्म नहीं खांदे ते अलड़ धीआं नूं बलदी दे बूथे झोकी जांदे ने। मोह प्यार असलों मर गया। भैनो यह स्वर्ग नहीं, नरक है नरक। मेरी मनो सिदक नाल पढ़ो ते अपने पैरां ते खलोवो, मैं वापस आ रही हां। अपने देश नूं खुशहाल करे बिना असी इत्थे ब्लैक बास्टर्ड हां। अपने शहीद पुरखियां दी गैरत दा एहसास करो, उन्हां दी कृपा नाल मिली आजादी नूं खुशहाली च बदलीए। डालरां दी चमक ने पंजाब नूं अन्या कर छड्डिया, होर तां होर डॉक्टर ते इंजीनियर भी कमले होए तुरे आउंदे ने। अपने सभ्याचार च अणख नाल वसण वर्गा होर कोई स्वर्ग नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई स्वर्ग नहीं।

सुनेहा कथा लोक सिलसिले तहत तुसी सुन रहे सी ए पंजाबी कहानी। इस च भाग लिया सी सुखजीत कौर, अनिल शर्मा ते प्रभ जोत कौर ने। वाकई ए कहानी एक संजीदा सुनेहा दे गई। ते हुण अगे वधदे हां देश पंजाब च 6:10 ते पेश कीता जाएगा थोड़ा फरमाइशी गीतां दा प्रोग्राम नजराना। उस तो पहला सुन लैने आ दिलजीत दोसांझ दी आवाज दे विच एक गीत।

0: ते ममता, महादेव काट अमलेश्वर तो डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योतिकार ठाकुर, तेरियांश ठाकुर, मखो फिरोजपुर तो फरमाइशाई बिला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मुनिश बजाज हरा दी। तुहाडी सब दी फरमाइश ते नजराना प्रोग्राम की पहली पेशकश सुनदे आ ज्योतिका तांगड़ी दी आवाज च एक गीत।
1: कोई मैनू भी आपका गीत सुना दो।

फरमाइश विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, अनीतापुरी, ममतापुरी, मेघापुरी, पूजापुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रमा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेशपुरी, विनोदपुरी, डीसी पाली, अरुण, नेहा, एकता, शमी, बोधीपुरी, सुनीलपुरी, वीकेपुरी, आरएसपुरी, महेश गर्ग, जशन गर्ग, मंडी हरसी राम मलोर तो फरमाइश भेज रहे ने। सुनते हैं जी थोड़ी सब की फरमाइश से सुचीत बिंद्रखिया का गाया एक गीत।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से आकाशवाणी दाए जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:30 बज चुके ने। हुन पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को

0: इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान संधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: एक बातचीत आपको सुनवाते हैं खरीफ फसलों के लिए मिट्टी की जांच का सही समय, और इसमें हिस्सा ले रहे हैं विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, आप मृदा वैज्ञानिक हैं मुजफ्फरनगर से।
1: किसान भाई नमस्कार। जिस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य की समय समय पर जांच कराते रहते हैं, उसी तरीके से हमें चाहिए कि हम अपनी मिट्टी, अपने खेत का भी परीक्षण समय समय पर कराते रहें, क्योंकि उसके स्वास्थ्य की जांच कराएंगे तभी आप अपने खेत से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और जब हम बात करते हैं कि मिट्टी जांच की, तो उसका सही समय क्या है, उसका क्या तरीका है, किस तरीके से उसका सैंपल लेना है और कहाँ जांच करानी है, इस पर विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर वेद प्रकाश जी को, जो कि वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो मिट्टी की जांच कराते हैं उसका क्या महत्व है, किस लिए करानी चाहिए?
2: किसान भाइयों, मिट्टी की जांच के लिए जो महत्व है, इसमें हमें अपने खेत में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और हमारे खेत में किस अवस्था में वो हैं और कितनी हम मात्रा में डालें जिससे हमारी लागत कम हो और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए मिट्टी की जांच कराते हैं। मिट्टी की जांच का जो सही समय है वो अप्रैल से लेके और जून तक, यानी जब हमारी गेहूं की फसल कट जाए उसके बाद कराना चाहिए।
1: यानी अप्रैल से जून तक, यानी ये समय जो चल रहा है मिट्टी की जांच का, सही बिल्कुल उपयुक्त समय है। तो जो हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच करना चाहते हैं, तो सैंपल कैसे लें, क्या तरीका है सैंपल लेने का?
2: किसान भाई, अगर अपने खेत की मिट्टी की जांच कराना है तो सैंपल लेने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, जैसे अगर एक बीघे का खेत है या एक एकड़ का खेत है तो कम से कम 8 या 10 स्थानों से वी आकार का एक गड्ढा खोद लेंगे और उसकी सारी मिट्टी बाहर निकाल लीजिए और एक साइड से 2 इंच मोटी परत लेके और एक गड्ढे से, जैसे 200 ग्राम मिट्टी होगी, जब हमने 10 जगह से मिट्टी ली है तो 2 किलो मिट्टी होगी। अब 2 किलो मिट्टी को उसको 4 बराबर भागों में बांट लीजिए, आमने सामने के भाग को हटा दीजिए, फिर 1 किलो मिट्टी होगी, फिर उसके बाद पुनः फिर प्रक्रिया करेंगे, अब ती विपरीत साइड की मिट्टी को फेंक देंगे, सिर्फ आपको 500 ग्राम मिट्टी कपड़े की थैली में भरकर अपने नजदीक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया है कि उसमें जो गड्ढा किया और गड्ढा बी आकार का करना है,
2: जी जी,
1: तो उससे जो मिट्टी निकालते हैं तो गड्ढा क्या एक जगह से ही सैंपल लेना है?
2: नहीं, एक जगह से नहीं, 8-10 जगह से लेना है और उसमें खास जगह होती है, जैसे अगर कोई पेड़ खड़ा है तो उस पेड़ के नीचे का नमूना नहीं लेंगे, अगर खेत कहीं ऊसर का है तो ऊसर के पैच के अलग नमूना इकट्ठा करेंगे और बाकी खेत का एक जगह नमूना इकट्ठा करेंगे, तो ये विशेष सावधानी भी रखनी है।
1: मान लीजिए जब अलग अलग से नमूना लिया, सबको एक में मिलाना है, मिलाने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके, जब नमूना कितना होना चाहिए?
2: 500 ग्राम।
1: 500 ग्राम
2: जी।
1: तो उसको पैक कौन सी थैली में?
2: ये जैसे कपड़े की थैली अगर सिली हो, अगर कपड़े की थैली नहीं तो एक पॉलीथीन आती है, तो पॉलीथीन का, जैसे जो टिश्यू कल्चर का पौधा नहीं होता है जिसमें हमारी 500 ग्राम मिट्टी आ जाए, तो उसमें आप रख लीजिए और रखने के बाद फिर उसमें देख लीजिए, जैसे खेत का नाम, खसरा संख्या, कौन सी फसल बोई थी और कौन सी फसल बोने जा रहे हैं, तो ये 3-4 सावधानियां देना है, उस पे आधार कार्ड संख्या भी लिख देनी है।
1: तो ये सारा लिखने के बाद आप जो भी आपके पास में नजदीक कोई भी कृषि अनुसंधान संस्थान हो या कृषि विज्ञान केंद्र, वहां से कितने दिन में रिपोर्ट आ जाती है?
2: ये लगभग 1 सप्ताह में, जैसे आपके नजदीक कृषि विज्ञान केंद्र है, जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो वहाँ के जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ भी करा सकते हैं, हमारे पूसा इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से भी मिट्टी की जांच हो जाती है, हमारी भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ है तो वहाँ भी मिट्टी की जांच होती है, तो वहाँ भी किसान अपना सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा लें और कम से कम 1 सप्ताह लगता है जो मुख्य पोषक तत्व की जिसकी जांच करते हैं, तो उसकी अगर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच करते हैं तो उसमें कम से कम 10 दिन लग जाते हैं।
1: अच्छा, जैसे आपने कहा है कि मुख्य पोषक तत्वों की जांच करानी है, अगर दोनों की जांच करानी हो तो रक्षा बहुत से, जब हमारे किसान भाई सैंपल लेते हैं तो उसमें खुरपा है, फावड़े है, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या सावधानी रखें, वो फावड़ा साफ हो, कहीं अगर कोई आयरन की जांच करवा रहा है, और क्योंकि फावड़ा भी लोहे का होता है, जब उससे खुदाई करते हैं खुरपी से, तो क्या उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता?
2: नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कहना मतलब खुरपा हो बिल्कुल साफ हो, ठीक है कि नहीं? ये नहीं कि उसमें मिट्टी लगा हुआ रात में रखा हुआ तो उसपे आयरन की वो आ जाता है। तो हमारा कहना उसको पहले आ तो धुल दो, धुलने के बाद उसको साफ पोंछ दो कपड़े से।

0: बासी मिट्टी से लो, या जैसे फावड़ा है फावड़े को भी साफ कर लीजिए, क्योंकि फावड़ा किसी दूसरे खेत में चलाया गया तो वहाँ की मिट्टी का अंश आ गया और दूसरे मिट्टी में जब कलेक्ट किया तो दोनों का कंट्रोवर्सी हो जाती है। इसलिए हमेशा साफ सुथरा उपकरण होना चाहिए, चाहे खुरपी से ले लो, चाहे फावड़े से ले लो, या सबसे बढ़िया अपने घर में लोहे की पाइप फुकनी जिसे कहते हैं चूल्हा जलाने वाले, वो तो साफ ही होती है। आप अगर खेत में जा रहे हैं, खेत आपकी जुताई हो चुकी है, तो एक फुकनी ले लीजिए, एक छोटी हथौड़ी ले लीजिए टाइप की, तो आप कम से कम 10-12 जगह से फुकनी को भी ठोंक दीजिए और फुकनी पे उसपे निशान बांध दीजिए कि 6 इंच का निशान लगा दीजिए, और उसका भी बहुत अच्छे से तरीका लिया जा सकता है, उसमें ऊपर से नीचे तक की जितनी हॉरिजेंटल होती है ABCD सबका आ जाता है। तो चाहे आप फुकनी से ले लीजिए या खुरपी से ले लीजिए, ये लेने का समझो तरीका है।
1: अच्छा, जब जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी जांच कराते हैं और या मुख्य पोषक सबकी इकट्ठी जांच कराते तो क्या उसपे सैंपल पे लिखना होता है कि ये चीजों की जांच कराएं?
0: हाँ, सैंपल लिखना, क्योंकि उसका शुल्क जैसे कहीं कहीं तो निःशुल्क होता है, जैसे भारत सरकार है तो वहाँ निःशुल्क भी करा लेती है, कुछ राज्य स्टेट जो क्या है वहाँ कुछ शुल्क ले लेते हैं। आपके पते की पर्ची पे लिखेंगे कि हमें मुख्य पोषक तत्व की जांच कराना आया है, मुझे दोनों जांच करवानी है, तो दोनों जांच करानी होगी भी दोनों का सोल हेल्थ कार्ड बन जाएगा। आप जब तक अंकित नहीं करेंगे तब तक मेजर ही जहां जांच होती तो मेजर की जांच कर देंगे।
1: तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसमें जो सूचना लिखी जाती है उसमें ये भी लिखी जाती है कि आपने उससे पहले कौन सी फसल ली और आप कौन सी फसल लेना चाहते हैं।
0: जी जी,
1: तो उसके अनुसार पोषक तत्वों की भी जांच की जाती है।
0: जी जी जी।
1: तो डॉक्टर साहब, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है तो इसकी क्या भूमिका रहती है?
0: मृदा स्वास्थ्य कार्ड की ये भूमिका रहती है, जैसे हमारा आपका आधार कार्ड है
1: जी,
0: तो आधार कार्ड जैसे कहीं खाता खुलवाते उसमें लगा देते हैं। अब हमारी जो सरकारें हैं वो सोयल हेल्थ कार्ड इसलिए मस्ट कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्म रजिस्ट्री करा दी किसानों की, तो फार्म रजिस्ट्री का एक रजिस्ट्रेशन हो गया, एक सोयल हेल्थ कार्ड हो गया, तो सोयल हेल्थ कार्ड के आधार पे हमें उर्वरक को निर्धारित करेंगे कि इतनी मात्रा हमें यूरिया की देनी है, इतनी हमें DAP की देनी है, इतनी हमें सिंगल सुपर फास्फेट देनी है, या हमें पोटास की मात्रा देनी। पहले अंधाधुंध किसान ले लेते थे, लेकिन अब सरकार ने सोयल हेल्थ कार्ड में आपकी जमीन में कौन सी तत्व की कमी है तो वही खाद आपको मिलेगी।
1: अच्छा, सोयल हेल्थ कार्ड जैसे कुछ लोगों के पहले बने उनमें तो केवल आवश्यक पोषक तत्वों का सोए थे, अब क्या उनको अपडेट किया गया है?
0: हाँ, उनको अपडेट करा, जैसे पहले आप आधार कार्ड में किसी की जन्मतिथि की टूट पाई गई, किसी के डेट तो अपडेट हो जाता है, उसी तरीके से आप दोबारा सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद जो अपना पुराना जो सोयल हेल्थ कार्ड है वो वहाँ उस इंस्टीट्यूशन में ले जाके, तो अब दोबारा जब नया बनेगा उसमें मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों का सोयल हेल्थ कार्ड बन जाते हैं।
1: जैसे सोयल हेल्थ कार्ड तो बना दिया गया और एक किसान को दे दिया गया, मान लीजिए वो किसान अनपढ़ है तो वो कैसे समझेगा कि हमारे खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और कितना हमें डालना है?
0: उसमें जब सोयल हेल्थ कार्ड बना होगा उसमें 2 पेज का होगा, एक तरफ तो वो किसानों का जो मिट्टी की जांच का क्या है, जैसे नाइट्रोजन कितने निम्न में है या मीडियम में या हाई में है, दूसरी तरफ उसकी वैज्ञानिक संस्तुति कि अगर निम्न है तो हमें इतना नाइट्रोजन देना है, मध्यम है तो हमें इतना नाइट्रोजन देना, उच्च है तो हमें ये तरीके देना, तो उसकी सिफारिश वैज्ञानिक संस्तुति उसी सोयल हेल्थ कार्ड में भी दी जाती है, एक तरफ उसका रिजल्ट एक तरफ उसका सुझाव
1: तो दिया गया। लेकिन मेन चीज ये है कि किसान फसल क्या लगा रहा है उसके अनुसार सुझाव कैसे निर्धारित किया?
0: तो उसमें जो आप पते की पर्ची पे लिख देंगे, जैसे मैंने गेहूं की फसल काटी है अब मुझे धान की रुपाई करनी है, तो गेहूं के लिए रिकमेंडेशन NPK का और इधर आपके धान का रिकमेंडेशन NPK, तो यानी सबका अलग अलग फसल आपको दे जाए, सिर्फ आपको शुल्क एक ही देना पड़ेगा, तो क्योंकि सबकी मात्रा अलग अलग होती है। जैसे अभी धान की बात करते हैं तो धान में हमें 120 केजी नाइट्रोजन जरूरत पड़ती है, 60 केजी फास्फोरस जरूरत पड़ती है, 40 केजी पोटाश चलती है 1 हेक्टेयर में, तो हमारा कहना सबका अलग है, अगर सिंगल सुपर फास्फेट है तो उसकी अलग मात्रा जरूरत पड़ती है।
1: अगर डॉक्टर साहब किसी किसान ने अपने खेत में हरी खाद या गोबर की खाद लगाई है तो उसको किस तरीके से निर्धारण करना है?
0: उसमें जैसे है, जैसे अगर हम धान की फसल की बात करते हैं क्योंकि खरीफ की बात हो यहाँ पे हो रही है, तो धान में हमें 3-4 टन प्रति हेक्टेयर रिकमेंडेशन है, गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, ये डालना है। अगर हमने ये नहीं डाल पाई तो अगर हमने हरी खाद ले ली, हरी खाद जैसे आपने देख लिया उसका रिकॉर्ड 45 KG नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, क्योंकि उसमें जब अगर ढैंचा की फसल में अलग नाइट्रोजन प्राप्त होता है, सनई में अलग प्राप्त होता है, अब आपने किससे उसमें हरी खाद के में लिया उतनी आप माइनस कर देंगे।
1: ढैंचा है
0: तो सनई है,
1: मूंग है
0: तो इनकी जो मात्रा है वो आप माइनस करके बाकी आपको रिकमेंडेशन दी जाएगी, क्योंकि सारी ब्यौरा जब तक देखो डॉक्टर के पास अगर पेशेंट जाता है वो सारी चीज बताएगा तभी वो खुल के दवा लिखे।

0: नहीं तो नॉर्मल वो दवा लिख देगा। तो ये सारी किसान को देनी पड़ेगी अपनी सूचना कि हमारे खेत में ये चीज है।
1: अच्छा, स्वास्थ्य मृदा के जांच के लिए और जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो उस कितने दिन तक वैलिड रहता है?
0: ये 3 साल तक वैलिड रहता है, यानी 3 साल बाद आपका सॉइल टेक्सचर बदलता है, 3 साल बाद पुनः आपको जांच की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो मुख्य पोषक तत्व की जांच कराएं चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच, 3 साल के बाद तुरंत आप चेंज कर लेंगे।
1: कि जब कोई भी किसान फसल चक्र अपनाता है तो उसमें क्या है कि मान लीजिए पहले उसने उथली जड़ वाली कोई फसल लगाई तो उसमें ऊपर की मृदा से पोषक तत्व लिए गए, अगर वो अगली फसल लेता है और वो गहरी जड़ वाली लेता है तो नीचे से पोषक तत्व ले लेता है तो इस फसल के उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ता है और लेकिन पोषक तत्व नीचे से भी लिए गए ऊपर से भी लिए, कर्षण क्रियाएं एक में केवल ऊपर से हुई दूसरे में गहरी हो गई। तो उसी तरीके से अगर किसी किसान ने मान लीजिए अदलहनी फसलों का प्रयोग किया इसको उसने लगा लिया और दोबारा अगर वो लगाता है उसमें कोई दलहनी फसल लगा ले जिससे उसकी मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहती है,
0: वो बनी रहे, ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन भी रहे।
1: जी ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन रहता है क्योंकि जो दलहनी फसलें होती हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इकट्ठा करती हैं, तो इसके लिए जरूरी रहता है कि आप फसल चक्र अपनाएं।
0: इसके लिए भी रहता है लेकिन मेन ये चीज है कि जो गहरी जुताई की बात करें, जब किसान 4 जुताई करता है उसमें 1 जरूरी जुताई करता है जिससे मिट्टी नीचे की ऊपर हो जाती, ऊपर की नीचे हो जाती, हमेशा वो कल्टीवेटर नहीं चलाएगा, अगर 2 हैरो भी मारे हैं फिर उसके बाद 2 कल्टीवेटर भी मारेगा तब फसल की बुवाई करेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, हमारे काफी किसानों से हमने डिस्कस किया तो किसान भाई कहते हैं कि हमें मिट्टी को पलटना नहीं चाहिए ज्यादा गहरी मिट्टी को, उसका क्या कारण है?
0: उसका ये कारण आपने देखा है कि जब से हमारा रोटावेटर आया
1: जी,
0: रोटावेटर 4 इंच तो जमीन ऊपर से हो गई भुरभुरी, नीचे जब आप 7 इंच खोदो तो एक कठोर लेयर होगी कि नहीं, जब हम प्लाऊ से उसकी जुताई करवाएंगे तभी तो वो उसकी टूटेगी परत, जब टूटेगी क्योंकि हमारी जड़ें तो नीचे 7 इंच तक जाती हैं
1: जी,
0: तो इसलिए कहा गया है कि प्लाऊ से भी एक बार जुताई जरूर कर दी जाए जिससे हमारा पोषक तत्व कम से कम हो जाए। जब से मिट्टी का सेहत किस लिए खराब हुई, जब से हमारा रोटावेटर आया, और रोटावेटर क्या हुआ, आज कोई फसल कटी है सवेरे रोटावेटर चला ऊपर 4 इंच से वो भुरभुरी कर दी लेकिन नीचे वही रह गया सारा,
1: नीचे और ठोस हो गया,
0: वो नीचे और ठोस हो गया, ऐसे ही वो साली बंजर पूरी होती चली जा रही जमीन। तो इसीलिए हमारी उत्पादकता पे बहुत असर पड़ा है, चाहे आप गन्ने का भी अभी देख लो, हमेशा समझो 25% हमारा उत्पादन कम हुआ है, गेहूं पे भी हमारा 12 से 16% समझो उत्पादन कम हुआ, तो हमारा उत्पादन घटने का तो यही तो कारण है, कर्षण क्रियाएं सही समय पे नहीं हो पानी।
1: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं उनके लिए मृदा जांच के बारे में थोड़ा सा आप कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: मृदा जांच के लिए किसान को मैं संदेश ये दूंगा कि कोई भी फसल बोएं उसके 1 महीने पूर्व ही अपनी मिट्टी की जांच करा लें, वो कहीं से भी आप जांच करा लें, किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से, किसी सरकारी संस्था से, और जांच के आधार पर फर्टिलाइजर डालें, निश्चित रूप से हमारी लागत कम आएगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। 3 साल में ही जांच करानी होती किसान भाई, जैसे हम अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं उसे धरती माँ का भी ध्यान रखना हमें पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, अगर आप खेतों से अपना अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो धरती माँ का ध्यान रखना आपका कर्तव्य बनता है, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई कोई भी फसल लगाएंगे तो पहले मिट्टी की जांच करा के उसके अनुसार ही उसमें पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे जिससे उनकी लागत में कमी आएगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। आपका पुनः धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खरीफ फसलों के लिए मिट्टी की जांच का सही समय, विशेषज्ञ थे डॉक्टर वेद प्रकाश और बातचीत कर रहे थे शिव नंदन लाल। तो शीतल बहन, बहुत ही अच्छी जानकारी थी कि खेती की तैयारी करने के लिए सही समय यही है मिट्टी की जांच करने का, और इससे आवश्यक उर्वरकों और पोषक तत्वों की मात्रा का सटीक अनुमान हमें मिल जाता है।
3: जी बिल्कुल, और जिन जिन सावधानियों की बात की है कि कहां से मिट्टी लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, और किस जो घर के सिला हुआ जो वो होती है पॉकेट की तरह होती है उसमें रखनी चाहिए, इन खास बातों का जरूर ध्यान रखें।
2: तो अब हम मनोरंजन कराते हैं और सुनवाते हैं विकल गुजर को
3: रागनी
4: और मेरा दम ले।

0: अभी आप सुन रहे थे विकल गुजर से ये रागनी। और शीतल बहन, जैसे कि हम बात कर रहे थे योजनाओं की, तो एक और योजना है स्टार्टअप इंडिया योजना। भारत सरकार की एक बहुत ही प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में नए व्यवसायों, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ताकि आर्थिक विकास को गति मिले और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सके। इस योजना के तहत योग्य व्यवसायों को सरकार द्वारा कई प्रकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, और प्रमुख लाभ बहुत सारे हैं, जैसे कर में छूट, इजी फंडिंग मतलब आसान वित्त पोषण आदि की व्यवस्था होती है।
1: और इसके लिए पात्रता वही 10 वर्ष से अधिक पुराना ना हो किसी भी कंपनी का, मतलब जो कंपनी बनी हो कम से कम 10 साल पुरानी हो, ऐसा ना हो कि नई नई बनी हो और आप उस पर उसका लाभ लेना चाहें, ऐसे नहीं मिलेगा। और जो साल का उसका टर्नओवर हो, मतलब जो उसकी कमाई हो साल की, वो निर्धारित जो सीमा है स्टार्टअप इंडिया के, इसके भीतर हो।
0: और तो यानी इन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। इस योजना के तहत पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता जरूरी है।
1: हाँ, इससे बेरोजगारी कम होती है, क्योंकि सरकार ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार कमाएंगे तो बेरोजगारी कम होगी, और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहर के लोग इसका लाभ ले सकते हैं, गांव में भी आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आजकल आप देख भी रहे हैं कि छोटे छोटे काम करके, पढ़े लिखे लोग छोटा छोटा काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और दूसरों को भी पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो इस तरह से आप स्टार्टअप कोई भी योजना शुरू कर सकते हैं। ऋण की व्यवस्था बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और ये जो तमाम जो योजनाएं होती हैं, इन पर आपको विस्तार से जानकारी हम इसलिए देते रहते हैं ताकि आप समय समय पर इन जानकारियों से लाभ उठा सकें। जी, और हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आपको हमारे जो ये कार्यक्रम है कैसे लग रहे हैं। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। तो हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम कृषि जगत यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।
0: सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम।
1: और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर, और कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, गजलों की इस महफिल में आपका स्वागत है और आज के कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हम पंकज उधास साहब की इस गजल के संग।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। पेपर लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली सरकार ने नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना बढ़ोतरी की। स्टाइपेंड अब बढ़कर 500 से 13,500 रुपए हुआ। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली में पहले मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल पुलिस थाने की घोषणा की और सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा है

0: कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नई दिल्ली में नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि यदि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जरा भी संदेह हो तो ऐसी स्थिति में परीक्षा रद्द करना ही उचित निर्णय है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ आज भारत की ओर देख रहे हैं। श्री प्रधान ने यह बात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर कही। ICSSR की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
2: ICSR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली को आवश्यक बताते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक मजबूत ऋण प्रणाली विकसित करने पर बल दिया। नई दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि छात्रों को अधिक सहायता और अवसर प्रदान करने के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को भी ऋण ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने भारत की शिक्षा प्रणाली को विश्व की सबसे मजबूत शिक्षा प्रणाली बताया। उन्होंने कहा कि देश में 10 लाख सरकारी स्कूलों सहित लगभग 15 लाख स्कूल हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा पर देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% खर्च कर रही हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि NCERT और CBSE ने मिलकर कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है और इसे लागू भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा और अवकाश समाप्त होने के बाद स्कूल खुलने पर इन विषयों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि NCERT कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पाठ्य पुस्तकें भी तैयार कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें, हमारा भविष्य। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके सेवा भाव की सराहना भी की।
3: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नर्सें केवल मरीजों की देखभाल नहीं करती बल्कि उन्हें नया जीवन देने का भी काम करती हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता के पीछे देश के कोने कोने से आए स्वास्थ्य कर्मियों का योगदान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि

0: दिल्ली सरकार ने 27 साल बाद नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना बढ़ोतरी की है। इस निर्णय के बाद स्टाइपेंड को 500 रुपए से बढ़ाकर 13,150 रुपए कर दिया गया है। इसी क्रम में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1,388 नर्सिंग अधिकारियों और 41 पैरामेडिकल कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के बेहतर कार्य वातावरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज गुवाहाटी में असम की नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। श्रीमती गुप्ता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्वा सरमा को बधाई दी। उन्होंने इसे सुशासन, विकास और जनसेवा की राजनीति की जीत बताया।
2: जनता का विश्वास और माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद ही असम में हैट्रिक जो लगी है, जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है, उसका आधार है आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और हेमंता दा की मेहनत। असम राज्य को और तरक्की के मुकाम पर लेके जाएगी, जहाँ हर व्यक्ति के लिए सुख सुविधा संपन्नता होगी और विकसित भारत के साथ विकसित असम और अधिक तरक्की करेगा।
1: असम प्रवास के दौरान श्रीमती गुप्ता ने कामाख्या मंदिर, मां बगलामुखी और उमानंद मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज दिल्ली पुलिस के 9वें विशाल मादक पदार्थ निस्तारण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान लगभग 1700 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 72 करोड़ रुपए है। मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई को सशक्त करने की दिशा में उपराज्यपाल ने दिल्ली के पहले समर्पित मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ANTF पुलिस थाने की भी घोषणा की। इस दौरान श्री संधू ने वर्ष 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली के लक्ष्य को फिर से दोहराया। उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के अध्यक्ष तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी के द्वारका उपनगरी को अंतर्राष्ट्रीय निवेश और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया है। एक बैठक में उन्होंने DDA के अधिकारियों को द्वारका के लिए व्यापक विकास योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री संधू ने कहा कि द्वारका में यशोभूमि निर्माणाधीन राजनयिक क्षेत्र, अर्बन एक्सटेंशन रोड और हवाई अड्डा जैसी सुविधाएं हैं, जो इसे निवेश के लिए उपयुक्त बनाती हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि इस तर्ज पर रोहिणी और नरेला को भी विकसित किया जाएगा। श्री संधू ने DDA को सभी हितधारकों के साथ मिलकर जल्द ही ठोस और समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा आज चौखंडी क्षेत्र में जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों की समस्याएं सुनी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने बताया कि कई मामलों का मौके पर ही अधिकारियों से बात कर समाधान किया गया, वहीं अन्य शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विकास को लेकर लोगों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार दफ्तरों से नहीं, जनता के बीच रहकर काम करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज पूर्वी दिल्ली के जोन 1 और जोन 2 के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान श्री सूद ने शिक्षा व्यवस्था, स्कूल का बुनियादी ढांचा, सुरक्षा और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल स्तर पर आने वाली चुनौतियों को समझना तथा शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के सुझाव प्राप्त करना है। इस संबंध में श्री सूद ने कक्षाओं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल, शौचालयों तथा डिजिटल शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ये संवाद कार्यक्रम आगामी 11 दिनों तक लगातार आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नजफगढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन कोयला बायोगैस संयंत्र का निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र जुलाई तक तैयार हो जाएगा। श्री वाही ने कहा कि इस संयंत्र के तैयार हो जाने से क्षेत्र में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी और यमुना नदी में गंदगी जाने पर रोक लगेगी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज मॉनसून से पहले जल भराव रोकने की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने भारती नगर, गोल्फ लिंक, तुगलक लेन और पंडारा रोड समेत कई क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। श्री चहल के अनुसार परिषद ने पहले चरण में 31 मार्च तक शत प्रतिशत

0: डीसिल्टिंग कार्य पूरा कर लिया है। दूसरा चरण अगले महीने की 15 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालयों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स वर्ष 1956 से देश के चिकित्सा नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एम्स के 51वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा को किफायती बनाया है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख ओपीडी के साथ संस्थान ने अद्वितीय गुणवत्ता के साथ रोगी देखभाल का मानक स्थापित किया है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि एम्स नई दिल्ली एक संस्थान के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र स्थापित ब्रांड भी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिशत से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए ये कहा। उन्होंने कहा कि कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
1: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: राजधानी में आज दिन भर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली सरकार ने नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना बढ़ोतरी की, अब 500 से बढ़कर 13,500 रुपए स्टाइपेंड हुआ। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली में पहले मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल पुलिस थाने की घोषणा की और सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

हेलो सलाम नमस्ते। फिल्म संगीत से सजी गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, योर्स वेरी ओन दीप्ति। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ कुछ बातें और कुछ कुछ खास नगमे। तो क्या कहते हैं, करें अपने रोलर कोस्टर राइड को किक स्टार्ट विद अ सिंपल कप ऑफ कॉफी।

सिंपल सी कॉफी, लेकिन बात जब तेरे संग पीने की हो तो वही कॉफी बन जाती है एकदम खास। और फिर दिल धीरे से कह उठता है कि कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। दो एहसास, दो गाने।

नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी देर के बाद एक फनकार प्रोग्राम होगा। आज आप सुनेंगे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई हुई गजलें। 9:45 पर खबरें नशर की जाएंगी। 10 बजे आप सुनेंगे एक ड्रामा जिसका उनवान है दिल लगी। 10:30 पर फरमाइश फिल्मी नगमों का प्रोग्राम होगा तामिल इरशाद। दौरान प्रोग्राम 11 बजे खबरें बारे सगीर से नशर की जाएंगी।

रात 11:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में। 11:45 पर बज़्मी मौसिकी में सुनिएगा अमित मुखर्जी से राग बागेश्वरी में ख्याल। रात 12:00 आलमी खबरें नशर होंगी। 12:10 पर क्लासिकी मौसिकी के प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद अमीनुद्दीन खान डागर से राग यमन में आलाप और ध्रुपद। 12:30 पर आखिर शब प्रोग्राम के तहत सुनेंगे पुराने फिल्मी नगमे। 12:50 पर खबरें नशर होंगी और रात 1:00 हम आपसे रुख्सत लेंगे और हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सुबह 9:30 पर। तो ये थी एक नज़र इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर जारी है। अब पेश है प्रोग्राम एक फनकार। आज के फनकार हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन।

किए गए नीट यूजी 2026 इम्तिहान को मनसूख करने का फैसला किया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस की खसूसी कार्रवाईयों से मुतालिक ग्रुप एसओजी ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। एसओजी ने कल एक मुबैना सरगना को जयपुर से हिरासत में लिया था, जिसका नाम मनीष बताया जाता है। इससे कबल जराये के मुताबिक राजस्थान पुलिस एसओजी ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मुबैना साजिश रचने वाला सिकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार शामिल है। इसके अगले दिन नीट का इम्तिहान देने वाले 4 तालिबे इल्मों को भी गिरफ्तार किया गया था। नासिक पुलिस ने भी नीट पेपर लीक मामले में मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया था। बीजेपी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्वा सरमा ने मुसलसल दूसरे मुद्दतिकार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। डॉ सरमा के हमरा कानूनसाज असेंबली के 4 अरकान ने भी काबिनी वजरा की हैसियत से हलफ लिया। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजनता नियोग, असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मुख्तलिफ मरकजी वजरा और एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वजरा आला ने इस तकरीब में शिरकत की। तमिलनाडु में जोसेफ विजय की क्यादत में नौ मुंतखब शुदा टीवी के हुकूमत के लिए कल अक्सरियत की आजमाइश से कबल सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीलियां रूनमा हुई हैं। एआईएडीएमके हुकूमत को हिमायत फराहम करने के मामले में दो ग्रुपों में बंट गई है। साबिक वजीर आला और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडापड़ी के पलानास्वामी की क्यादत वाले ग्रुप ने पार्टी के मेंबरान असेंबली को हिदायत दी है कि वह टीवी के हुकूमत की हिमायत न करें। सीनियर लीडर अग्री कृष्णामूर्ति ने खबरदार किया है कि किसी ने एमएलए ने पार्टी विप के खिलाफ वर्जी की तो उसे पार्टी से बरतरफी का सामना करना पड़ेगा। 30 मेंबरानी असेंबली की हिमायत का दावा करने वाले एक और ग्रुप ने एसपी वेलुमनी को एआईएडीएमके की कानूनसाज पार्टी के लीडर के तौर पर चुन लिया है। ग्रुप के लीडरों ने साबिक वजीर सीवी शनमुगम की रिहायशगाह पर एक मीटिंग के बाद आज मीडिया से मुलाकात की। शनमुगम ने ऐलान किया कि ये ग्रुप अक्सरियती वोट के दौरान टीवी के हुकूमत की हिमायत करेगा। हुकूमत को अम्मा मक्कल मोनित्र कसगम के वाहिद एमएलए एस कामराज की हिमायत भी हासिल है, जिन्हें आज उनकी पार्टी ने बरतरफ कर दिया था। वजीरे आला विजय कल से हिमायत करने वाली पार्टियों के लीडरों के साथ मीटिंगें कर रहे हैं ताकि अक्सरियत साबित करने की आजमाइश से कबल अपनी हिमायत को मजबूत कर सकें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क भर की अदालतों की जदीदकारी और इसकी खातिर 40 से 50 हजार करोड़ रुपए की हुकूमती मदद हासिल करने के लिए खाका तैयार करने की गरज से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में एक आला सतही कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। अदालतों के बुनियादी ढांचों से मुतालिक यह मुशावरती कमेटी हुकूमत की जानिब से मुसलसल माली मदद के जरिए अदालतों में बुनियादी ढांचे के हवाले से कमियों का इजाला करेगी। अवामी कामकाज से मुतालिक मरकजी महकमे के डायरेक्टर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी जनरल भी पैनल के मेंबरान होंगे। कमेटी को इस साल 31 अगस्त तक वजीर आजम की इकतसादी मुशावरती कौंसिल के रुकन संजीव सानियाल को अपनी तफसीली मालूमात और रकम की जरूरियात दाखिल करने का काम दिया गया है। साइबर क्राइम से मुतालिक भारतीय तालमेल मरकज ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं ताकि साइबर नौयत की इकतसादी जालसाजियों से निपटा जा सके और बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के पूरे मौशी निजाम में मूल खातों में कमी की जा सके। भारत इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर ममालिक के वजरा खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामलात पर नजरियात का तबादला करेंगे। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के यूएई के दौरे के बारे में बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि उनके दौरे के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी पर बातचीत होगी। जनाब जायसवाल ने वजीर आजम के नॉर्वे, स्वीडन, इटली और नीदरलैंड्स के दौरों के सिलसिले में भी मुतला किया।
آپریشن سندور کے دوران چین کی جانب سے پاکستان کی مدد کیے جانے سے متعلق خبروں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جسوال نے کہا کہ ان خبروں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم تھا۔

0: उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में एक मखसूस मुकर्रर और तालमेल से की गई कार्रवाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की शह वाली दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और उसमें मदद फराहम करने वालों को नीस्तो नाबूद करना था। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमरीका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। सेंसेक्स 1456 पॉइंट्स या 1.92% की कमी के साथ 74,559 पर बंद हुआ। निफ्टी में 436 पॉइंट्स या 1.83% की कमी आई और यह 23,380 पर बंद हुआ। गैर मुल्की करेंसी की मार्केट में आज रुपए की कद्र में 32 पैसे की कमी आई और एक डॉलर की कद्र का रिकॉर्ड कम होकर 95.63 रूपये हो गई। बैडमिंटन में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल मर्दों की डबल्स की भारत की सरकर्दा जोड़ी थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स के इफ्तिताही मुकाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 23-21, 21-10 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के ब्रायन जर्मी गॉन्टिंग और मोहम्मद हाइकल से होगा। आईपीएल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटन्स ने सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में AIADMK में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय की टीवी के हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला अख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़रा खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमरीका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से 2% की कमी आई है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। चलिए साहब, अब बनाते हैं आम पन्ना, यानी आपको बताते हैं कि इस गर्मी के मौसम में आम पन्ना बनाने के यानी उसको इस्तेमाल करने के यानी उसको पीने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाते हैं कच्चे आम, और तेज लू वाले दिन जो बस आ ही गए हैं समझिए, ऐसे में लू लगने के खदशात बहुत ज्यादा होते हैं। घर से बाहर निकलने वाले हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान, स्कूल कॉलेज या ऑफिस जाने वाले लोग घर से बाहर जब जा रहे हैं, अगर एक गिलास आम पन्ना पीकर जाएं तो कहा यह जाता है कि लू से महफूज रहते हैं, हीट स्ट्रोक से बच जाते हैं। काफी काम का होता है ये आम पन्ना। सिर्फ लू से ही हमें नहीं बचाता है बल्कि इसके कई और फायदे भी होते हैं। कहा जाता है कि ये गर्मी का जो तेज मौसम है, शिद्दत है जो गर्मी की, उसको मात देता है, आपके जिस्म को ठंडक देता है। और डिहाइड्रेशन, पसीने का अखराज चूंकि बहुत ज्यादा होता है इस मौसम में, तो ऐसे में आप इससे भी बच सकते हैं। डिहाइड्रेशन कम करने में मदद करता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कच्चे आम में विटामिन सी होता है जो आपकी कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा इससे निजाम हाजमा भी बेहतर हो जाता है, खासकर अगर आपने आम पन्ना बनाते हुए इसमें जीरा भी डाला है यानी जीरे का पाउडर और काला नमक अगर इस्तेमाल किया है, तो फिर आपका जो निजाम हाजिमा है वो बेहतर तौर पर काम करेगा। बाज मरतबा ऐसा भी होता है सामीन के गर्मी में कुछ लोगों को थकान या फिर कमजोरी महसूस होती है, तो अगर आप ऐसे में आम पन्ना का एक ग्लास पीते हैं तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक नई कुव्वत, एक एनर्जी दौड़ गई है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं आम पन्ना के बारे में कि इससे हमारी भूख बेहतर हो जाती है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें भी हैं। कुछ ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि अगर इसमें ज्यादा चीनी का इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये जो जितना हेल्दी हमने आपको ये बताया वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी थोड़ा अनहेल्दी हो सकता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा खास बात, अगर किसी को खुदा न ख्वास्ता डायबिटीज है तो फिर चीनी

कम इस्तेमाल करें, बहुत ही कम, या फिर बिना चीनी वाला बनाएं, और बहुत ज्यादा भी नहीं पीना है। एक या दो ग्लास काफी रहते हैं इस मौसम के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा पिया जाए तो चूंकि इसमें जीरे का इस्तेमाल हुआ है, काले नमक का भी इस्तेमाल हुआ है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाए निजामे हाजमा की जानिब से ही। अब ये बनाया कैसे जाता है, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं भी पता ही दूं ना, जब आम पन्ना की बातें हो रही हैं तो मुझे भी तो ये साबित करना है कि मैं सिर्फ इसके फायदे ही नहीं बता सकती, बल्कि मैं इसको बनाना भी जानती हूं। कच्चे आम लेने हैं आपने, और फिर उनको अच्छी तरह से धो लीजिए, और फिर नर्म होने तक उसको उबाल लीजिए, थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दीजिए। उसके बाद उसका छिलका हटाइए, गुठली निकालिए, और जो गूदा है उसका वो ले लीजिए आप। उसको मिक्सर में भी आप चला सकते हैं, और अगर बिना मिक्सर के बनाना है तो उस गूदे को अच्छी तरह से फेंट लीजिए। अब इसमें आप गुड़ मिला सकते हैं, काला नमक, जीरे का पाउडर मिला सकते हैं, और या अगर डायबिटीज है जैसा कि हमने कहा तो कुछ भी ना मिलाएं आप। फिर उसमें आप सिर्फ पुदीना मिलाएं, और पुदीने का रस या पुदीना पीसकर इसमें शामिल कर लीजिए, और लीजिए जनाब, आम पन्ना बनकर तैयार हो गया। और इसको आप ठंडे पानी में बनाएंगे तो ठीक है, और अगर आप चाहें कि इसमें आपने बर्फ यानी कुछ ज्यादा ही ठंडा चाहिए आपको, तो फिर बर्फ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, छोटे छोटे क्यूब्स डालिए। लीजिए जनाब, आपका आम पन्ना बनकर तैयार हो गया, और चूंकि आपने इसमें पुदीने का इस्तेमाल किया है तो पुदीना जो है वैसे भी हमें रिफ्रेश कर देता है, उसकी खुशबू ही ताजगी का एहसास दिलाती है। तो आप सोचिए कि जब आपने आम पन्ना में पुदीना डाल दिया तो ये जो ड्रिंक आपने तैयार किया है वो कितना हेल्दी है और कितना रिफ्रेश कर देगा आपको, और साथ ही साथ आपकी कुव्वत मुदाफियत बढ़ेगी, इस गर्मी के मौसम का सामना करने के लिए आप हो जाएंगे एकदम तैयार। तो बस बहुत ही आसान है, कच्चे आम अपने घर में रखिए और रोज बनाइए आम पन्ना, खुद भी पी लीजिए और घर वालों को भी पिलाइए, खासकर घर से जो बाहर जाने वाले लोग हैं उनको जरूर पिलाइए। बातें यहीं तक खत्म हो गई हैं साहब मेरी, लेकिन आकाशवाणी की उर्दू सर्विस का सिलसिला, नशरियात का सिलसिला तो जारी रहेगा हमारा रात के 1 बजे तक। अब बज गए हैं 10, और अब हम आपको सुनवाएंगे एक ड्रामा जिसका उन्वान है दिल लगी। ड्रामे की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी है जनाब शम्स तबरेज ने, और इसकी पेशकश है प्रेम वोहरा साहब की। तो आइए अब सुनते हैं ये ड्रामा जिसका उन्वान, जैसे कि हमने आपको बताया, दिल लगी।

0: कौन है?
1: घबराइए नहीं, आप अस्पताल में हैं और मैं नर्स हूँ। ओह मिर्जा साहब, अब तो आपकी टांग अच्छी हो चुकी है, क्या अभी आपको सहारे की जरूरत पड़ती है?
2: अजी मिस साहिबा, इसी सहारे के लिए तो हम कब के भटक रहे हैं, लेकिन खसम जवानी की कोई मुकम्मल सहारा ही नहीं मिलता।
1: मिल जाएगा मिल जाएगा, कैसी जल्दी में क्या है? लो दवाई पियो, तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
2: अरे हाय अजी, मेरी तबीयत की क्या पूछती हो, गफूर रहीम की कसम, अब्दुल रहीम का बुरा हाल है।
1: व्हाट?
2: कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं।
1: लो दवाई पी लो।
2: नहीं नहीं नर्स, ये दवा बहुत कड़वी है, मैं नहीं पीऊंगा।
1: ज्यादा कड़वी तो नहीं, पी लीजिए। पी लीजिए ना, आपको मेरे सर की कसम, पी लीजिए।
2: आपने ना हक अपने सर की कसम क्यों दिला दी, कसम जवानी की मैं तो यूं ही मजाक लाइए लाइए।
1: आपने दवाई गिरा कर हमारी सब ड्रेस खराब कर दी।
2: लाइए लाइए, मैं साफ किया देता हूँ।
1: रहने दीजिए रहने दीजिए,
2: अरे मैं साफ किया देता हूँ। अरे लड़की है या बिजली का तार, अरे जरा छुआ नहीं कि सारे बदन में सनसनी तोड़ गई।
1: डॉक्टर साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे?
2: अजी कह देना कि एक मरीज ने दवा गिरा दी। हाँ एक बात कहूँ, आप खफा तो नहीं होंगी?
1: नहीं नहीं कहो।
2: ना जाने क्या बात है, जब भी आप मेरे सामने होते हैं तो दिल बहुत

0: और जमा
1: मेरी आंखों से ओझल हो जाती है, दिल बहुत घबराता है।
2: और मेरे दिल का भी यही हाल है।
1: हाय सर,
2: जब मैं आपके पास आती हूँ तो मुझे भी अच्छी तरह की खुशी महसूस होती है, और जब चली जाती हूँ तो बहुत बोरियत महसूस होती है।
1: चले नास, क्या वाकई तुम सच कहती हो कि तुम्हारी भी यही हालत होती है?
2: बिल्कुल सच कहती हूँ।
1: नस, तुम्हारा नाम क्या है?
2: मैरी।
1: मैरी यानी कि मैरी।
2: हाँ, तुम्हारी मैरी।
1: हाय मैरी, क्या तुम?
2: हाँ हाँ कहो।
1: क्या तुम मुझे, मेरा मतलब है कि मुझसे?
2: ओहो, अब कह रही चुको।
1: क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
2: क्या कहा, शादी?
1: अरे फिर कहो। अरे एक बार फिर कहो।
3: मैंने कहा आदाब अर्ज है मिर्जा।
1: अरे अरे आदाब, कौन मासूम? अरे आओ भाई, आओ बैठो। भाई अब मैं तो नागहा मुसीबत में गिरफ्तार हो गया।
3: मिर्जा साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम्हारी टांग जख्मी हो गई। आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब
2: तो चोट घुटने में लगी है।
1: नहीं नहीं,
3: में लगी।
1: अगर नहीं नहीं
3: भाई तो बोलो ना, ये सब कैसे हो गया? मतलब यह क्या?
1: अम्मा कुछ भी नहीं, मैं जरा दिल रुबा से जीने पर खड़ा हुआ बातें कर रहा था। अगर बातों में इतना खो गया कि कुछ ख्याल ही नहीं रहा। बस पैर जो लड़खड़ाया तो सीधे सड़क पर आ रहे।
3: ना कोई मुजायका नहीं मियां। देखो यार के कूचे में तो लोग अपनी जान तक दे देते हैं।
1: हाय हाय हाय,
3: अगर आपने अपनी टांग की कुर्बानी दे दी तो यार कोई बात नहीं। और भाई वो मोहब्बत ही क्या है जिसमें कुछ ना कुछ तकलीफ और कोई ना कोई सदमा ना पहुंचे।
1: अरे भाई तो मुझे कब शिकवा है? हाय
3: मिर्जा साहब, एक शेर हुआ है।
1: शेर? अरे इरशाद इरशाद
3: है कि तीर उसने दिल पे मारा था मगर।
1: अय हाय मम्मा मम्मा, तीर उसने दिल पे मारा था मगर। अरे मामा,
3: आगे बढ़कर टांग घायल हो गई।
1: अरे मम्मा मम्मा मासूम, अरे मा, अरे भैया यहाँ आते आते तो दिल भी घायल हो गया।
3: क्या किसी और तरफ से कोई तीर आ लगा मियाँ?
1: अम्मा कुछ मत पूछो, जब मैं यहाँ आया था तो बिल्कुल बेहोश था। थोड़ी देर के बाद होश आया, आंखें जो खोली तो खुली की खुली रह गई।
3: वो क्यों? मतलब क्या क्या?
1: अम्मा क्या देखता हूँ कि एक पैकर है नाजो अदा, मुजस्मा हुस्न दुश्मन है सब्रो करा, काफिर अदा फुसूगर माह तलब दोशीजा। अगर मेरे सामने खड़ी है और उसकी नीली नीली जादू भरी आंखें अगर मेरे चेहरे पर लगी है, मुझे ख्याल हुआ कि मैं शायद जन्नत में हूँ और ये कोई हूर है।
3: या फिर क्या हुआ?
1: अरे फिर मैंने उससे घबरा कर पूछा, मैं कहाँ हूँ और आप कौन है? हाय ये सुनकर उसके होंठों पे इस तरह जुम्बिश हुई कि गोया हवा के हल्के हल्के झोंकों से अरे गुलाब की पंखड़ियाँ हिल रही हो।
3: जल्दी जल्दी बोलो ना, फिर क्या हुआ? मतलब क्या?
1: बस उसने कहा, घबराइए नहीं, आप अस्पताल में हैं और मैं नर्स हूँ। अरे भाई तुम्हारे सर की कसम खा कर कहता हूँ, जालिम ने गजब का हुस्न, कयामत की सादगी और कहर की अदाएं पाई हैं। अरे मालूम होता है कि खयाम की रुबाई औरत के सांचे में ढल गई। हाय हाय हाय, अरे क्या बताऊँ, जब से उसको देखा है दिल बेकाबू हुआ जाता है।
3: मिर्जा साहब, अरे आपके दिल की इस कैफियत का अंदाजा, अरे उसे भी हुआ।
1: काम आखिर आ गई इस दिल की आहुजारियाँ।
3: क्या मतलब? मतलब ये क्या?

0: जो मेरे दिल का हाल हुआ उसे मैं बयान नहीं कर सकता।
1: हाय हाय हाय, अरे तो यूं कहिए कि चल गया वाह। हाय हाय हाय मिर्ज़ा साहब, अरे न जाने आप में क्या जादू है कि हुस्न मैं खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचा चला आता है। हाय हाय, और एक सिया बख्त हम है कि आज तक मोहब्बत तो मोहब्बत और किसी ने दो मीठे बोल भी नहीं बोले।
0: अरे भैया, खुशखबरी और सुनाता हूँ। अरे वो मुझसे शादी करने पर राजी हो गई है। और फिर मैंने भी सोचा।
1: देर किस बात की है मिर्ज़ा साहब? अरे पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई, मजे कीजिए मजे। अब ये फरमाइए कि इस खुशी में मिठाई कब तक खिला रहे हैं आप?
0: अरे मिठाई जितना भी चाहे खाओ, मगर वो थोड़ी मेहनत करनी होगी।
1: वो क्या?
0: अरे वो सेहरा कहना होगा
1: मिर्ज़ा साहब। मैं एक नहीं दो दो सेहरे कह दूंगा। दो एक आपका और एक होने वाली भाभी जान का। नमूने के तौर पर हम दो तीन शेर तो मैं अभी सुना देता
0: हूँ। हाँ इरशाद इरशाद
1: लीजिए।
2: माँ मेरे बनने को मुबारक हो आठवां सेहरा, मेरे बनने को मुबारक हो आठवां सेहरा। बस सुना रहा है और सुना रहा है जवानी की दास्तां
0: सेहरा।
2: मैं बनने की उम्र ही क्या है, सिर्फ 88 साल। और सफेद नजले की शिद्दत से हो गए हैं
0: बाबा।
2: ना उनका खून है वाइट, ना उनका खून है वाइट, ना उनका दिल काला। मेरा बनना है बुढ़ापे में कैसा हरियाला।
0: शुक्रिया मासूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा बाबा
3: बाबा साहब, देखिए मैं आपके लिए कितने अच्छे अच्छे फल लेकर आई हूँ।
0: अरे तुम्हारी मेहरबानियों का किस तरह शुक्रिया अदा करूं? अरे भाई मैंने शादी की खुशखबरी इन्हें सुना दी।
3: शादी की खुशखबरी?
0: हाँ
3: शादी। क्यों जी, ये हमारे कौन होते हैं?
0: ओए मेरी, ये हमारे दोस्त है मासूम सहारनपुरी।
3: मासूम सहारनपुरी, ओमपुरी, मदनपुरी, अमरीशपुरी और उमर खयाम सहारनपुरी का नाम तो मैं अक्सर पढ़ती और सुनती रही हूँ, लेकिन ये
0: दरअसल ये उमर खयाम सहारनपुरी का छोटे भाई है।
3: ओ गोपाल, अरे ओ गोपाल।
4: आया सिस्टर जी।
5: कहाँ है जी?
3: अरे देख तो, मासूम सहारनपुरी आए हैं।
5: कौन आए थे हाजी?
3: मासूम सहारनपुरी।
5: मासूम सहारनपुरी? अरे नहीं जी, हमको तो ये अमरीशपुरी लागत रहे।
3: अरे नहीं रे, ये उमर खयाम सहारनपुरी के छोटे भाई हैं। जा तो इनके लिए जरा चाय लेकर आ।
1: ना और कुछ खाने को भी? हाँ
5: और कुछ खाने को भी। इस मिर्जा साहब के पास तो ऐसे आलतू फालतू लोग रोज ही आवत रहे। तुम कहे इनकी खातिर कर रहे हो?
1: अच्छा तो हम आलतू फालतू लोग हैं
5: और नहीं तो क्या।
1: सुन रहे हो मिर्जा?
0: सुन रहा हूँ भाई, ये सब मैट्रिक के बाद सुनना पड़ रहा है।
3: अरे पहले बात को समझने की कोशिश कर, मेरे को फिल्मों में चांस लेना है।
5: तो हमका भी फिल्मों में छोटा मोटा चांस दिलात रहे।
3: हाँ हाँ जरूर दिलाऊंगी। अब जा और जल्दी चाय लेकर आ।
5: अभी लाता हूँ जी, अभी आती।
3: खयाम साहब तो बहुत अच्छे राइटर हैं, मैंने उनकी लिखी हुई कई फिल्में देखी हैं।
0: अरे मगर तुमने अभी मासूम साहब की दूसरी तारीफ नहीं देखी।
1: मियाँ, तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया और तुमको हंसी बनाया।
0: मुझको जवाब बनाया? मेरी ये हमारी शादी में सेहरा कहेंगे, अपने सेहरे की मिठाई इनको मैं खिलाऊंगा और तुम्हें अपने सेहरे की खिलानी होगी।
3: जरूर जरूर। अच्छा तो ये शायर भी हैं?
1: शायर वायर क्या, ये सब मिर्जा साहब की सोबत का असर है कि थोड़ी बहुत बकवास कर लेता हूँ, वरना मैं क्या और मेरी शायरी क्या।
0: अरे नहीं मेरी नहीं, अरे ये बहुत लाजवाब शेर कहते हैं।

0: जरूर सुनवाइए। अरे अब क्या, अस्पताल से चलने के बाद रोज सुनना इनका कलाम। भाई मुमकिन है कि अपने नए घर में जाकर तुम्हारा दिल घबराए, तो इनसे शेर सुनकर तबीयत बहला लिया करना।
1: नहीं, मैं अभी सुनूंगी।
0: हाय
1: प्लीज सुनवा दीजिए ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, भाई सुनवाता हूँ। चलो मियाँ शुरू हो जाओ।
2: मियाँ ये बात है। लो तो फिर सुन।
0: हाँ,
2: अर्ज किया है।
0: क्या क्या अर्ज किया है?
2: मैं कोई गीत गाने को जी चाहता है।
0: हाय हाय हाय बाबा,
2: तरन्नुम लुटाने को जी चाहता है।
0: बाबा बाबा,
1: शुक्रिया। क्या आप लोगों ने कुत्ते के पिल्लों की तरह लड़ना शुरू कर दिया है? वाह शुक्रिया, वाह शुक्रिया, वाह शुक्रिया। कहीं कोई गजल ऐसी सुनाई जाती है?
2: ना तो फिर कैसे सुनाई जाती है, मतलब
1: क्या? जी पहले जरा गुनगुनाइए और फिर तरन्नुम में गाकर सुनाइए।
2: अरे तो फिर यूँ कहिए ना कि गजल नहीं, आप गीत सुनना चाहती हैं?
1: नहीं, मैं यही गजल सुनूंगी।
2: अच्छा लीजिए तो फिर सुनिए। अरे कोई गीत गाने को जी चाहता
0: है। वाह वाह,
2: गीत गाने को जी चाहता
0: है।
2: और तरन्नुम लुटाने को
0: जी चाहता
2: है। अरे जरा पास आओ, गुलाबी मौसम।
0: जरा
2: पास आओ, गुलाबी मौसम। और तुम्हें चूम लेने को जी चाहता, तुम्हें चूम लेने को जी चाहता। और तेरे बदन में ये कैसी महक है,
0: तेरे बदन में ये कैसी महक है,
2: बदन में ये कैसी महक है, जो तुझ में समाए को जी चाहता। लचकती हुई, अरे लचकती हुई नर्म बाहों की
0: हार,
2: लचकती हुई नर्म बाहों की हाले, गले से लगाने को
0: जी चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे क्या तरन्नुम लुटाया है।
1: क्यों क्यों मेरी, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो और मरीजों को देखना है। मैं जा रही हूँ मिर्जा साहब। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग सर।
3: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कहो मेरी, तुम्हारे मरीज का क्या हाल है?
1: ठीक है सर, एकदम फर्स्ट क्लास है।
3: लाओ जरा इनकी रिपोर्ट तो देखें।
1: जरूर।
3: वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि अब इनकी छुट्टी कर ही देनी चाहिए।
1: मेरे ख्याल में तो कर ही देनी चाहिए।
0: डॉक्टर साहब ये आप क्या गजब कर रहे हैं। अरे अभी तो मैं ठीक चल भी नहीं सकता।
3: अच्छा जरा हम भी तो देखें कैसे नहीं चल पा रहे हैं आप। चलिए उठिए और उस दरवाजे तक जाइए।
4: अरे नहीं नहीं नहीं, कोई सहारा नहीं, स्टिक रख दीजिए वहीं पर। और हाँ बिना सहारे के जरिए, शाबाश। हाँ ऐसे ही।
1: मैरी,
3: ये क्या दिल लगी हो रही है मिर्जा साहब?
0: ये दिल लगी नहीं है डॉक्टर, अरे ये तो दिल की लगी है, दिल की लगी।
3: व्हाट यू मीन बाई दिल की लगी? मैं पूछता हूँ ये मेडिकल कॉलेज है या दिल की दुकान? जब जहाँ जी जहाँ सजा कर बैठ गए। चलिए चलिए शाबाश।
0: डॉक्टर साहब चला नहीं जा रहा।
3: अजी मिर्जा साहब कोशिश कीजिए, आप जरूर चल पाएंगे।
0: कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ मगर
3: अजीब अगर मगर से काम नहीं चलेगा मिर्जा साहब। बस बस आप चलते जाइए। हाँ ऐसे शाबाश। हाँ कमन मेरी।

0: Come with me.
1: मैं जा रही हूँ मिर्जा साहब. Bye.
2: मैरी चली गई. अरे भाई मासूम, अब के आना तो कोई अच्छा सा सेंट, बढ़िया किस्म का पाउडर और लिपस्टिक लेते आना.
3: क्या कह रहे हो?
2: अरे मैरी ने फरमाइश की है.
3: मैरी के लिए तो मैं चांद सितारे भी तोड़कर.
4: क्या है ये तो? बहुत छोटी सी फरमाइश है.
2: देखो भाई, मगर कल ये सब चीजें आ जानी चाहिए.
4: कल जो मैं ये फरमाइश अभी पूरी किए देता हूँ. बस ये वो
2: कौन? ओ अब्दुल्ला, कहो मियाँ, खैरियत तो है? ये क्या लेकर आए हो?
5: अजी वो क्या कहते हैं कि आपके लिए शामी कबाब लेकर हाजिर हुआ हूँ. जरा खाकर तो देखिए मुंह मोड़ के.
2: हाँ भाई, जरूर खाऊंगा, जरूर खाऊंगा. मगर पहले ये तो बताइए कि ये कारोबार कैसा चल रहा है?
5: काम की भली फिक्र की हुजूर की दुआ से दुनिया के दूसरे धंधों से बेनियाज, बाप दादा की छोड़ी हुई जायदाद से पेट भर रोटी खा लेता हूँ. मुझे और करना ही क्या है मुंह मोड़ के.
2: अरे भाई देखो भाई, कसम जवानी की तुम्हारे एहसानों के बोझ से इतना दब गया हूँ कि बस पूछो मत. सोचता हूँ कि मैं ये बदला कैसे चुकाऊंगा.
5: मैं किस काबिल हूँ मुंह मोड़ के?
2: अरे भैया खुश रहो, खुश रहो. किसी हकीम ने कहा है कि आदमी ही आदमी के काम आता है.
5: क्यों नहीं?
2: मगर तुमने इंसानियत की हद कर दी भाई. बाबा बाबा जी
5: क्या कहते हैं मिर्जा साहब के वो? मिर्जा साहब, आपसे मेरी एक गुजारिश है. बस मेरा काम कर दीजिए मुंह मोड़ के, निहाल हो जाऊंगा.
2: वो क्या क्या
5: अजी वो मिर्जा साहब, जिस तरह आपका बिगड़ा काम मैंने संवारा है, मेरी बिगड़ी आप बना दीजिए मुंह मोड़ के.
2: कहो भाई कहो, और वो कौन सा काम है भाई? मुझसे जो हो सकेगा तो मैं जरूर करूंगा. भाई देखो, तुम्हारा काम भी मैं ना करूंगा. आ तो लानत है ऐसी दोस्ती पर भाई.
5: वो मिर्जा साहब क्या कहते हैं कि मैं आपसे रिश्ते की बात चलाने आया था मुंह मोड़ के.
2: रिश्ते की? अरे भाई किसका रिश्ते की बात?
5: मैं आपकी आपकी आपकी साहबजादी से शादी करना चाहता हूँ. सोच लीजिए, मेरे जैसा दामाद आपको कहीं नहीं मिलेगा मुंह मोड़ के.
2: हड्डी कहाँ से आ गई?
5: बिला ये हड्डी नहीं, ये तो कमबख्त आपका दांत है.
2: अरे मैं भी तो कहूँ, मेरे मुंह से ये हवा की फुहारे क्यों छूट रही है? अब समझ में आया मियाँ अब्दुल्ला, जिसको तुमने देखा है दरअसल वो हमारी सातवीं बेगम है.
5: सातवीं बेगम मुमोड़ के?
2: और अब आठवीं शादी की तैयारी कर रहा हूँ.
5: मेरा साहब मुझे माफ कर दीजिए, गलत फहमी हो गई. दरअसल अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी. हाँ मुंह मोड़ के.
3: तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मिर्जा साहब?
2: अरे अरे आओ भाई आओ. अब ले आए फरमाइशी चीज है.
3: जी जनाब, सब लेकर आया हूँ. ये देखिए सेंट है, और ये पाउडर, और ये लिपस्टिक है. अरे अजी, मैंने कहा बंदा परवर, मैं किस सोच में पड़ गए? जरा आप हमें भी तो सुनाइए.
2: भाई वो सोच रहा हूँ, कल तो यहाँ से छुट्टी मिल ही जाएगी.
3: और वो मिस मैरी?
2: हाँ, वो भी कल मेरे साथ जाएगी.
3: मीता साहब, मैं मुझे सेरा कब तक पढ़ना होगा?
2: भाई वो बस कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे, और दिन भर मैं सब इंतजाम कर लूंगा, और शाम को दो चार दोस्त जमा करके निकाह पढ़वा लिया जाएगा.
3: अच्छा,
2: और ज्यादा धूम धाम की कोई जरूरत नहीं भैया.
3: तो कल शाम को किस वक्त हाजिर हूँ?
2: भाई वो यही कोई 7 बजे आ जाना. और देखो भाई, मगर ख्याल रहे सेरा जरा बढ़िया होना चाहिए.
3: लाजवाब होगा, लाजवाब. इंशाल्लाह
2: इंशाल्लाह.

0: 本把书上也一下拉住阿姨在开家这是阿姨都那一幕算满哎呀哎
1: 呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎
0: 呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎
2: आपकी रिहाई का परवाना आ गया है।
0: अरे अरे हाँ भाई हाँ, वो तो हमें मालूम है कि कल यहाँ से हमारी छुट्टी हो जाएगी।
2: कल नहीं आज बल्कि इसी वक्त आपको ये बिस्तर छोड़ना होगा।
0: बिस्तर छोड़ना होगा? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा रहा।
1: मतलब मैं समझाता हूँ, मतलब यह है कि इसको कहते हैं टेलकम पाउडर।
2: टेलकम पाउडर
1: जो आपके बदन को नरम और मुलायम बनाता है। और यह है लिपस्टिक, यानी
0: होठों की लाली। इसको लगाने से आपके होठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह अरे खिल उठेंगे। ये भी आप ही के लिए है।
1: और यह है फूलों का सेंट।
2: सेंट?
1: अरे इसको लगाते ही इंसान चमन की सैर करने लगा।
0: अरे ये रश के बाहर भी आपकी बेहद फरमाइश पर मंगाया गया है।
2: मेरी फरमाइश पर? मैंने तो कोई फरमाइश नहीं की थी। खैर जब आप ले ही आए हैं तो रख लेती हूँ। चलिए कमरा खाली करिए।
1: जी खाली कीजिए। क्या मतलब ये?
2: मतलब ये कि आपको फौरी तौर पर ये कमरा खाली कर देना होगा, क्योंकि अभी अभी एक सीरियस मरीज और आ गया है और उस मरीज के लिए हमें ये बेड खाली करना चाहिए।
1: आपको कहना चाहिए था कि अभी वो बेड खाली नहीं है।
2: आई एम सॉरी मासूम साहब, ये बड़े साहब का ऑर्डर है जिसको ठुकराना मेरे बस की बात नहीं थी।
0: अरे भाई तो कोई बात नहीं, और फिर इसमें आज भी क्या है, कल ना सही आज ही सही, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। क्यों मेरी?
2: ओ यस चलिए
1: चलिए मिर्जा साहब।
0: आओ मेरी। अरे मेरी चले
2: कहाँ?
0: अरे भाई घर और कहाँ?
2: कौन सा घर, किसका घर?
0: अरे मैं
2: ये मेडिकल कॉलेज ही हमारा घर है मिर्जा साहब।
0: नहीं नहीं नहीं मेरी, ये तुम कैसी बातें करने लगी? अरे भाई घर जाकर हमें शादी की तैयारी भी तो करनी है।
2: शादी? किसकी शादी?
0: अरे मेरी और तुम्हारी शादी, यानी कि हम दोनों की।
2: ओह मिर्जा साहब, मैंने तो आपका दिल बहलाने के लिए मजाक किया था।
0: मेरी देखो मजाक ना करो। अरे ये दिल लगी अच्छी नहीं होती।
1: अरे आप दिल लगा बैठे मिर्जा साहब। अरे दिल लगी करना तो मतलब यह है कि इनका पैदाइशी हक है।
2: पैदाइशी हक ना सही, लेकिन पेशे के एतबार से हमारा ये पहला और आखिरी फर्ज है कि हम अपने मरीजों का हर तरह से दिल बहलाएं और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें।
0: तो क्या मेरी, क्या वाकई तुमने दिल बहलाने को शादी का मजाक किया था?
2: हाँ ये सच है कि मैंने एक मजाक किया था।
0: अरे आखिर क्यों?
2: क्या करें, हमारा पेशा ही ऐसा है, कोई हमें माँ कहकर बुलाता है तो कोई बेटी, मगर ज्यादातर लोग हमें सिस्टर ही कहकर बुलाते हैं, और बहुत से मरीज तो इस कदर कमजोर और लाचार होते हैं जो उठकर बैठ तक नहीं सकते और ना ही चल सकते हैं, जिनकी देखभाल हमें एक फर्मा बरदार साथी की तरह करनी पड़ती है। समझे?
0: जी समझ गया हूँ, समझ गया।
2: बस यही हमारा धर्म है जो हमें अपने फर्ज की याद दिलाता है। और हाँ, आप जैसे कई सरफिरे आशिक भी आते हैं।
0: अच्छा, क्या, क्या, क्या?
2: जो सिस्टर कहते हुए झिझकते हैं वो हमें अपनी महबूबा समझ बैठते हैं।
0: वो बात ये है कि दरअसल बातों में गलत फहमी हो गई।
2: मगर एक नर्स के नाते हमें ये रूप भी बदलना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर ये गुजारिश करती हूँ कि आइंदा इस तरह के ख्यालात यहाँ लेकर मत आइएगा।
1: वाह क्या उपदेश दिया है, मतलब यह है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। चलिए मिर्जा साहब, वो तो गई, अब कोई और घर तलाश कीजिए।
0: क्यों जख्मों पर नमक छिड़कते हो यार?
1: मतलब यह क्या,
0: उसने तो मेरी तमाम तमन्नाओं पर पानी फेर दिया।
1: और

0: मेरी मिठाई पर भी
1: अच्छा
0: चलो
1: अच्छा,
0: मेरा
1: अच्छा,
0: चलो
1: अच्छा,
0: चलो
1: करो दीवार पे हसरत की नजर रखते हैं
2: अरे खुश रहो अहले चमन हम तो सब

अभी आप सुन रहे थे ड्रामा जिसका उनवान था दिल लगी। तहरीर जनाब शम्स तबरेज की थी और पेशकश थी प्रेम वोरा की। हिस्सा लेने वाले फनकार थे चांद नारायण सक्सेना, एसबी लाल गोयल, टीआर मेहता, एसके बीटर, कमल कुमार वर्मा और सपना सैनी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। वक्त हो गया है फरमाइशी फिल्मी नगमों के प्रोग्राम का, तो पेश है प्रोग्राम तमिले इरशाद।

जी हाँ, मैं भी हाजिर हूँ आपकी मेजबान सबीहा। तमाम सुनने वालों को मेरी जानिब से आदाब, अस्सलाम वालेकुम और प्यार भरा नमस्कार। पहला नगमा आप सबकी ही फरमाइश पर यह सुनवाया गया, नाम शामिल कर लेते हैं अपने तमाम सुनने वालों के। यहाँ पहला जो ईमेल है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा का आया है, गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से ये हमारे साथ शामिल हुए हैं। कोई भी नगमा सुनना चाहते हैं, अभिजीत गौहाड़कर राही और उनके साथ में मिसेज सरिता गौहाड़कर, अर्जुन का भी ईमेल हम तक पहुंच गया है। कहते हैं आदाब नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूं अभिजीत जी, उम्मीद करती हूं कि आप भी अच्छे होंगे। और सरिता जी को मेरी तरफ से कहिएगा प्यार भरा नमस्कार। इसके बाद अगला है इंदर चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम का ईमेल, एक नगमे की फरमाइश है। एक और आदाब के साथ अगला ईमेल है, कोई भी खूबसूरत नगमा छत्तीसगढ़ से है, ये बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता हैं, उनके साथ में कई और लोग भी हैं। कहते हैं कैसे मिजाज, काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहूंगी कि बाद मुद्दत उसे देखा लोगों, वो जरा भी नहीं बदला लोगों, खुश न था मुझसे बिछ

चढ़कर वो भी उसके चेहरे पे लिखा था लोगो। मुलाकात बेशक आपसे बड़े दिनों के बाद हुई है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बदली हूँ। आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ। आई लव यू ऑल। अगली ईमेल या फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन है? बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन और आशीष राजा का ये ईमेल हम तक आया है। कहते हैं नमस्कार, रखवाला फिल्म के नगमे की फरमाइश इन्होंने की है। बहुत शुक्रिया आपका तुलसी मस्किन जी ईमेल करने के लिए। अगला ईमेल आया है। आदाब, कैसे मिजाज, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल। कौन है? सुब्रत चौधरी कोलकाता से हैं। कोई भी नगमा कहते हैं अपनी च्वाइस का सुनवा दीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नगमे हम आपको सुनवाते रहेंगे। अगली पेशकश है मुकेश की आवाज में, समाप्त कीजिए।

और मैं भी ढूंढती हूँ आप सबको ख्यालों में, आपके ईमेल्स मुझे सपनों में दिखाई देते हैं। सच्ची मुच्ची बात बता रही हूँ आपको, मंसूरी रेडियो लिस्नर क्लब है बाजार रोड मुंगी सापुर में, वहां से है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, करुणिसा और साथ में उनके शबिस्ता है। इसके बाद अगला ईमेल है अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा मेरी हम नाम और उनके साथ में है अनस और रेहान। हेलो सबीहा, आयशा सबीहा कैसी हैं आप, उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी आप। इसके बाद अगला है ईमेल हमारे पास, नमस्कार कह रहे हैं मेरी तरफ से भी आपको प्यार भरा नमस्कार, गौरी ख्वाहिशमंद है गौरी नगर इंदौर से, आनंद कुमार कामले, रेखा कामले और उनके साथ में राखी कामले हैं, कहते हैं किसी भी नगमे में हमें शामिल कीजिएगा। नगमे में शामिल आप हो गए हैं अब, आई होप कि इस वक्त आप सुन भी रहे होंगे आनंद कुमार जी, और शिकायत नहीं रहेगी आपकी कि हमें तो शामिल नहीं किया है आपने। नौहर राजस्थान से नरेंद्र सुधार मनोज सुधार का ईमेल भी हमें मौसूल हो गया है। इसके अलावा ये है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कपिल चौहान उनके साथ में है, पांडु चंदन उषा चंदन और प्रतीक्षा का भी ईमेल हमें मिल गया है, और ये इन्होंने हमें कुंभार गली कोल गांव से ईमेल अपना भेजा है। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें सुन रहे हैं। तमिल एशियाई प्रोग्राम आकाशवाणी की एयर उर्दू सर्विस से एयर हो रहा है। और अगला जो हमारे पास है गांव कलाना राजस्थान से है, ये सेवी क्रम और उनके साथ में है कंड वसारा सचिन और योगेश है, जो सरनेम है आपका वो मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, इसके लिए मैं माजे चाहूंगी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा हमारे रेगुलर और बहुत ही पुराने लिसनर, साथ में उनके बबीता बोत और निखिल का भी ईमेल मिल गया। शबनम अकरम तबरेज भी आ गई है जनाब, इन्होंने ठिकरी मध्य प्रदेश से कहा आदाब, शौहर अकरम का भी कहते हैं काफी अरसे के बाद सुन रहे हैं आपको। जी शबनम, मैं आई भी बहुत अरसे के बाद हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी होंगी प्यारी दोस्त, सदा खुश रहिए, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारा प्यार। खुलूस भरा आदाब आया है, आपकी आवाज हम लोगों को बहुत मीठी लगती है। अच्छा जी, ये कौन है, ओम प्रकाश राय, उनके साथ में मिसेज उषा रॉय और अमित कुमार राय हैं, और इन्होंने हमें कहां से मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में नगमे की फरमाइश भेजी है, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। सबका शुक्रिया अदा करूंगी ओम प्रकाश एंड फैमिली।

ये आपके ईमेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पटियाला से हमारे पास आया है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और निहारिका का ईमेल। कहते हैं किसी भी नगमे में हमें शामिल कर लीजिए। नासिर शेख, नाजिया, नासिर, साजिद और शाहिद हैं, ये हमें श्रीरामपुर महाराष्ट्र से ईमेल करते हैं। फातिमा कॉलोनी है इनकी कॉलोनी का नाम। ये भी कहते हैं कि कोई भी नगमे में सुनवा दीजिए हमारे नाम। तो सुनवा दिया, आपके नाम शामिल हो गए हैं। मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साथ में है मोहम्मद हसनैन पवार, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से शामिल हुए हैं, आदाब कह रहे हैं, पुरखलूस आदाब मेरी तरफ से भी आपको रफीक भाई। उम्मीद करती हूं कि आप अच्छे होंगे। और कुंभार गली से प्रतीक्षा चंदन है, शुक्रिया कह रही है, उनके साथ में पांडु चंदन है, शुक्रिया। नई दिल्ली से एक ही मिला है टैगोर गार्डन से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा हैं, कहते हैं शुक्रिया मेहरबानी के साथ। आपका भी साहब बड़ा शुक्रिया है मेरी जानिब से, आपको भी मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, शुक्रिया, करम नवाजिश, मेहरबानी कि आपने हमें भेजा। और आप तो चूंकि मेरे शहर वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। अदीबा नाज, फातिमा और साथ में नसरीन अंसारी हैं, और भी कई सारे नाम इन्होंने भेजे हैं। सिटी मुंबई से हैं ये, कहते हैं कोई भी गीत प्लीज तो लीजिए सुनिए ये वाला गीत।

देखिए साहब, मेरा कसूर तो था ही नहीं। सॉन्ग्स में भी बाबू शब्द का यूज होता है, तो अगर मैं कह देती हूँ अपने लिसनर्स को, अपने प्यारे सामिन को बाबू, तो फिर क्या जाता है भला किसी का। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये है रजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन रजावत, राज मधु रजावत और साथ में उनके राशि हैं। कहते हैं काफी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, शायद इस साल में ये आपका पहला तामिल इरशाद है। जी जनाब, इरशाद बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये मेरा पहला ही तामिल इरशाद है इस साल का। अगला ईमेल, और मेरी तरफ से अपने परिवार में सभी लोगों को नमस्कार बोल दीजिएगा प्लीज, रजावत फैमिली के लिए है मेरा नमस्कार। अगला कौन सा ईमेल है, बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव है, कहते हैं कोई भी नगमा गुड इवनिंग। नहीं जी, नगमे के बोल इन्होंने लिखे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ईमेल भेजा है। यहाँ पर अब आए हैं मंजू साय संभल से, छोटे अंसारी आलम अंसारी और असद अंसारी जी का, कहते हैं दुआ सलाम जी। ओहो, हमारी तरफ से भी दुआ भी और सलाम भी आपको, बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आप सबके लिए। और ये क्या लिखा है?

आलम। अच्छा, आम के पन्ने की जानकारी मिली। ओके, आम के पन्ना की जानकारी यानी जो हेल्थ टिप्स हुए थे थोड़ी देर पहले उसके बारे में इन्होंने बताया। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मैं बताऊं आपको कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल, अलग अलग आवाजों में अच्छा भी लग रहा है। शास्त्री नगर भीड़ शहर से किशन सपकाल जी, कैसे मिजाज है आपकी? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? साथ में उनके आशा सपकाल और विशाल भी है। उर्दू, प्यारी उर्दू में आज तो ईमेल इन्होंने भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। और अगला जो ईमेल हम तक आया है ये किसका है? सभी हरी आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुरानी भलाई से हैं ये तीन, चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद से देखिए, बेगम हमीदुन से देखिए, उनके साथ में शाहनवाज एंड फैमिली है। तो मेरी जानिब से भी आपको आदाब, उम्मीद कहती हूँ सब खैर वाफियत होगी आपके फैमिली में और मजे में होंगे सभी लोग। खुदा करे कि आप इसी तरह खुश और खुर्रम रहें। गांधीबाग अंकल ऐसे रमेश कटनकर वैशाली हैं और साथ में है इनके धनंजय कटनकर। संगम फिल्म का नगमा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। ओके शुक्रिया। कमल इरशाद के लिए कोई भी अपनी पसंद का नगमा सुनवाइए। अकोट से कह रहे हैं विनायक बोंडे, उनके साथ में मिसेज मंगला बोंडे, शुभम है। बहुत बहुत शुक्रिया भी इन्होंने लिख दिया है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये कौन है? ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से शामिल हुए हैं। किसी भी गीत में कहते हैं शामिल कर लीजिए, मैंने तो साहब आपको शामिल कर लिया। अब मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि इस वक्त आप सुन भी रहे हों ताकि आप ये न कहें कि हमारा नाम तो रह गया है। तंगवानी से है मीर हसन निंदवानी, यार मोहम्मद खान निंदवानी, साकिब हुसैन निंदवानी और उनके सभी दोस्त इस वक्त हमें सुन रहे हैं। बराह करम को इन सबका शुक्रिया, निंदवानी परिवार का, फैमिली का। अब चलते हैं आगे, बराए करम कोई भी गाना शामिल में शामिल कीजिए। आदाब, पुरखलूस आदाब, उर्दू सर्विस के तमिल इरशाद प्रोग्राम में। जी हाँ, यवतमाल से अनिल उषा बुरांदे, अनुश्री बुरांदे और साथ में धनुश्री बुरांदे भी हैं। शुक्रिया। हिंदी और उर्दू में तालमेल बिठाते हुए खूबसूरत गुलाबों के साथ जो ईमेल आपने हमें भेजा बुरांदे फैमिली, उसके लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। और ये तमाम की तमाम बातें जो होती है ना, ये इस बात की गमाज हैं। गमाज मतलब ये दर्शाती हैं इस चीज को कि आप लोग कितनी मोहब्बत करते हैं उर्दू सर्विस से। लेकिन साथ ही साथ मैं भी बता दूं आपको कि उर्दू सर्विस भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी मोहब्बत आप करते हैं। अगर तराजू के पर्रे में तोलेंगे ना तो हमारा पर्रा ही भारी बैठेगा, आपका पर्रा जो है वो नहीं बैठेगा भारी इतना ज्यादा। पंजाब रामटेके यशोधरा और उनके साथ में श्रव्या है, इन्होंने सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से हमें अनपढ़ फिल्म की फरमाइश के साथ अपना ईमेल भेजा है। फारा खान, आयशा खान और साथ में सरोज है। उमर खेर से इनका ईमेल आया। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल और साथ में भानु प्रकाश कहते हैं दिन ढल जाए हाय रात न जाए। ओहो, तो वो जलाइए ना, क्या कहते हैं उसको, वो जो मॉस्किटो भगाने के लिए होता है वो, और कूलर वगैरह अच्छे से चलाइए, थोड़ा गर्मी का मौसम है। इतनी मस्त नींद आएगी कि आप सोचेंगे कि अरे कब दिन ढल गया, कब रात हो गई, कब सुबह हो गई, फिर वही सारे काम शुरू हो जाएंगे। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाबख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रही मुन्ना कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज जी जनाब, तस्लीमात तस्लीमात, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना ईमेल भेजा, दिल खुश हो गया।

देखिए जब हमने इसको नगमे में सुना ना कि धड़कन बढ़ी तो सांस की खुशबू बिखर गई तो कितना अच्छा लगा, लेकिन अब आप सोचिए कि अगर खुदा ना खास्ता वैसे धड़कन बढ़ जाए तो सांस की खुशबू खुशबू तो क्या कहने, ये तो कुछ भी नहीं सोचेगा इंसान, सब परेशान एकदम से हो जाएंगे। खुदा हम सबको आप सबको भी महफूज रखे हर बला से, हर बला से। चक 5 MD पत्रोड़ा से है मंगल यस मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशन जनागल और उनके साथ में अंकुर जनागल और कई नाम भी आपने भेजे हैं, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जब इतने अरसे के बाद आऊं ना तो एक चीज बहुत अजीब नहीं मतलब वो हमारी कमी होती है, क्योंकि इतने सारे नए लोगों के नाम जुड़ चुके होते हैं कि मुझे लगता है कि ये मैंने पहले कभी नहीं सुना नाम, जैसे अभी अभी मैंने पढ़ा। खैर, कालका से शुभचंद्र बजाज हैं, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हैं, ये तो बहुत पुराने हमारे लिसनर हैं। शुभचंद्र बजाज जी, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा आदाब नमस्कार, कहते हैं किसी भी नगमे में शामिल कीजिए। जी बिल्कुल। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा का ईमेल भी हमें मिल गया, सेक्टर न जाने कौन सा लिख दिया। अरे भाई आप अंग्रेजी और या हिंदी में लिखिए, ये वाली जो आती है ना गिनती, ये मुझे समझ में नहीं आती, सेक्टर्स जो है जो भी है वो। बहरहाल टीडी मल्होत्रा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रतीक को मेरी तरफ से हेलो कहिए, ऋतिक को भी हेलो कहिएगा, आपका ईमेल मिल गया है। कहते हैं कि दीवाना हुआ बादल ये वाला नगमा सुनवाइए। अरे कहां अभी टीडी मल्होत्रा जी, कहां दीवाना हो रहा है बादल, अभी तो तेज तेज हवाएं हैं जो कि काफी गर्म है, कभी कभी बीच में बारिश आती तो है हल्की हल्की सी, न जाने किस तरह की बारिश है, लेकिन दीवाना नहीं होता उसमें भी बादल, जरा सा वो छिड़काव कर देता है और निकल जाता है। दीवाना होता है तो वो तो झूम के बरसेगा ना, फिर हम भी मुंतजिर हैं, आप भी मुंतजिर हैं। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर है, उनके साथ में वंदना गौहर है, जयपाल यादव भी है, आदाब अस्सलाम वालेकुम आया है, डॉक्टर दबीरुल हसन की जानिब से है, उनके साथ में बेगम शबनम है और साथ में भुवन प्रकाश गौतम जी को आप क्यों लेकर आए दबीरुल हसन जी, ऐसी ऐसी बातें नको नको करो जी, अपना ही ईमेल भेजो, बस अपने ही नाम के साथ शामिल हो जाए वही काफी है आपके लिए। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू जी, मैं लाल रजाक, निम्नी, शिवम, सतीश। अच्छा जी, ये एक नया ट्रेंड देख रही हूं मैं कि ज्यादा नाम शामिल करने के लिए, मेरा जैसा जो बंदा कभी कभी आता होगा वो तो इस झोल में फंस जाएगा ना आपके, कहीं कोई कॉमा नहीं है, कहीं ये नहीं पता चल रहा है कि नाम कहां शुरू हो रहा है, लेकिन मुझे ये आइडिया हो गया है बहुत सारे नामों को गुंजलक कर दिया गया, मतलब मिला के लिख दिया गया है ताकि मैं सबके पढ़ दूं नाम, लेकिन मैं भी सबीहा हूं, मेरी उर्दू सर्विस ने अच्छी ट्रेनिंग की है, तो चलिए आगे बढ़ती हूं। प्रभुदास कुटेचा का ईमेल हम तक पहुंचा है और इन्होंने कहा कि पुरखलूस आदाब, आपको भी मेरी तरफ से कुटेचा जी आदाब। पंख होते तो उड़ आती रही, ये नगमा सुनने की फरमाइश चंडीगढ़ सिटी से आई सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की जाने से धन्यवाद, दिल के साथ भेजा है इन्होंने। ओ गॉड, बिमला जी को मेरी तरफ से ये प्यारा लाल लाल सा दिल जो है दीजिएगा। सतीश भाई आपको मेरी तरफ से प्यारा आदाब, उम्मीद करूंगी कि मैं आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवा दूं, अगर कोशिश रहेगी मेरी। और मैं हूं सबीहा और आप सुन रहे हैं तमिल इरशाद प्रोग्राम, जो कि अब बस थोड़ी ही देर में स्टॉप हो जाएगा जरा सी देर के लिए। दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह हैं मुंडी चक भागलपुर बिहार से और नगमे की फरमाइश है आंखें फिल्म के लिए इनकी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमिल इरशाद प्रोग्राम में आदा अफगनौर से आदिर कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली कहते हैं तहे दिल से शुक्रिया, मेरा भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से शामिल हो रहे हैं, कंडला बंदरकर से जगदीश हरी पूजा और पायल का भी ईमेल आ गया है, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला जो ईमेल है जनाब आदाब और अपनी पसंद का कोई भी नगमा सुनवाइए, ये हैं योगेंद्र नायक और कासगंज जिला कासगंज यूपी से ये शामिल

हो रहे हैं हमारे ईमेल अपने हमारे प्रोग्राम में अपने ईमेल के जरिए। छोटी पुलिया मुंबई कर्जे से हैं अहमद भाई फुलवाले, इकबाल अहमद फुलवाले और लखमनिया जिला बेगूसराय से भी इन्होंने कुछ नाम इसमें भेज दिए, शमीम अहमद फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले और उनके अहले खाना। इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसा तो ना कीजिए, उनको अपना ईमेल अलग से भेजने दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा जब वो खुद से ईमेल करेंगे। और नर्मदा पार्क मंगल वेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल और साथ में उनके मुजाहिद और साथ में नदीम भी हैं, कहते हैं आदाब अस्सलाम वालेकुम सबीहा जी, सबीहा बाजी, वालेकुम अस्सलाम। कोई भी नगमा कहते हैं आप अपनी पसंद का सुनवा दीजिए, बिल्कुल जरा सा इंतजार कर लीजिए। और ये है खान मंजिल गंदरबार से आगा खान आगा और बेगम निदा खान बेबी अमल खान, कहते हैं हमारा किसी भी गीत में नाम शामिल कीजिए, मेहरबानी होगी, मेहरबानी नहीं हक से आइए, क्योंकि ये आप ही लोगों का प्रोग्राम है, आप लोग हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं तो हम तो कहीं हो ही नहीं सकते। तो बिल्कुल आपका हक बनता है नगमे में शामिल, समझ लीजिए कि आप हो ही गए हैं। कमल पाठक साथ में ये है अनारकली बाजार जगराव से, उनके साथ में है कमल पाठक, सुनील पाठक और बेबी गव्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी तरफ से आदाब अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी। और अब एक ईमेल लेते हैं उसके बाद। ओके सबिया कहते हैं आम का पन्ना नहीं आम का पना हो जो गर्मी में मुफीद होता, रही पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। कहते हैं कि हीरे के लिए मशहूर है एमपी में, ये आदि हैं फही मंसूरी की ईमेल आईडी से ये भेजा गया है। ओके मैंने तो बात की थी जीनत अमान और देवानंद साहब का, आई थिंक ये नगमा है हीरा पन्ना फिल्म से, तो काफी ट्रेंडिंग है आजकल। खैर आप बने रहिए हमारे साथ अगले नगमे की तरफ, फरमाइश थी हमारे पास, एक लास्ट फरमाइश लेते हैं उसके बाद ये नगमा सुनवाते हैं। ये थे कौन थे, पुराना तालाब डुमराव से वली उल्ला अंसारी और साथ में असमानाज अंसारी। और अब ये फरमाइश, उसके बाद लौटती हूँ मैं जल्दी से, अफसाना लिख रही हूँ दर्द फिल्म का, लेकिन नगमे में बिल्कुल भी दर्द नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मोहब्बत जवां है।

0: में से कोई भी नगमा या फिर अपनी पसंद का कोई सदाबहार नगमा सुनवाइए। मेरठ कैंट से हैं ये, इनके नाम है दिग्दर्शन और कविता गौड़। चार पांच इन्होंने हमें जो नगमे हैं उनकी लिस्ट भेजी है। दिग्दर्शन और कविता दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर समय रहता है, वक्त मिलता है तो आपके नगमे जरूर शामिल होंगे, लेकिन आपके प्यारे ईमेल ने दिल खुश कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई तो बाहर आई, काफी दिनों के बाद तामिल इरशाद ने, कौन है, मनोज जेठवा, हर्षा और बोराव के नगर श्रीरामपुर से इनका ईमेल हमें मिल गया है। मनोज और हर्षा दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने खूबसूरत अंदाज का जो ईमेल आपने भेजा, रंगीन फूलों से सजा हुआ, इसे देखकर मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो गया है। नमस्कार आप सबको मेरा। अगला ईमेल किसका है, रिंग रही छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, तू प्यार का सागर है, मन्ना डे की आवाज में नगमा सुनने की फरमाइश है। इसके अलावा गुवाहाटी असम से हैं हरिणा पांड्या, नरिन पांड्या, वीरेन पांड्या, इन्होंने कहा किशोर दा की आवाज में, किशोर और आशा की आवाज में कोई भी नगमा सुनवा दीजिए, बहुत शुक्रिया। ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश शर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और उनके साथ बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। एक नगमा लता मंगेशकर की आवाज में इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का भी। ताज मोहम्मद अंसारी हैं प्यारी बाजी, हमने अपना नाम सुन लिया, उसके लिए शुक्रिया। ओ ओ, तो इस बहाने से आप आए हैं दोबारा। खैर मकदम। अब यहां पर अब हम रुकेंगे साहब। मुझे मालूम है, अंदाजा है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हमारा नाम क्यों नहीं आया, क्या कर रही हो सबीहा, कहीं इग्नोर तो नहीं कर दिया, कहीं छोड़ तो नहीं दिया। बिल्कुल नहीं, कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करें। लेकिन यहां पर खबरें बड़े सगीर की, आजम भाई मुझे देख रहे हैं कि कब ये मुझे फायदा देंगी और कब मैं लोगों को खबरें सुनाऊंगा। तो चलिए अब हम सुनते हैं खबरें बड़े सगीर से।
1: ये आकाशवाणी है, खबरें बड़े सगीर से मोहम्मद आजम खान के साथ। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में AIADMK में फूट पड़ गई है। 30 मेंबर SMP में मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय की टीवी के हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला इख्तियार की हामिल एक कमेटी तश्कील दी जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़रा खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों और अमरीका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। और बैडमिंटन में सित्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी तहकीकती ब्यूरो CBI ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NET UG 2026 के मुबैना पेपर लीक के मामले में एक केस दर्ज किया है। एजेंसी ने वजारत तालीम के आला तालीम के महकमे की जानिब से मौसूल एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर यह मामला दर्ज किया है। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि उसने NET UG इम्तहान मुनक्द किए जाने के सिलसिले में मुबैना बेजाबतियों और पेपर लीक हो जाने के मुतालिक इलखिलाफ वर्जियों के साथ एक FIR दर्ज की है, जिसमें मुजरिमाना साजिश, जालसाजी, मुजरिमाना एतमाद शिकनी, चोरी और सबूतों को खत्म करने की कोशिश और इम्तहानात में नामुनासिब तरीकाकार इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक अवामी एक 2024 के तहत खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। नई दिल्ली में नेट इम्तहान की मनसूखी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के DG अभिषेक सिंह ने बताया कि NTA तलबा के लिए दोबारा इम्तहान मुनक्द करेगी। ये मुनसिफाना तरीके से मुनक्द किया जाएगा और दोबारा इम्तहान के लिए कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी। इससे कबल आज दिन में NTA ने इस माह की 3 तारीख को मुनक्द किए गए NET UG 2026 इम्तहान को मनसूख करने का फैसला किया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस की खसूसी कार्रवाई से मुतालिक ग्रुप SOG ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। SOG ने कल एक मुबैना सरगना को जयपुर से हिरासत में लिया था, जिसका नाम मनीष बताया जाता है। इससे कबल जराये के मुताबिक राजस्थान पुलिस SOG ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मुबैना साजिश रचने वाला सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार शामिल है। इसके अलावा अगले दिन नीट का इम्तहान

0: भारत में 27 खिलाड़ी पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद किए जाने से मुतालिक खबरों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा, इन खबरों से इस बात की तस्दीक होती है जो पहले से मालूम था। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में एक मखसूस मुकर्रर तालमेल की गई कार्रवाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की शाये वाली दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और उसमें मदद फराहम करने वालों को नेस्त व नाबूद करना था। खास खबरें एक बार फिर। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में AIADMK में फूट बढ़ गई है। 30 मेंबर असेंबली में मुश्तमिल बड़ा हिस्से विजय की टीवी की हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला इख्तियार की हामिल एक कमेटी तश्कील दी जो मुल्क भर में अदालतों की जिम्मेदारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहम मफाद के आलमी इलाकाई मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और बैडमिंटन में सित्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर अब आ गए हैं हम फिर से तमिल एशियाड प्रोग्राम के कुछ और नगमों के साथ।
2: मगर लगता है कुछ ऐसा

एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। इन लाइन के साथ ये हमारे पास ईमेल है सबीहा खानम फरीदा बानो और ईसा खातून और ये कहाँ से हैं? चमनपुरा उदयपुर से। इन्होंने रफी साहब के नगमे की फरमाइश के साथ ईमेल भेज दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नए नए से नाम लगे ये भी मुझे मोहम्मद सईद अब्बासी निखत परवीन अब्बासी शाहनवाज और सरफराज का भी ईमेल आ गया। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से शामिल हुए हैं। एक रफी साहब के नगमे की फरमाइश के साथ इनका ईमेल आया है। कैसे हैं आप सईद अब्बासी भाई? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और बाप रे बाप फिल्म के नगमे की फरमाइश कौन कर रहा है? तमिलेशाद में सिटी सेंटर खंडवा से हैं ये भाई मनोज सेन, उनके साथ में पूनम सेन और दीपक सेन भी शामिल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का भी। शबीर हुसैन शादा सुन और साथ में है मुझू बाबा और इन्होंने सब्जी मंडी बुलडाना से अपना हाय हेलो के साथ नमस्कार आदाब के साथ ईमेल भेजा है। शबीर हुसैन भाई आपका बहुत शुक्रिया ईमेल भेजने के लिए। उस्मान खत्री रिजवान खत्री अब्दुल गफ्फार खत्री शुक्रिया कर रहे हैं। गुगाव जिला खरगोन मध्य प्रदेश से शामिल हुए हैं। और अगला जो ईमेल है हमारे पास गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान की

का सहारा। अच्छा सा प्यारा सा नगमा था ये, छाया फिल्म से आप ही की रिक्वेस्ट पर था। अगला जो ईमेल है ये है रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो और अलीजा नायाब और लड्डू। प्यारा नाम है बहुत ही, लड्डू, एकदम मिठास घुल गई। जैसे शाहरुख, फारूख और शबनम और घर के सभी लोग हैं, शुक्रिया के साथ शामिल हुए हैं। कहाँ से, लेकिन ये तो लिखा होता। अच्छा लिखा है जय विहार नजफगढ़ से ये शामिल हुए हैं, शाहरुख, फारूख और साथ में शबनम, और सबको मेरी तरफ से प्यारा रसगुल्ला जैसा मीठा मीठा आदाब और आपका भी शुक्रिया। हसु बाबा, मोहम्मद हसनैन, साफिया, अरहान, खोखर शामिल हो गए हैं, खंडवा, मध्य प्रदेश से इनका नगमा मतलब फरमाइश हम तक पहुंची है। कहते हैं हमारी तरफ से आदाब। कोई भी सदाबहार नगमा, ये भी सदाबहार था आई थिंक, जहां तक मुझे याद है सुनील दत्त साहब की फिल्म है। ओ माई गॉड, सुनील दत्त साहब द हैंडसम हंक। अगला जो ईमेल हम तक पहुंचा है जवाहरनगर उदयपुर से, बाबू भाई, भारती देवी दोनों शामिल। बाबू भाई कैसे हैं आप, खम्मा घड़ी और जय विहार नजफगढ़ से मैंने अभी अभी शामिल कर लिया है। अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, इन्होंने हमें नागचंद रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अपना ईमेल भेजा एक नगमे की फरमाइश के साथ। और अगला ईमेल किसका है, मस्जिद कुबा गंज डुंडवारा से अलीम सिद्दीकी और अहले खाना की जानिब से ये ईमेल हम तक आया है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलीश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष हैं, कहते हैं अब मास्टर नहीं बड़ा हो गया। ओ तो मनीष पवार बोलूंगी मैं भी। ओके मनीष, हाउ आर यू जेंटलमैन। और कहते हैं मेरी तरफ से आदाब, लक्ष्मी प्यारे के संगीत के दीवाने आ चुके हैं, कान ध्यान मन सब उर्दू सर्विस पर लगाकर। बिल्कुल, मैं भी यही अपने तमाम सुनने वालों से उम्मीद करती हूँ। अच्छा जब कान और ध्यान की बात हुई तो यहाँ मैं उर्दू सर्विस के चाहने वालों से एक बात कहना चाहूंगी। उर्दू सर्विस बीच बीच में अभी कुछ ही दिनों से कुछ नए नए प्रोग्राम एयर कर रही ओकेजनली किसी खास दिन के हवाले से, तो उसके लिए हम अनाउंसमेंट भी करते हैं तामिल शाद में कि कल आप ये वाला प्रोग्राम सुनिएगा इस मौके की। जैसे पिछले दिनों अस्थमा डे था, उसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम हमने तरतीब दिए और नशर भी किए। आपके फीडबैक के हम मुंतजर रहते हैं कि आप उस खास प्रोग्राम के हवाले से हमें इसी तामिल शाद वाले ईमेल पर ईमेल करें प्रोग्राम इंचार्ज के नाम, ताकि कुछ और बेहतरी की कोई गुंजाइश निकले। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें, गांधी चौक बाड़मेर वाले भी और तमाम सुनने वाले भी, कि हमें आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो याद रहेगा ना आपको। मोटारा बाजार से हैं बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, ओके नया सा नाम है ये एकदम, शेख वजीर हैं वो तो मैं समझ गई, और उनके साथ में कई और शेख नहीं है, शेख एक और ही है जो सोहेल हैं, बाकी सब खानों का इन्होंने बहुत सारे नामों के साथ ईमेल भेजा है। बहुत शुक्रिया, दिल ही तो है फिल्म के नगमे की फरमाइश थी उमरानी, अजनबी बेबी जोई भी अजनबी, और डोली देलदार जाटव भी हैं, ये जेल रोड रायगढ़ से शामिल हुए हैं। अजनबी फैमिली को मेरी तरफ से भी अजनबी सा, वो एक नगमा जहन में गूंज रहा है, क्या है किशोर दा का, अजनबी से बन के करो ना इशारा। तो अजनबी फैमिली, आपके जो निक नेम है या जो भी आपने रखा है पेन नेम है, अच्छे लगे मुझको बहुत ही ज्यादा।

बहुत शुक्रिया। साबरा शबाना और रईसा खंडवा की तीनों बहुओं का आदाब आ गया है। कहते हैं हम भी मुंतजिर हैं आपकी महफिल में। ओहो, तो हमारी महफिल में किस्मत आजमा कर आप भी देखेंगे। देख लीजिए, नाम तो शामिल हम कर ही लेंगे, आप भी क्या याद रखेंगे। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान हसीना बानो, और ये मैंने पढ़ा था शायद, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगला ईमेल जो हम तक आया है, नहीं आया है कहीं से भी, मैं रिफ्रेश करूंगी, तब तक आपको सुनवाऊंगी एक अगला नगमा जो आप ही की रिक्वेस्ट पर है, मुकेश और आशा भोसले।

जनाब नगमा आएगा इसके बाद राजेश खन्ना जी का, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ईमेल शामिल कर लेती हूँ। ये अगला जो ईमेल है हमारे पास गांधीग्राम गुजरात से आया है, प्रवीण सोनी, श्रीमती कलावती सोनी और प्रथम सोनी की जानिब से बहुत सारे इन्होंने गुलाब भेजे हैं सबीहा बाजी की खिदमत में। और बाजी इतनी खुशी बिल्कुल कि बाजी की जगह लिख दिया है हाजी सबीहा हाजी उफ उफ उफ उफ, उफ। सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना और उनके साथ में और भी कई लोग हैं। एमएलबी रोड ग्वालियर से इन्होंने हमें अपना ईमेल भेजा है। जमाल गोटा की चाय कौन भेज रहा है? राजकोट गुजरात से मेरी प्यारी सखी, यह है रश्मि पांड्या। मुझे जमाल गोटा की चाय पिलाओगी रश्मि? सोचो तो जरा, कितने दिनों के बाद तो मैं आती हूँ, कभी सालों में एक बार जमाल गोटा की चाय तुम्हारी पी के तो बस हो गया मेरा काम। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। वैसे मुझे पता है रश्मि की जमाल गोटा की चाय हम दोनों मिलकर किसको पिला सकते हैं। सहारनपुर से आशु नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली का ईमेल हंसता मुस्कुराता आ गया है। अस्सलाम वालेकुम आया शमसुल हक और साथ में है उनके फातिमा, दोस्ताना फिल्म के नगमे की फरमाइश कर रहे हैं और किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कर लीजिए। ये जफर मौजम शेख हैं, उनके साथ में फलक हैं और ये इन्होंने हमें नई दिल्ली से अपना ईमेल भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह शिंदा, जसवीर और सीता हैं, अपनी पसंद का कहती हैं कोई भी नगमा सुना दीजिए। ओहो एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, गुलाबी आंखें दोबारा से चलाना पड़ेगा भाई। आखिरकार ये हमारे राजेश खन्ना जी का नगमा है।

नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे का ईमेल मिला है। राहड गांव कैंप अमरावती से महाराष्ट्र से हैं दिलीप रमेकर, हर्षा और अक्षय।

0: नेहरू पार्क निजामाबाद से तेलंगाना से हैं अजीज भाई मतीन भाई और साथ में शेख चांद का ईमेल हमें मिल गया है। इसके अलावा रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि गुप्ता और पापा जी भी सुन रहे हैं जिनका नाम है कुशेश्वर कांटी गुप्ता और इन्होंने कहा कि कोई भी नगमा हमें सुनाइए लता जी की आवाज में। आज तो नहीं सुना पाएंगे लेकिन ऐशबाग लखनऊ वालों को अगली बार जरूर उनकी पसंद का नगमा सुनवा देंगे। पिली कॉलोनी से इनका हम तक ईमेल आया था, बहुत बहुत शुक्रिया कुशेश्वर एंड फैमिली की जानिब से। और र र र र ये किसका ईमेल है? नो वे, हमारे नाम अभी तक शामिल नहीं हुए, हम इंतजार कर रहे हैं नाराजगी से। उफ,
1: नाज़नीनों से मैं,
0: आपका ईमेल भी ऐसे ही बच रहा था नाज़नीनों से।
1: मिल गई तुझसे नजर,
0: मिल गया मुझे भी ईमेल,
1: सुन जरा
0: ओ बेखबर,
1: जरा
0: हंस के
1: जो देखा
0: तूने
1: मैं तेरा बिस्मिल
0: हो गया। जवानगर दुख से थे ऐसी कामड़े करोना और विपुल कामड़े,
1: देखी शराबी ये दिल संभालो मुझको,
0: संभालो मुझको। यह है दिव्यानी और गणेश कुमार कामले, कोई भी नगमा सुनना चाहते हैं अकोला महाराष्ट्र से। आज का आखिरी ईमेल, ताबूत की आखिरी कील मैंने यहाँ पर ठोक दी, मतलब ईमेल जितने शामिल हो सकते थे 11:30 तक मैंने सारे शामिल किए और बहुत सारे रह गए होंगे मुझे मालूम है क्योंकि इतनी बड़ी उर्दू सर्विस और इतने सारे उसके लिसनर। जो लोग नहीं शामिल हुए उनसे मैं माजरत चाहूंगी कि आप अपना दिल बिल्कुल भी बुरा ना करें, आइंदा दूसरे आरजेज आएंगे, किसी और के ईमेल को भी मौका मिल जाएगा। मुझसे जहां तक हो सका जो जो मुझे नजर आए, जो जो मतलब वो वाले जो जो नहीं जो हुआ करते थे, जिन लोगों मतलब जिनों के भी नहीं मतलब इंसानों के, मेरे लिसनर्स के, प्यारे लिसनर्स के जितने ईमेल मुझे यहां पर दिखाई दे गए मैंने शामिल कर लिए। और जो प्यारे दोस्त रह गए मेरे दिल के बेहद करीब हैं आप सभी लोग, आपसे भी उर्दू सर्विस उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी उनसे करती है जिन सबके यहां पर शामिल हुए नाम। तो आई लव यू फ्रॉम उर्दू सर्विस टू ऑल ऑफ यू। अब दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाजत, इंशाल्लाह जल्द फिर होगी मुलाकात। उर्दू सर्विस की नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर दस्तयाब है। वक्त हो गया है प्रोग्राम का जिसका नाम है सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम वैश्विक अनिश्चितता के दौर में राष्ट्रीय हित और आर्थिक संयम विषय पर चर्चा करेंगे और इस अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्कार सोनू, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
3: शरद जी से पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हम एक अंश सुनेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन का जिसमें उन्होंने बताया है कि अस्थिर परिस्थितियों के दौर से हम काफी समय से गुजर रहे हैं और अभी ऐसा समय है जब जन भागीदारी के द्वारा एक नागरिक के तौर पर कर्तव्य निभाते हुए छोटे छोटे संकल्प लेकर ही हम इस स्थिति से पार पा सकते हैं। आइए सुनते हैं।
5: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है, पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। जब तक हालात सामान्य नहीं होते हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
3: क्या कहेंगे आप, अभी जो स्थिति है जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि काफी समय से एक के बाद एक क्राइसिस आ रहे हैं जिससे भारत ने बहुत मजबूती के साथ हमने उनका सामना किया है, अभी जो स्थिति है, अभी जो पश्चिम एशिया का संकट है, उससे किस तरह के

0: स्पेसिफिक चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं हमारे देश के लिए?
1: देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत क्रूड ऑयल के लिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूं, तो 87% के करीब भारत का क्रूड ऑयल विदेश से आता है और इन सब का भुगतान पेट्रो डॉलर्स, तो ज्यादातर लोगों ने सुना होगा कि ये इसका क्रूड ऑयल का ज्यादातर जो व्यापार है वो पेट्रो डॉलर्स में किया जाता है। तो पेट्रो डॉलर्स की जब हम बात करते हैं सोनू, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो विदेशी मुद्रा भंडार सीधा सीधा प्रभावित होता है। इस समय जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो 700 बिलियन डॉलर से नीचे आ चुका है। तो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य क्या, उसके पीछे का आप अर्थशास्त्र जब लोग समझने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूँ यही आकाशवाणी प्रसार भारती का दायित्व है जो इस समय पूरा आकाशवाणी निभा रहा है कि लोगों के लिए इसको सरल भाषा में समझाया जाए कि प्रधानमंत्री जी ने अगर ऐसा कहा तो उसके पीछे क्या अर्थशास्त्र था। अब वो जहां पे बोल रहे थे, पहले उन्होंने हैदराबाद से बोला, फिर वडोदरा से भी बोला, तो वो इस वक्तव्य में ये तो है नहीं कि पूरी पीछे वो इकोनॉमिक्स समझाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी की बात को अक्षरशः लेने का उसके पीछे अर्थशास्त्र समझना होगा। वो ये है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है और ये जो खाड़ी में वेस्ट एशिया में कभी हाँ कभी ना, कभी लगता है कि ट्रूस हो जाएगा, वहां पर शांति वार्ता सफल हो जाएगी, प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा, अगले दिन फिर लगता है कि नहीं होगा। शुक्रवार को ऐसा लगा कि ये मामला अब सुलट जाएगा क्योंकि 14 सूत्री एक प्रस्ताव भेजा गया अमेरिका के पास ईरान द्वारा, और जब पता लगा कि इसको अमेरिका ने ठुकरा दिया तो क्रूड ऑयल की कीमतें जो $100 से नीचे आ गई थी पिछले वीकेंड से पहले
0: जी,
1: वो एक दफे फिर सोमवार जैसे सुबह हुई फिर वो 105 पॉइंट भी, तो ये ऐसा लगने लगा कि जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। और अगर ये चलता रहा तो जिस प्रकार से रुपए पर दबाव बन रहा है, जिस प्रकार से विदेशी मुद्रा का हमें भुगतान करना पड़ रहा है, तो उनको लगा कि भाई लोग अगर इसमें अपना योगदान दें, 140-145 करोड़ की जनता है, लोग इसमें अगर अपना योगदान देते हैं
0: जी,
1: तो इस समस्या का हम काफी हद तक समाधान पा सकते हैं। उसके पीछे जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है।
0: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या क्या ये छोटे छोटे उपाय सुझाए, छोटे छोटे संकल्प लेने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया, ताकि जैसे आपने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारा उसको कम से कम व्यय किया जाए।
2: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरते, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
0: बहुत ही गूढ़ बातें हैं और ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी बातें पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं। पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में जो उन्होंने मिशन लाइफ सुझाया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसमें भी ये सब बातें थी। और वोकल फॉर लोकल जो सरकार का हमेशा से एक मूल मंत्र रहा है, उसके तहत अगर हम देखें तो उन्होंने जो कहा है कि डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस में वेडिंग्स करिए, ये बात भी वो पहले कर चुके हैं, लेकिन अब उन बातों का जो एक कहें कि महत्व था वो बहुत बड़े वे में अभी सामने आ रहा है स्थिति में।
1: जी प्रधानमंत्री जी, तो देखिए शुरू से ही स्वदेशी के ऊपर जोर दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता के ऊपर, स्वदेशी के ऊपर, और छोटी छोटी बातों में कहते हैं। पर इस बार उसमें एक और आयाम सोनू जुड़ा, वो आयाम था विदेशी मुद्रा भंडार का। आप देखें, जैसा मैंने आपको कहा, इन सभी चीजों में जो आपको कॉमन थ्रेड जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो विदेशी मुद्रा भंडार को सेव करना था, जहां जहां हम बचत कर सकते हैं जो गैर जरूरी चीज है। और अगर मैं सोनू आपकी इजाजत से टॉप 3 आइटम जो हम इम्पोर्ट करते हैं, मुझे लगता है आकाशवाणी के श्रोताओं को ये जानकर बहुत बड़ी उनकी जानकारी में इजाफा होगा कि सबसे ऊपर क्रूड ऑयल है, $140 बिलियन का हमने वित्त वर्ष 25-26 में आयात किया, लगभग $140 बिलियन का। दूसरे नंबर का क्या था, आपको हैरानी होगी सुनकर, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स थे। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन बन रहे हैं, उनके छोटे छोटे कलपुर्जे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, लगभग 115-120 बिलियन का। ये दूसरे नंबर का आइटम था। और हैरानी की बात है कि तीसरा आइटम सोना था, जो कि $72 बिलियन पिछले साल 25-26 में हमारे यहाँ, ऐसे पिछले साल 58 था, उससे पिछले साल 45 था, लगातार इसका आयात हमारे यहाँ बढ़ रहा है। तो हमारा इम्पोर्ट बिल जिसको हम कहते हैं, आयात का जो पूरा खर्च है उसके बढ़ते हुए क्वांटम को देख के, उसके बढ़ती हुई संख्या को देख के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये तो अगर लोग अगर थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो तभी ये बचत हो सकती है, क्योंकि ये किस लिए आता है, लोगों के इस्तेमाल के लिए सब चीजें आती है, क्रूड ऑयल आता है उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, चलिए ठीक है वो बी टू बी होता है, कुछ लोग मोबाइल फोन बना के उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, सोना तो ऐसी चीज है जो कि 60-70% सोना जो हम आयात कर रहे हैं, और ये भी मैं बताना चाहूंगा सोनू कि 99% सोना भारत का आयात किया जाता है, तो उसमें 60-70% तो ज्वेलरी मेकिंग में यूज होता है, बाकी का निवेश में जाता है, तो ये ऐसी चीज है जिसके बिना लोग गुजारा कर सकते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल के बिना हम गुजारा नहीं कर सकते, हम शायद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम मंगाते हैं क्योंकि हमारा उस पर निर्यात भी निर्भर है, उससे विदेशी मुद्रा आती भी है, परंतु सोना तो ऐसी चीज है, तभी उन्होंने सोने के लिए अलग से कहा, जो उन्होंने एक साल की बात कही कि एक साल तक लोग सोना ना खरीदे, और मैं देखिए ये कहना चाहूंगा क्योंकि सोना भारत में भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, सोना हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे सोशल फैब्रिक से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आप सोने को रिसाइकल करिए ना, एक अनऑफिशियल एस्टिमेट आया कि भारत में 30,000 टन सोना भारतीय घरों में है, तो जो आपके पास पुराने फैशन के हार पड़े हैं, कंगन पड़े हैं, चेन पड़ी है, अंगूठी पड़ी है, और अगर आप ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, शादी ब्याह का मौका है, फंक्शन है, कहीं देना चाहते हैं, तो उस सोने को आप लाइए टेबल पे, एक बड़ी ज्वेलरी कंपनी ने अभी किसी फेमस क्रिकेटर को हायर किया सिर्फ यही कहने के लिए कि आप पुराना सोना अपना लाइए और बनवाइए, क्योंकि नया आप सोना के रेट भी बहुत बढ़ चुके हैं, खरीदना भी महंगा पड़ता है, लोग पीछे शिकायत भी कर रहे थे कि सोना हमारी पहुंच से बाहर हो गया, तो उसको रिसाइकल किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोना पहनना छोड़ दें, प्रधानमंत्री जी ने ये बिल्कुल, कल कुछ लोगों ने इस बात को थोड़ा सा गलत परसीव किया कि क्या सोना पहनना छोड़ दें, सोने का इस्तेमाल, सोना खरीदने को मना किया उन्होंने, सोना पहनने को या सोना रिसाइकिल करने को उन्होंने मना नहीं किया।
0: बिल्कुल शरद जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, अभी 70 दिनों से अधिक हो गए हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को शुरू हुए, और हमने देखा है कि बाकी जो विकासशील देश है और विकसित देश है, हर जगह पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, कहीं 50%, कहीं उससे भी ज्यादा, बहुत अवेलेबिलिटी पर भी असर हुआ है, भारत ने अभी तक जिस तरह से इस इकोनॉमिक क्राइसिस से डील किया है, आप कैसे तुलना करेंगे? और दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये देखते हुए कि शायद यह क्राइसिस लंबा चल सकता है, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आपको लगता है जो सरकार ने ये अपील की है ये एक इंक्लूसिव अपील है, सबको साथ में लेते हुए, और बहुत दूरदर्शिता से भरी हुई एक स्टेप है?
1: बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप अमेरिका को स्वयं देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा तेल का वहां पर उत्पादन होता है, उनके स्वयं अपने देश में कीमतें डबल हो चुकी है, वहां पर इसको गैस बोला जाता है, हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वो लोग गैसोलीन बोलते हैं, हम लीटर में नापते हैं, वो लोग उसको गैलन में नापते हैं। भारत सरकार ने, मुझे लगता है भारत की जो अच्छी आर्थिक परिस्थिति पिछले कुछ सालों में रही, उस दम पर भारत इसको झेल पाया, परंतु प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि इसका दबाव भारत सरकार पर, भारत के कोष पर पड़ रहा है। हम और आप जाके पेट्रोल और डीजल जब हम भरवाते हैं या हम एक नॉर्मल गैस का सिलेंडर खरीदते हैं, हमें एहसास नहीं होता, हमें लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसे ही नजर आता है सब कुछ ठीक ठाक है, परंतु इसके पीछे, जैसा मैंने कहा, इसके पीछे जो अर्थशास्त्र है कि इस पे जो फिस्कल लोड, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो हमारे ऊपर राजकोषीय भार पड़ रहा है, वो भार धीरे धीरे धीरे धीरे करके कठिन होता जा रहा है, और एक अनुमान के अनुसार 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह सोनू, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, जो सरकारी क्षेत्र के संस्थान है, इनको लगभग 1,000 करोड़ रुपए पर डे का लॉस हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो कब तक ये लॉस झेल पाएंगे? आखिर अगर क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार ऊपर बनी रही तो मुझे लग रहा है कि कभी ना कभी ये कठिन निर्णय लेना पड़ेगा, और इससे पहले कि ये निर्णय लेना पड़े, प्रधानमंत्री जी ने घर के बड़े के नाते, देश के नेता होने के नाते, उन्होंने लोगों को एक सुझाव कहिए, अपील कहिए, उसको दरख्वास्त कहिए, रिक्वेस्ट कहिए, जो मर्जी आप कहिए, लोगों को करिए कि अगर बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, हर व्यक्ति योगदान देगा, अगर सरकार कह सकती है सबका साथ सबका विश्वास, तो आई थिंक लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम भी, और मैं तो ऐसा मानता हूं, सोनू के युद्ध की जब परिस्थिति होती है ना, तो हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से सिपाही बन जाता है, तो मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति, चाहे हम लोग गन उठा के तो नहीं युद्ध के मोर्चे पर, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, ना हमारा देश लड़ रहा है, पर हम इस तरीके से देश में एक आर्थिक युद्ध जो हमारे ऊपर जबरदस्ती ऐसा लगता है थोपा गया है, उससे हमें हर व्यक्ति अपना अपना योगदान एक सिपाही बन के दे सकता है।
0: और इसमें अगर सरकार को एक कदम उठाना पड़ता है, जैसे बाकी सब देशों ने उठाया है, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, वित्तीय जो हमारी स्वास्थ्य है हमारे देश का उसको बरकरार रखने के लिए, तो उसको भी, जैसा आपने समझाया एक अर्थशास्त्री के तौर पर, उसे गहराई से समझना चाहिए।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए जो अर्थशास्त्र है मुझे लगता है उसमें ना कोई राजनीति है, उसमें कुछ नहीं है, वो तो एक सिंपल इकोनॉमिक्स है कि अगर देश के ऊपर भार पड़ रहा है तो लोगों पर भार पड़ रहा है, लोगों पर भार पड़ रहा है तो देश पर लाभ पड़ रहा है, इन लोगों को मिला के ही देश बनता है। तो मुझे लग रहा है अगर कल को ये कठिन निर्णय लेना भी पड़ता है तो लोग अब इसको

0: बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ आवाजें तो देखिए सोनू हमेशा ही ऐसी होती हैं जिनको कि कोई भी निर्णय पसंद नहीं आता, अच्छा निर्णय भी पसंद नहीं आता, तो ये बढ़ाने की तो मैं बात अलग है।
1: इनफैक्ट आप आवाजों की बात कर रहे हैं शरद जी, तो IMF की प्रमुख ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि उनको ये लगता है कि सरकार को, भारतीय सरकार को अब एक स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो वो हमारी फिस्कल हेल्थ के लिए लॉन्ग रन में ठीक हितकारी नहीं होगा।
0: क्योंकि IMF में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं और जब वो गणना करते हैं, जब वो आकलन करते हैं, तो उनको दिखाई दे, मैंने तो आपको स्वयं ही कहा कि अगर जो थोड़ा भी अर्थशास्त्र को समझता है वो व्यक्ति तो तुरंत कहेगा, बल्कि वो हैरान होगा कि अभी तक भारत सरकार ने कैसे इसको बर्दाश्त कर रखा है। और प्रधानमंत्री जी ने, आपने ध्यान दिया होगा, अगर उनके आप पूरा वक्तव्य जब सुनेंगे हम, तो उन्होंने कहा कि इससे देश पर दबाव पड़ रहा है और उन्होंने कहा कि देश इससे अछूता नहीं है। मुझे लगता है लोगों के लिए ये संकेत काफी है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी आके लोगों को डराएंगे नहीं कि हम, अब प्रधानमंत्री जी आके आंकड़े देने लगे कि इतने दिन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार चलेगा, कल को फिर हमारा आगे क्या होगा, इस प्रकार की वो कभी भी बात नहीं करेंगे। ये तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स समझनी होगी कि जब कोई चीज पीछे से महंगी आ रही है और हमारे यहाँ उसका उत्पादन नहीं होता है, मात्र 13% क्रूड हमारे देश में होता है, 87% हम बाहर से मंगाते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार तो ज्यादातर डॉलर में काम होता है, कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं वो खाली डॉलर से नहीं बनते हैं, उसमें जो रिजर्व बैंक के पास सोना है वो भी होता है 880 टन के आसपास, और इसमें IMF की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होती है, इसको SDR बोला जाता है। तो अगर ये धीरे धीरे इसी प्रकार इरोड होता रहा, ये धीरे धीरे जाता रहा, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब हमें, आपको याद होगा 1990-91 में भारत को एक समय ऐसा था जब अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, क्यों, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई थी। तो उस ओर अगर प्रधानमंत्री जी को लगा कि देश चल पड़ा है, तो इसमें लोगों को अब आगे आना चाहिए और लोगों को इसको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए और लोगों को अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा, मैंने तो कहा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे 5 लीटर तेल कम भरवाने से क्या देश का विदेशी मुद्रा भंडार बच जाएगा? जी हाँ, बच जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अगर ऐसा सोचेगा तो 140 करोड़ की हमारी आबादी तो कमाल करके दिखा सकती है। सोनू,
1: शरद जी, अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय में राष्ट्रीय हित के लिए आर्थिक संयम और हरेक नागरिक का योगदान कितना आवश्यक है, उस पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आपने सुना प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी है। उर्दू सर्विस आप सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम बज़्मे मौसिकी। आज के प्रोग्राम में सुनिए अमित मुखर्जी से राग बागेश्वरी में ख्याल।

0: बज़्मे मौसीकी प्रोग्राम के तहत आप सुन रहे थे अमित मुखर्जी से राग बागेश्वरी में ख्याल। अब आज का ये प्रोग्राम खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से पांच मुल्कों मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। भारत इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स वज़रा खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा, जिसमें बाहमी मफाद के आलमी इलाकई मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम है। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों और अमरीका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की तकरीबन 2% की कमी आई है। और बैडमिंटन ने सित्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत इस महीने की 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स वज़रा खारजा की मेजबानी करेगा। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मीटिंग की सदारत करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वज़ारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर ममालिक के वज़रा खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी इलाकई मामलों पर नजरियात का तबादला करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे के बारे में बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि उनके दौरे के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी पर बातचीत होगी। जनाब जायसवाल ने वजीर आजम के नॉर्वे, स्वीडन, इटली और नीदरलैंड्स के दौरों के सिलसिले में भी मुतला किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद किए जाने से मुतालिक खबरों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इन खबरों से इस बात की तस्दीक होती है जो पहले से मालूम था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में एक मखसूस मुकर्रर तालमेल से की गई कार्रवाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की शैवाली दहशतगर्दी की बुनियादी ढांचे और उसमें मदद फराहम करने वालों को नेस्त नाबूद करना था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से पांच मुल्कों मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम जुमे को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से तवानाई से मुतालिक इश्तराक और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। वजीर आजम इसी रोज नीदरलैंड्स में शाह विलियम अलेक्जेंडर, मलका मैग्जिमा और वजीर आजम रॉब जेटिन से मुलाकात करेंगे। स्वीडन में जनाब मोदी वजीर आजम उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वैन डर लेन के साथ सनत से मुतालिक यूरोपियन राउंड टेबल से खिताब करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी नॉर्वे के दौरे पर जाएंगे, जहां वो तीसरी भारत नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वजीर आजम जॉन्स घर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली जाएंगे और सदर सरगई मेटिलिरा और वजीर आजम जॉर्जिया मिलोनी से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वजीर आजम के आइंदा दौरे से हाल ही में किए गए भारत यूरोप यूनियन आजाद तजारती समझौते के तनाजुर में यूरोप के साथ मुख्तलिफ शोबों, खासतौर पर तजारत और सरमाकारी के शोबे में भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालात में बमुश्किल कायम है। जनाब ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आए कि जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे की ईरान की तजवीज़ की पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के जमीन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जनाब ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरत हाल का शिकार है। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई तजवीज को रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल करार दिया। व्हाइट हाउस में बच्चे की सेहत देखभाल से मुतालिक तकरीब में ट्रंप ने शुरका से कहा कि वो अपनी बातों को मुख्तसर करें, क्योंकि उन्हें ईरान के मामले पर जनरलों के बड़े ग्रुप से तबादला ख्याल करना है। सदर ट्रंप को इतवार के रोज ईरानी तजवीज मौसूल हुई, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुई जंग के खात्मे का कोई रास्ता निकल आएगा। इस जंग से तेल की आलमी सप्लाई के हम समुद्री रास्ते मजदूर हो गए हैं, जिसके नतीजे में कई मुल्कों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के नामनिहाद नुमाइंदों की जानिब से मौसूल जवाब पढ़ा है जो उन्हें पसंद नहीं आया। ट्रंप ने इसे पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार दिया। तेहरान के साथ जंगबंदी को जनाब ट्रंप ने नाकाबिले यकीन हद तक कमजोर करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी तहकीकती ब्यूरो सीबीआई ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 के मुबीना पेपर लीक के मामले में एक केस दर्ज किया है। एजेंसी ने वजारत तालीम के आला तालीम के महकमे की जानिब से मौसूल एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर यह मामला दर्ज किया है। एक बयान में एजेंसी ने कहा कि उसने नीट यूजी इम्तहान मुनक़िद किए जाने के सिलसिले में मुबैना बेजाबतियों और पेपर लीक हो जाने के मुतालिक इन खिलाफ वर्जियों के साथ एक FIR दर्ज की है, जिसमें मुजरिमाना साजिश, जालसाजी, मुजरिमाना एतमाद शिकनी, चोरी और सबूतों को खत्म करने की कोशिश, इम्तहानात में नामुनासिब तरीक़ाकार इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक अवामी एक 2024 के तहत खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। नई दिल्ली में नीट इम्तहान की मनसूखी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के DG अभिषेक सिंह ने बताया कि NTA तलबा के लिए दोबारा इम्तहान मुनक़िद करेगी और मुनसिफाना तरीके से मुनक़िद किया जाएगा और दोबारा इम्तहान के लिए कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी। इससे कबल कल दिन में NTA ने इस माह की 3 तारीख को मुनक़िद किए गए नीट UG 2026 इम्तहान को मनसूख करने का फैसला किया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस की खसूसी कार्रवाई से मुतालिक ग्रुप SOG ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। SOG ने एक मुबैना सरगना को जयपुर से हिरासत में लिया था, जिसका नाम मनीष बताया जाता है। इस अखबार जराये के मुताबिक राजस्थान पुलिस SOG ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मुबैना साजिश रचने वाला सीकर का करियर काउंसलर राजेश कुमार शामिल है। इसके अगले दिन नीट का इम्तहान देने वाले 4 तलीवे इल्मों को भी गिरफ्तार किया था। नासिक पुलिस ने भी नीट पेपर लीक मामले में मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया है। स्कूली तालीम ख्वानगी के महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि NCERT और CBSE ने मुश्तरक तौर पर 3री जमात से 8वीं जमात तक के तलबा के लिए हिसाब किताब पर मबनी सोच और मसनी जहानत के मुतालिक एक नई दरियास्त तैयार की है। इस पहल से मुतालिक बात करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि दरसियात पहले ही नाफिज कर दी गई है। उन्होंने मजीद मुतला किया कि NCERT 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए भी मसनू जहानत की निसाबी किताबें तैयार कर रही है। साइबर क्राइम से मुतालिक भारतीय तालमेल मरकज ने कल रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए ताकि साइबर नौयत की इख्तिसाई जालसाजी से निपटा जा सके। बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के पूरे माशी निजाम में मोल खातों में कमी की जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत एक साइबर सिक्योर भारत की तश्कील की जानिब मुस्तकिल काम कर रही है। ताहम उन्होंने इस बात को उजागर किया है साइबर जरायम को खत्म करने के सिलसिले मोल अब भी एक बड़ा चैलेंज है। कॉमर्स सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत खुद को तमाम रुकावटों के मुकाबले अपने तौर पर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है, ख्वाह वो रुकावटें इक्तिसादी हों, तकनीकी हों, आर्जी, सियासी। नई दिल्ली में CIA सालाना बिजनेस समिट 2026 में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया हर रोज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम आराजी, सियासी और कारोबारी सूरत हाल की वजह से बहरान का सामना कर रही है, लेकिन भारत लगातार इस मुखालिफ सूरत हाल को मौके में तब्दील करता

0: है कल से होगा। बैंकॉक में इस साल BWF सुपर 500 टूर्नामेंट के लिए भारत ने 27 खिलाड़ियों को मुश्तमिल एक मजबूत दस्तावेज भेजा है। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से 5 मुल्कों मुत्तहिदा और अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। भारत इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा, जिसमें बाहमी मफाद के आलमी इलाकाई मामला तो तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में और बमुश्किल कायम है। और बैडमिंटन सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में आज सुनिए उस्ताद अमीनुद्दीन खां डागर से राग यमन में ध्रुपद और अलाप।

तलत महमूद की आवाज में ये नगमा भी अपने देवदास फिल्म से सुना। आखिरी शब प्रोग्राम की अगली पेशकश और खटोला फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

लता मंगेशकर की आवाज में सरदार फिल्म से ये नगमा अभी आपने सुना। अब सुनिए हेमंत कुमार को, फिल्म है हाउस नंबर 44।

0: तलत महमूद को आप सुन रहे थे फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी है। आखिरी शब प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ और अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: यह आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से 5 मुल्कों मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। भारत इस माह की 14 और 15 तारीख को वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा, जिसमें बाहमी मफाद के आलमी इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है, बमुश्किल कायम है। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमरीका ईरान कशीदगी एक सब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। और बैडमिंटन में सित्विक साईंराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत इस महीने की 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स वज़राए खारजा की मेजबानी करेगा। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मीटिंग की सदारत करेंगे। कल नई दिल्ली मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर ममालिक के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामलों पर नजरियात का तबादला करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के बारे में बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि उनके दौरे के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी पर बातचीत होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद किए जाने से मुतालिक खबरों पर सवाल का जवाब देते जनाब जायसवाल ने कहा, इन खबरों से इस बात की तस्दीक होती है जो पहले से मालूम था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में एक मखसूस मुकर्रर तालमेल से की गई कार्रवाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की शह वाली दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और उसमें मदद फराहम करने वालों को नेस्तनाबूद करना था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से 5 मुल्कों मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से तवानाई से मुतालिक इश्तराक और दोतरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। वजीर आजम इसी रोज नीदरलैंड्स में शाह विलियम अलेक्जेंडर, मलका मैक्सिमा और वजीर आजम रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। स्वीडन में जनाब मोदी वजीर आजम उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे और यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वैन डर लेयन के साथ सनद से मुतालिक यूरोपियन राउंड टेबल से खिताब करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी नॉर्वे के दौरे पर जाएंगे, जहां वो तीसरी भारत नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वजीर आजम जोनास घर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली जाएंगे और सदर सर्गियो मैटरिला और वजीर आजम जॉर्जिया मिलोनी से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि वजीर आजम के आइंदा दौरे से हाल ही में किए गए भारत यूरोप यूनियन आजाद तजारती समझौते के तनाजुर में यूरोप के साथ मुख्तलिफ शोबों खासतौर से तजारत और सरमायाकारी के शोबे में भारत की साझेदारी मजीद मजबूत होगी। अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम है। जनाब ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे की ईरान की तजवीज़ को पूरी तरह नाकबिले कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने की जमीन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरत हाल का शिकार है। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई तजवीज़ को रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल करार दिया। व्हाइट हाउस में जच्चा की सेहत देखभाल से मुतालिक तकरीब में ट्रंप ने शुरका से कहा कि अपनी बातों को मुख्तसर करें क्योंकि उन्हें ईरान के

मामले पर जनरलों के बड़े ग्रुप से तबादले ख्याल करना है। सदर ट्रंप को इतवार के रोज ईरानी तजवीज मौसूल हुई, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुई जंग के खात्मे का कोई रास्ता निकल आएगा। इस जंग से तेल की आलमी सप्लाई के अहम समुद्री रास्ते से मजदूर हो गए हैं, जिसके नतीजे में कई मुल्कों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की जानिब से मौसूल जवाब पढ़ा है जो उन्हें पसंद नहीं आया। ट्रंप ने इसे पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार दिया। तेहरान के साथ जंगबंदी को जनाब ट्रंप ने नाकाबिल यकीन हद तक कमजोर करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। स्कूली तालीम और ख्वानदगी के महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा है कि एनसीईआरटी सीबीएसई ने मुश्तरका तौर पर तीसरी जमात से आठवीं जमात तक के तलबा के लिए हिसाब किताब पर मबनी सोच अब मसनूई जहानत के मुतालिक एक नई दरियास तैयार की है। इस पहल के मुतालिक बात करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि दरियास दरसियात पहले से ही नाफिज कर दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एनसीईआरटी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के लिए भी मसनूई जहानत की निसाबी किताबें तैयार कर रही है। कॉमर्स सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत खुद को तमाम रुकावट के मुकाबले अपने तौर पर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है, ख्वाह रुकावटें इक्तिसादी हों, तकनीकी हों या आर्जी सियासी। नई दिल्ली में सीआईआई सालाना बिजनेस समिट 2026 में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया हर रोज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम आराजी सियासी और कारोबारी सूरत हाल की वजह से बहरान का सामना कर रही है, लेकिन भारत लगातार इस मुखालिफ सूरत हाल को मौके में तब्दील करता रहा है। भारतीय इक्तिसादी बुनियादों को इंतहाई वसी तर करार देते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत कभी दबाव में नहीं आया और चैलेंज भरे दौर में हमेशा ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। समिट से खिताब करते हुए वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने महारतों पर मबनी तालीमी निजाम की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत एक मजबूत क्रेडिट सिस्टम तैयार किया जाना है। साइबर क्राइम से मुतालिक भारतीय तालमेल मरकज ने कल रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए ताकि साइबर नौयत की इक्तिसादी जालसाजी से निपटा जा सके और बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के पूरे माशी निजाम में मॉल खातों में कमी की जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत एक साइबर सिक्योर भारत की तश्कील की जानिब मुस्तकिल काम कर रही है। ताहम उन्होंने इस बात को उजागर किया कि साइबर जराइम को खत्म करने के सिलसिले मॉल खाते अब भी एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। मरकजी तहकीकती ब्यूरो सीबीआई ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 के मुबैना पेपर लीक के मामले में एक केस दर्ज किया है। एजेंसी ने वजारत तालीम के आला तालीम के महकमे की जानिब से मौसूल एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर यह मामला दर्ज किया है। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि उसने नीट यूजी इम्तहान मुनक़िद किए जाने के सिलसिले में मुबैना बेजाबतियों पेपर लीक हो जाने से मुतालिक इन खिलाफ वर्जियों के साथ एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें मुजरिमाना साजिश, जालसाजी, मुजरिमाना एतमाद शिकनी, चोरी और सबूतों को खत्म करने की कोशिश और इम्तहानात में नामुनासिब तरीक़ाकार इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक अवामी एक्ट 2024 के तहत खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। नई दिल्ली में नीट इम्तहान की मनसूखी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने बताया कि एनटीए तलबा के लिए दोबारा इम्तहान मुनक़िद करेगी, मुनसिफाना तरीके से मुनक़िद किया है। दोबारा इम्तहान के लिए कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी। बैडमिंटन में कल सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल मर्दों की डबल्स की भारत की सरकर्दा जोड़ी थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई। भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स के इफ्तिताही मुकाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 23-21, 21-10 से हराया। खास खबरें इस बुलेटिन की। एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से 5 मुल्कों मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। भारत इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स वज़राए खारजे की मीटिंग की मेजबानी करेगा, जिसमें बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल

0: कायम है। स्टॉक मार्केट में तेल की बड़ी कीमतों और अमरीका ईरान कशीद के सब मार्केटों में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह तकरीबन 2% की कमी आई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की तीसरे मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। कल सुबह 9:30 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शब बखैर, जय हिंद। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा उचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी की सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
3: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहनों की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इसराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की भी आधिकारिक पुष्टि हुई है। रूस ने सरमत अंतर

द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरमत दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: That is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 1:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गीत सुनहरे का। श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुनते हैं पुरानी फिल्मी गीतों के सुनहरे गीत। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म भक्त सूरदास से, KL सहगल साहब की आवाज में।

0: लेके जाना जाना।
1: अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म हमराही से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

श्रोताओं, अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म अनमोल घड़ी से। गायिका है सुरैया।

फिल्म भाई बहन से ये गीत आइए सुनते हैं, शमशाद बेगम की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म बैजू बावरा से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी की सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलिवफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिन की अहम शिखर वार्ता होगी। ये शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े संकट के कारण अमेरिका और चीन के संबंधों पर दबाव बढ़ गया है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरों मध्य बंद किए जाने और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी से चीन के तेल आयात और व्यापार पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सांगली में कल दोपहर दीवार गिरने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनहानि की खबर से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहन की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज का गीत बाहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात के 3 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश

0: पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that specialist CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency NTA on the 3rd of this month. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of the flow test, the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Karagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected S.P. Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media after a meeting at former minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Ranveer Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to the UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit, there will be talks on energy security.
2: During the visit to the United Arab Emirates as well, discussions will take place on energy security. Apart from this, there will be also the Nordic Summit along with the visits from Norway, Sweden, Italy and the Netherlands. These countries are major hubs of innovation and India is also doing significant work in the innovation ecosystem. Therefore, discussions will take place on all these issues and how we can help lead India towards the vision of a developed nation.
1: Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40,000 to 50,000 crore rupees for the purpose. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has appealed to the people of the state

0: आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल और गीत का। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4 बजने को हैं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। कलाकार हैं तिसुरा वी रामाचंद्रन, पी रामा, एम बाला मुराजी कृष्णा।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने एस बालाचंदर द्वारा बजाया वीणा पर राग नमन रयानी सुना। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई 2026 सुबह के 5:53 और 50 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आगे आपको कुछ प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जबकि 5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। वहीं 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का। 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार।

6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना, वहीं 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विचारों के बारे में जानेंगे।

6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस में बाल कांड, और अब प्रातः के 5 बजने को है, आइए सुनते हैं।

0: नानक मेर शरीर का एक रफिक रतवा हो, जुग जुग फिर बटाइया ज्ञानी बुझे ताहे, साजुगरा संतों का धर्म गैरतवा हो, त्रित राज तह का जोर गैरतवा हो, वापुरा तपै का सत गैरतवा हो, काल जुगरा थ्यगन का कूड़ अगैरतवा हो। महला पहला
1: शाम कहे स्तंभ।

स्वामी सच में अच्छे साच रहे, सबको सच समावे, रिक कह रहे प्रभु राम नाम देवा में सुर, नाय ले प्राचित जाय नानक तो मुखंत्र पाए, जुज में जोर छली चंद्रावल पान, कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रंग किया, काल में वेद थर्वण हुआ नव खुदाई अलो भया, नीर वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया, चार वेद हो इस चार पढ़े गुण तीन चार विचार।

0: अत दीर्घत मुच वे जे अभ्यास कर जा इंद्र से कित फल फिके फुल बक बके कमना वे पत मिठत नीव नानका गुण चलिया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना कोए धरता राजू तो लिए निवे सगौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है शीशनी वह है क्या थी है जारी दे कुसुदे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या वादन शिल्पू जिस वगत समादन मुख चोट विभूखन सारंग कृपाल तिहाल विचारन गलमाला तिलक लाटंग दो धोती वस्त्र कपाटम जे जानस ब्राह्मण करवन सब फोकट ले चो करवन कह नानक नेह चो त्यावे

दयाक पास तो सूत जत गंडी सतवट एहो जनेऊ जी का है ता पांडे घत ना एहो टुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए धन सुमान सुनानका जो गल चले पाए चौकड़ मोलो नाया बह चौके पाया सिखा कंचढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया।

0: लख ठगियां पहना मियां रात दिन जीना तग कपा हो कतिये बामण वत्या कोहे बकरा दिन खाया सबको आखे पाए होए प्राण सुटिए पीपर पाइये हो नानक तग न टूटई जे तग होवे जोर महला पहला
1: नाए मने पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाई है तग ना टूट सपूत महला पहला
0: तग ना इंद्री तग ना नारी पल के थुक पवे निदाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना की वे तगा पे वत्ते वड़ता गे वरा कहते ले पहाड़ करे भी आहो कटका गल दसे राहो सुन वे खोलो का विडान
2: मन अंधा ना सुजान।

0: तर न जाई धोती टिका तै जप माली धान मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़े कते बस जम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम लये चाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छुरी बगैन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ना पियावे ओ ईसा कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार